0: ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी।

शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना। अयोध्या में रामलला के अर्चकों के लिए आज से ड्रेस कोड लागू। अब से पीले रंग की रेशमी धोती और अंगवस्त्र से नजर आएंगे सभी पुजारी। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में आयोजित मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं और आज के दिन एक और मायने में बेहद खास है। आज 80वीं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होने वाला है। आपको बता दें, इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर युवा शक्ति की ऊर्जा, सपनों और अहम भूमिका का भी उत्सव मनाया जाने वाला है। तो आज देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, आजादी का ये जश्न मनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें, वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हुए हैं और इसका भी जश्न इसी मौके पर मनाया जा रहा है। पहली बार वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया जाने वाला है और इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है और इस बार का थीम भी कुछ यही है। इसका थीम है विकसित भारत 2047 और युवा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाकी वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करने वाले हैं। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया जाने वाला है। तो वहीं इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले हैं और इसी के साथ 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। झंडा फहराते ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं अब पीएम मोदी आज के अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, उसी पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसका इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे लाल किले पर। उनके भाषण के अंत में करीब 2500 एनसीसी कैडेट्स और माय भारत के वॉलंटियर वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाएंगे। तो वहीं लाल किले की सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी गई है। एक छावनी में इसे आज के दिन तब्दील किया गया है। 1000 से ज्यादा AI बेस्ड CCTV कैमराज लगाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं ताकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यहां पर जिस तरीके से इसे छावनी में तब्दील किया गया है, उससे एक परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता है। विशेष अतिथियों को इस बार आमंत्रित किया गया है। लाल किले की प्राचीर पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। इस बार के थीम की बात करें तो ये है विकसित भारत 2047 और युवा शक्ति। तो वहीं आज प्रधानमंत्री भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, भारत की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, युवा शक्ति के बारे में बात करेंगे और भारत के आने वाले वर्षों में सपनों को लेकर भी बात करने जा रहे हैं। तो वहीं आज संदेश दिया जाएगा, आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं और विजन को लेकर आने वाले सालों के लिए भारत के लिए विजन क्या है, इसको लेकर भी बात करने जा रहे हैं। और यही वजहें हैं जिसकी वजह से आज का जो संबोधन होता है ये बेहद खास माना जाता है और एक संदेश मिलता है इसके जरिए कि आने वाले सालों में भारत की सरकार की प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली हैं। तो वहीं परेड की पूरी तरह से यहाँ पर कई दिनों से फुल ड्रेस रिहर्सल जारी थी और आज वही परेड देखने को मिलने वाली है। GNT के माध्यम से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से यहाँ पर एक सुरक्षा छावनी बना दी गई है। आपको बता दें, 1000 से ज्यादा AI बेस्ड कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर प्रोटोकॉल भी होता है और यहाँ पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार की मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 है। तो वहीं युवा शक्ति की भूमिका भी थीम में शामिल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी है और इसीलिए आज पूरा दिन यहाँ पर
इसकी झलक भी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये पहली बार होने वाला है जब वंदे मातरम यहाँ पर बजते हुए, यहाँ पर उसकी धुन आप सुन सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर देश के उन वीर जवानों को नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। यहाँ पर महात्मा गांधी को यहाँ पर नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पर उनका आगमन हो चुका है। इसके बाद लाल किले पर पहुंचने के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे पहले प्रोटोकॉल के तहत पीएम यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलकर लाल किले पहुंचते हैं। फिलहाल राजघाट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अब यहां पर कुछ ही देर में आपको पीएम मोदी दिखेंगे पुष्प अर्पित करते हुए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी का राजघाट पर आगमन हो चुका है। तो देखिए आज पूरा दिन यहाँ पर समारोह का आयोजन, और देश की स्वतंत्रता के जो वीर सेनानी थे जिन्होंने अपने जान की आहुति दी थी, जिन्होंने बलिदान दिया था, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था भारत के लिए, आज उन्हें नमन करने का दिन है। और यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। राजघाट पर पीएम मोदी मौजूद हैं और यहां पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो आज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है, और आज उनके संकल्पों को, उनके बलिदान को, उनके जिस तरह से उन्होंने आहुति दी थी देश के लिए, उसे याद करके उन्हें नमन करने का दिन है। और इसीलिए आज के दिन प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इसके बाद यहाँ से निकलकर लाल किले के लिए पहुंचते हैं। अभी पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए रखी गई है राजघाट पर उनकी मौजूदगी, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे और लाल किला पहुंचेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है पूरे लाल किले में और इसके आसपास, राजघाट से लेकर जहां भी पीएम का काफिला पहुंचता है वहां पर खासा व्यवस्था रखी जाती है ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए। 1000 AI बेस्ड कैमराज लगाए गए हैं और यहां पर लगातार जवान तैनात हैं, लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजघाट की ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें मिनट टू मिनट सीक्वेंस के अनुसार पूरा कार्यक्रम आज के दिन होता है। इस बार के समारोह की मुख्य थीम विकसित भारत एक्ट 2047 में युवा शक्ति की भूमिका है, और आज के दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी है, तो ऐसे में इसकी झलक आपको पूरा दिन देखने को मिलने वाली है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन अब से कुछ ही देर में होने वाला है। लाल किले को किस तरह से सजाया गया है, यहाँ पर तिरंगे के रंग किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, वो तस्वीरें GNT के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो वहीं पीएम मोदी का आज संबोधन होने वाला है, क्या कुछ बातें पीएम मोदी कहते हैं वो देखने वाली रहेंगी, क्योंकि आज के दिन सरकार के, प्रधानमंत्री के विजन के बारे में पीएम मोदी बताते हैं, और भारत आने वाले सालों में किस तरह से आगे बढ़ेगा उसका संदेश भी दिया जाता है, क्या कुछ विजन रहने वाला है इसके बारे में बात की जाती है। तो वहीं इस बार युवा शक्ति की बात भी की जाने वाली है क्योंकि ये थीम में शामिल है। आपको बता दें आज का थीम है विकसित भारत एक्ट 2047 में युवा शक्ति की क्या भूमिका है। तो युवाओं को लेकर, भारत की चुनौतियों को लेकर, भारत के जो आने वाले सपने हैं उसे कैसे पूरा किया जाएगा, उसका विजन क्या रहने वाला है, इसको लेकर बात की जाने वाली है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आज़ादी का आज उत्सव जहां मनाया जा रहा है
वहीं दूसरी ओर आप देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज आपको वंदे मातरम की झलक देखने को मिलने वाली है। 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आज पहली बार ऐसा होने वाला है जब लाल किले पर झंडा फहराने से पहले वंदे मातरम बजते हुए आप सुन सकेंगे। देश भर में इसका जश्न मनाया जा रहा है। आज देश भर में लोग देशभक्ति में डूबे हुए अपने घरों पर हर जगह तिरंगा फहराते हुए, तिरंगे लगाते हुए नजर आएंगे और देश के प्रति अपने भाव को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश के उन वीर सेनानियों को याद करने का, उन्हें नमन करने का दिन है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम आजाद देश में इस हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको बता दें खासा तैयारियां भी यहां पर की गई हैं, सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। जिस तरह से आपको बताया AI कैमराज यहां पर लगाए गए हैं, हर ओर पैनी नजर रखी जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता है, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लाल किले पर पहुंचेंगे। आपको बता दें सबसे पहले पीएम मोदी का यहां पर आगमन स्वागत किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री सबसे पहले लाल किले की लाहौरी गेट पर पहुंचते हैं, वहां पर रक्षा मंत्री उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद GOC यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक लेकर जाते हैं। सलामी मंच पर तीनों सेनाएं उनका स्वागत करती हैं, उन्हें सलामी देती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री परेड टुकड़ियों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं और इस निरीक्षण के बाद लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर की ओर आगे बढ़ते हैं जहां तीनों सेनाओं के प्रमुख उनका स्वागत करते हैं। इस साल विशेष शुरुआत के तहत आपको बता दें ध्वजारोहण से पहले सेना के बैंड के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन यहां पर बजाई जाने वाली है, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ है और ये ऐतिहासिक पल रहने वाला है जब वंदे मातरम की धुन आपको सुनाई देगी। ध्वजारोहण से पहले सेना का बैंड इसकी प्रस्तुति देने वाला है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन बजाने वाला है। तो वहीं आपको बता दें इसके बाद ध्वजारोहण होगा, पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे जिसमें कई सैन्य अधिकारी यहां पर मौजूद होंगे। तो वहीं आपको बता दें तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान बजेगा और स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की पारंपरिक सलामी जो दी जाती है वो दी जाएगी। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स आसमान में करतब दिखाएंगे, दर्शकों पर फूलों की बारिश करने वाले हैं, पुष्प वर्षा की जाने वाली है। तो वहीं इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर तिरंगा है, वंदे मातरम इस पर अंकित है, देश के नाम। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को पारंपरिक रूप से संबोधित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उपलब्धियों की बात करते हैं, भविष्य के लक्ष्यों की बात करते हैं और साथ ही साथ चुनौतियों की भी बात करते हैं। अगर विजन की ओर आगे बढ़ना है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है तो जरूरी है कि जो चुनौतियां हैं उसकी भी बात की जाए और यही वजह है कि चुनौतियों की भी बात की जाती है, महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उल्लेख किया जाता है आज के संबोधन में। तो वहीं इस बार खास रहने वाला है, आज युवा शक्ति की भी बात की जाने वाली है क्योंकि ये थीम में शामिल किया गया है। तो युवाओं की शक्ति की बात की जाएगी, विकसित भारत में युवा किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, किस तरह से अदा कर सकते हैं, क्या विजन रहने वाला है युवाओं को लेकर, इसको लेकर बात की जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इसका जिक्र कर सकते हैं। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण के समापन के बाद NCC कैडेट्स के लगभग 2000 कैडेट माई भारत के वॉलंटियर्स मिलकर एक बार फिर से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन करने वाले हैं। यहां पर कई विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें जो सरकारी योजना के लाभार्थी हैं, जो कारीगर हैं, उन्हें भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम दो प्रमुख पहलुओं पर आधारित है। पहला वंदे मातरम के 150 साल, दूसरा विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति।
और इस बार के स्वतंत्रता दिवस को ये थीम बेहद खास बना देती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट से निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में लाल किले पर पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला पहुंचेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न आज़ादी की तस्वीरें देश भर से जो निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी ओर लाल किले की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का काफिला निकल चुका है, लाल किले के पास पहुंचने वाला है। अब से कुछ ही देर में पीएम यहां पर पहुंचेंगे, सलामी मंच की ओर आगे बढ़ेंगे और यहां पर झंडा फहराने वाले हैं। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपने जान की आहुति दी थी भारत के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत के युवाओं के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जो आने वाली जनरेशन है, जो युवा हैं, वो आज़ाद हवा में सांस ले पाएं। ऐसे में आज उनको याद किया जा रहा है, उनका नमन किया जा रहा है, देशभक्ति के गीत पूरे देश में आज गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पूरे देश में आज लोग देशभक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, देश के प्रति अपनी भावना को, अपने प्रेम को, अपने समर्पण को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तिरंगे के रंग में पूरा देश आज रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिला अब लगभग पहुंच चुका है और यहाँ पर रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। अब लाल किले पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाने वाला है। ये तस्वीर आप देखिए, तो देखिए यहां पर काफिला पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री अब लाल किले के गेट पर पहुंचे और यहां पर आगमन होने जा रहा है। यहां पर रक्षा मंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख उनका स्वागत करेंगे ऐतिहासिक प्राचीर की ओर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री मौजूद हैं, रक्षा सचिव मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव से मिलते हुए यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं रक्षा मंत्री। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब यहाँ से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, इसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक ले जाया गया है। अब यहां तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, नौसेना,

0: सेक्टर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर।
1: गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गार्ड।
2: तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उनका स्वागत किया गया रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव के द्वारा उनका औपचारिक स्वागत हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं यहाँ पर निरीक्षण करते हुए। आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले उन्हें सलामी दी गई, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन्हें सलामी मंच पर तीनों सेनाओं के, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री को सामान्य सलामी देती हुई नजर आई। इसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सलामी लेने के बाद प्रधानमंत्री ने परेड टुकड़ियों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया है और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। निरीक्षण के बाद पीएम लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। आपको बता दें इस साल की विशेष शुरुआत हो रही है, इसके तहत ध्वजारोहण से पहले सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति भी दी जाने वाली है। यानी कि आज आप वंदे मातरम की धुन को सुनते हुए भी यहाँ पर इसके साक्षी बन सकते हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन यहाँ पर बजाई जाएगी जो कि ऐतिहासिक रहने वाला है और सेना का बैंड इसकी प्रस्तुति देने वाला है क्योंकि 150वीं वर्षगांठ है और इसी मौके पर यहाँ पर वंदे मातरम भी सुनने को मिलेगा। यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, खास मेहमानों की मौजूदगी है जिन्हें आमंत्रित किया गया है। वंदे मातरम की झलक आप देख पा रहे हैं। इस बार का थीम है वंदे मातरम क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं और देश भर में पूरे साल भर इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में आज के दिन इसकी झलक और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम आपको दिखा रहे हैं। ये 13वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे और ये तस्वीरें आप 2014 से लेकर अब तक की 2025 तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर बार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और झंडा फहराया है, 2026 की लाइव तस्वीर आपके सामने है जब 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर झंडा फहराने वाले हैं, आजादी के उत्सव में शामिल होने वाले हैं, उत्सव को मनाने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर आगे बढ़ते हुए जहाँ पर झंडा फहराने वाले हैं। आपको बता दें इस बार की खासियत ये है कि इस बार वंदे मातरम की धुन बजती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण से पहले ऐतिहासिक पल के गवाह यहाँ मौजूद सभी लोग और इसे टेलीविजन के माध्यम से देख रहे सभी लोग बनने जा रहे हैं क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होगा जब वंदे मातरम का गीत भी सुनने को मिलने वाला है लाल किले की प्राचीर से और सेना की बैंड इसकी प्रस्तुति देने वाली है। जो मेहमान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और गृहमंत्री की तस्वीर भी यहाँ पर हमने आपको दिखाई, रक्षा मंत्री की मौजूदगी है, लाल किले की यहाँ पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से इसकी सजावट की गई है जहाँ पर 13वीं बार प्रधानमंत्री लाल किले पर संबोधित करने वाले हैं। पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम की धुन सुनाई देने वाली है आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो किस तरह से जो ब्रिटिश परंपरा थी उसे भूलकर, उसे पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ रहा है और नई चीज़ें, नए संकल्प ले रहा है और किस तरह से अपनी संस्कृति के साथ भारत अपने विजन पर काम कर रहा है, दोनों को साथ लिए हुए आगे बढ़ रहा है, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर साथ ही साथ प्रस्तुति दी जा रही है, यहाँ पर निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई युवा भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आज़ादी के इस उत्सव में शामिल हुए हैं और युवा पीढ़ी आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रही है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी उनके भविष्य को संवारने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें किस तरह से अलग अलग पहनावे में और अलग अलग पगड़ी में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे थे और हर बार देश के लिए यहाँ पर संबोधन और झंडा फहराया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बार की विशेषता है, इस बार वंदे मातरम की थीम और युवा शक्ति की थीम रखी गई है और इसकी झलक भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर, तमाम मिनिस्टर्स की मौजूदगी आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमन मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, अजीत डोभाल यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम खास अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरे लाल किले पर जो खास मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, मौसम भी यहाँ पर सुहाना नजर आ रहा है। तो वहीं खासा तैयारियां इस बार परेड के लिए की गई हैं, कई दिनों से फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे और आज उसकी झलक देखने को मिलने वाली है जब लाल किले की प्राचीर पर तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, जब परेड होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साक्षी बनेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लाल किले को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर साल इसका इंतजार किया जाता है, हर साल इसकी लंबे समय तक तैयारी की जाती है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से समारोह का आयोजन होता है जिसका पूरी दुनिया जिसकी गवाह बने, पूरी दुनिया की नजरें आज के दिन भारत पर टिकी होती हैं जब भारत स्वतंत्रता दिवस को मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहेंगे इस पर भी सभी की नजरें हैं। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह का जोश है, युवा यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए। तो वहीं तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरफ युवा मौजूद हैं, देश का आम आदमी यहाँ पर मौजूद है, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। और आज लाल किले पर प्रधानमंत्री का सबसे पहले ध्वजारोहण, वंदे मातरम और राष्ट्रगान, और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। तो वहीं परेड की आज झलक देखने को मिलने वाली है जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। युवाओं में किस तरह का जोश है वो तस्वीरें भी आप देखिए, देश के प्रति अपना समर्पण, अपना भाव, अपना प्रेम प्रकट करते हुए युवा, तमाम युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ हिलाते हुए पीएम का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य उत्सव का आज आयोजन किया गया है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूरा कार्यक्रम एक तय प्रोटोकॉल और मिनट टू मिनट सीक्वेंस के अनुसार होता है। इस बार के समारोह की मुख्य थीम विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। आज का दिन है वीर शहीदों और उनके बलिदानों को नमन करने का, उन्हें याद करने का, क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को, देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दिन महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है। उनकी शहादत की ही वजह से आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। 15 अगस्त को 1947 से भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन नेशन बना और देश के फैसले लेने का अधिकार खुद भारतीयों के हाथ में आया। ये सब मुमकिन हो पाया उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से जिन्होंने अपनी जान की आहुति भारत के लिए दे दी। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के लिए पहुंच चुके हैं, यहाँ पीएम मोदी की मौजूदगी है, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं।

Andar sin abuelo.

0: After the hoisting of the national flag by the...
1: यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए तिरंगा फहराते हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वज फहरा दिया है और इस बार आपने सुना सबसे पहले वंदे मातरम का गीत बजाया गया, सेना के बैंड ने इसकी प्रस्तुति दी और उसके बाद ध्वजारोहण और ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान यहां पर सुनने को मिला है। इसके बाद यहां पर हेलीकॉप्टर यहां पर किस तरह से दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, ये तस्वीर आपने देखी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करने जा रहे हैं। सबसे पहले लोगों का अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनटों में अपना संबोधन शुरू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप परेड देख सकते हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। वंदे मातरम की झलक भी आज देखने को मिली। तो आजादी का उत्सव किस तरह से भव्य उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर पुष्प वर्षा हो रही है दर्शकों के ऊपर, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो वहीं आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत आर्ट 2047 के लिए युवा शक्ति, इसका थीम है। वीर शहीदों और बलिदानों को नमन करने का आज दिन है, क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। तो वहीं भारत अपनी संप्रभुता का जश्न मना रहा है। आज के दिन भारत संप्रभु राष्ट्र बना था, सॉवरेन नेशन बना था और भारत को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार आज के दिन मिला था। इसी दिन ने देश के हर नागरिक को समानता, अभिव्यक्ति की आजादी दी और अपना नेता खुद चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार भी दिया। आज के दिन भारत अपनी अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्मों, अपनी संस्कृतियों को का जश्न मना रहा है। किस तरह से अनेकता में एकता है इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो ये जो परेड हो रही है इसकी भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।

तो सारे जहां से अच्छा की धुन पर यहां पर परेड हो रही है, प्रस्तुति दी जा रही है, गार्ड ऑफ ऑनर परेड। ये तस्वीर आप देख रहे हैं तीनों सेना और पुलिस के समन्वय के साथ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर मौजूद हैं, यहां पर परेड की जा रही है, लाल किले पर होने वाली परेड और सैन्य प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो वहीं यहाँ पर तिरंगा ऊंचा यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ऊंचाई पर यहाँ पर तिरंगा बना हुआ है, ध्वजारोहण हो चुका है, राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण हुआ और अब सारे जहां से अच्छा के धुन पर परेड होती हुई आप देख सकते हैं। आपको बता दें परेड की टुकड़ियां लाल किले के ठीक सामने ज्ञान पथ पर मार्च पास्ट करते हुए तैनात होती हैं। जब प्रधानमंत्री प्राचीर पर तिरंगा फहराने जाते हैं तो सेना के अलग अलग अंगों के कमांडिंग ऑफिसर और सैन्य बैंड राष्ट्रगान की धुन पर मार्च करते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य
1: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हरियाली तीज की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे हरियाली तीज के विशेष उपायों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगी, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगी। देखिए, जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं, महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें। और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, सुहागन स्त्री को, उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें। दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः 3 माला या 11 माला और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं हरियाली तीज पर, इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी? विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए भगवान शिव से और मां पार्वती से कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। जो आपने भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित किया था, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिएगा और इन वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगले साल तीज पर गांठ को खोलकर वस्त्रों को साफ करके पुनः आप अर्पित कर सकती हैं, पुनः गांठ लगाकर अपने पास रख सकती हैं। अगर आप महिला हैं और तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही करिएगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपको लाभ होगा। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का उपाय हरियाली तीज पर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पुरुष शीघ्र विवाह के लिए उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करेंगे। शिव जी को पीला और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा प्रदोष काल में करते हैं हरियाली तीज पर तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जाबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना। अयोध्या में रामलला के अर्चकों के लिए आज से ड्रेस कोड लागू, अब से पीले रंग की रेशमी धोती और अंगवस्त्र में नजर आएंगे सभी पुजारी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का त्यौहार है, तो हरियाली तीज के मौके की महिमा क्या है वो आपको विस्तार से पंडित जी बताएंगे। साथ ही हरियाली तीज पर कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में सुधार होगा, साथ ही ये उपाय आपकी जिंदगी के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे, ये सारी जानकारियां पंडित जी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: अगर आप महिला हैं और तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही करिएगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपको लाभ होगा।
5: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 15 अगस्त 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, बात होगी आज हरियाली तीज के बारे में। सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है। पंडित जी
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी।
5: चलिए, हरियाली तीज से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से हम आगे जाके पूछेंगे, लेकिन अब आते हैं राशिफल पर। और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
5: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से अब ये पूछते हैं। पंडित जी, हरियाली तीज पर जो पूजन हम करते हैं, जिस तरह के भी उपाय हम करते हैं, इस पूजन के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या यूं पूछूं आपसे कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए।
0: देखिए, जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर, उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं, महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें, और मां पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा।
5: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, अंत में जाके आपको महा उपाय के बारे में बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे, राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
0: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, उसका जवाब आप अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 2004, जन्म का समय सुबह के 8:35, जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे सिविल सर्विस में सफलता मिलेगी या मुझे किसी और क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए? अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और पहले आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, उसमें जब आपको सफलता मिल जाए तब आगे यूपीएससी की तरफ बढ़िएगा। अभी से आप अपना प्रयास करिए, आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। एक साथ कई रास्तों पर चलने का प्रयास ना करें और बार बार अपना लक्ष्य ना बदलें। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है अगला सवाल और कौन से दर्शक का है।
0: जी, अगला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है और शालिनी जी हमें हरिद्वार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1984, जन्म का समय सुबह के 10:40, जन्म का स्थान है पौड़ी गढ़वाल और मेल लिखती हैं हरिद्वार से। शालिनी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर के टूट चुका है, क्या आगे मेरे दूसरे विवाह होने की संभावना बनती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा और दूसरा विवाह साल 2027 के मध्य में यानी 2027 के अप्रैल के बाद आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है। आपका दूसरा विवाह सफल होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: देखिए, हरियाली तीज का मौका है तो ये सवाल तो पूछना बनता है। पंडित जी, ये बताइए कि हरियाली तीज पर अगर शीघ्र विवाह कोई करना चाहता है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किस तरह से करनी चाहिए?
0: जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें। दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं हरियाली तीज पर, इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली 3 राशियों का भी हाल आप सबको बता देते हैं। अभी बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे कि इनके भाग्य में आज का लिखा है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए, विवाह अगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं वो पंडित जी ने आपको बताया। आप ये जानते हैं कि सुखद वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं उसके लिए हरियाली तीज के इस खास मौके पर कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं पंडित जी।
0: जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी। विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए भगवान शिव से और मां पार्वती से कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। जो आपने भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित किया था, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिएगा और इन वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगले साल तीज पर गांठ को खोलकर वस्त्रों को साफ करके पुनः आप अर्पित कर सकती हैं, पुनः गांठ लगाकर अपने पास रख सकती हैं।
1: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए अंतिम तीन राशियों का हाल भी आपके साथ साझा करते हैं। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी है, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है और कौन सा सवाल आया है पंडित जी के पास।
0: जी अगला प्रश्न राम कृपाल जी ने हमें लिखा है और राम कृपाल जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1994। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को तैयार नहीं है, तो क्या मेरे बेटे का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? राम कृपाल जी, आपके बेटे की शादी जरूर होगी और आपके सुपुत्र अपनी इच्छा से विवाह करेंगे। साल 2027 में जून से लेकर दिसंबर के बीच वाले समय में इनके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से ही होगा, तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए अपने बेटे के लिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए, इससे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
1: अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में ले लेते हैं और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल है।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें रजनी बाला जी ने लिखा है और रजनी बाला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1978। जन्म का समय रात में 9:30। जन्म स्थान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि काफी समय से मैं और मेरे पति मिलकर अपनी एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी कब तक ले सकेंगे और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रजनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करिए। जमीन खरीदकर मकान बनवा पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर बना बनाया फ्लैट या मकान खरीदें तो वो साल 2026 के अंत तक हो जाएगा। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, आपके भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा आने वाले समय में अपनी आंखों का अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी अब आपको बताएंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 15 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे यानी उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

दिन 15 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर में और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए

0: का और दुख का प्रतीक है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में अगर विवाहिता महिलाएं काले रंग का प्रयोग करेंगी तो उसमें समस्या आ सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो विवाहिता महिलाओं को काले रंग के वस्त्रों से और काले रंग की श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
1: चलिए पंडित जी से जानना चाहेंगे 15 अगस्त 2026 शनिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में 15 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो आपको जानकारी देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुडलक राशि है कन्या। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी।
1: चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय की जिसका आपको भी इंतजार रहता है। तो खास उपाय, अचूक उपाय या फिर यूं कहें कि महा उपाय आज का क्या है, पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का उपाय हरियाली तीज पर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। पुरुष शीघ्र विवाह के लिए उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करेंगे। शिव जी को पीला और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा प्रदोष काल में करते हैं हरियाली तीज पर तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: पंडित जी तमाम जानकारियां और उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। चलिए अब बात करते हैं हरियाली तीज की। सावन के महीने में मनाया जाने वाला इस पर्व, ये इसकी रौनक दिखाई दे रही है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। महिलाएं आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं।

0: सावन का महीना बारिश की रिमझिम फुहार, लोक गीतों की मिठास और 16 श्रृंगार कर झूला झूलती महिलाएं, ये तमाम रंग हैं उस त्योहार के जिसका सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार किया करती हैं। इनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद देश में हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला है। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आया तो इसकी रौनक उत्तर भारत में नजर आने लगी। जयपुर में तो सज धज कर आई ये महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर प्री सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं इस त्योहार के लिए खास तौर पर राजस्थान की पारंपरिक पोशाक लहरिया पहनकर आई हैं। किसी ने पारंपरिक मोठड़ा और गुलाबी लहरिया पहना तो कोई नए रंगों और डिजाइन के लहरिये में नजर आया। राजस्थानी पोशाक और पारंपरिक आभूषणों ने तीज के इस त्योहार में एक अलग ही रंग घोल दिया है।
1: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पे है, अलग अलग एक्टिविटीज साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। और देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिये में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नजर आ रही है।
0: इस पूरे सेलिब्रेशन में तीज का झूला खास आकर्षण बना रहा। महिलाएं बारी बारी से झूला झूलती दिखी और इसके साथ ही तस्वीरें भी क्लिक करवाई। झूले के आसपास पूरे समय उत्साह और चहल पहल बनी रही। हरियाली तीज राजस्थान में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का उत्सव है जिसे सुहागिन महिलाएं हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाती आई हैं।
2: पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मुझे काफ़ी शौक है। और लहरिया के लिए मैं वैसे ही बहुत क्रेजी हूँ, सो मैंने पूरा गेटअप इसी उस पर लिया है थीम पे।
3: तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में। सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज नो लव, हस्बैंड के लिए लव एक ही दिखाता है। ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव। एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं।
0: हरियाली तीज की बात हो और घेवर का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हर साल की तरह इस साल भी बाजार में एक से बढ़कर एक स्वाद और फ्लेवर वाले घेवर मिल रहे हैं। जयपुर में इस बार करीब 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर खास आकर्षण बना हुआ है। आम घेवर जहां मैदा से तैयार होता है तो वहीं इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है। इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट की परत है। सबसे खास है इसका गोल्ड टच, ऊपर सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल हुआ है। इसी शाही और प्रीमियम अंदाज की वजह से इसकी कीमत 21,000 रुपए है।
4: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार, और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपए पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
5: जी।
4: साथ ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा, घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोर्स्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डाला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड वो भी डाली है, और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है, और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है अगेन विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे, रबड़ी इसमें नहीं यूज हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है, जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है।
0: बदलते समय के साथ घेवर कई साइज और स्वाद में मौजूद है। जयपुर में घेवर 3 साइज में मिल रहा है, रेगुलर 3 इंच का मिनी और 1.4 इंच का छोटा घेवर। अलग अलग पैक में पसंद के फ्लेवर चुनने का विकल्प भी आपको मिलेगा। मसलन 16 पीस के पैक में अलग अलग फ्लेवर शामिल किए जा सकते हैं, जबकि 4 पीस के पैक में अपनी पसंद के 4 फ्लेवर आप चुन सकते हैं। यानी त्योहार पर घर ले जाने से लेकर गिफ्टिंग तक घेवर का अंदाज भी अब काफी मॉडर्न हो गया है, और अगर मीठे घेवर से मन भर गया हो तो इसका चटपटा अंदाज घेवर चाट भी लोगों के लिए मौजूद है।
1: घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नजर आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं। अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं, और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं। कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है, पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को, जिसको कहा जाता है जेन जी, उनको खास पसंद आते
4: हैं। आजकल लोग मिठाई खाना चाहते हैं पर वैरायटी में खाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आप हर फ्लेवर चख सकते हैं छोटे छोटे साइजेज में। इसको हमने नाम दिया है कॉइन घेवर।
1: कौन से फ्लेवर्स आप बताइए इसमें मौजूद
4: हैं? इसमें 16 तरह के फ्लेवर हैं। पान हो गया, ये रबड़ी हो गया, रोज़ गुलकंद, न्यूटेला, ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, लोटस बिस्कॉफ, ये रेगुलर केसर चाशनी पिस्ता, ये मैंगो मैनिया, तिरामासु, कुनाफा घेवर, लेमन चीज़ केक, ब्लूबेरी, और ये हमारा हो गया लीची क्रीम, और साथ ही में ये बेल्जियन चॉकलेट। एक जनरली लोग आजकल चाहते हैं, अगर हम मीठा कम खाना चाहते हैं और मीठे इतना सारा जब मीठा खा लिया है त्यौहार पे, उसके साथ उनको कुछ नमकीन टेस्ट चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज़ डिश बनाई है जिसको हमने घेवर चाट बनाया है। बेस इसमें घेवर का ही है, जो जनरली हम देखते हैं मैदा और चीनी और घी से बना हुआ, और ऊपर जो इसमें ग्लेजिंग है ये अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, छोले हैं इसमें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में मूली, चुकंदर के लच्छे डले हुए हैं।
0: बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में हरियाली तीज को भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: वीरांगनाओं का देश है, रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना।
1: तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की वर्षों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो।
2: क्या बात, क्या
1: संभालो इसे, यही ताकत है यारो।
3: नेपाल, बांग्लादेश, भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम, दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे।
4: अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
5: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई एआई से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ नजर आ रहा है तभी बच्चे की माँ भी

अच्छा लगता है ना, उस की मार धाड़ और कम से कम लोगों उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: ना सॉवरेन नेशन कहलाया और आज से ही देश के फैसलों के यहाँ पर लेने का अधिकार भी खुद भारतीयों के हाथ में आया। इसी दिन देश के नागरिकों को समानता अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली और अपने नेता को खुद चुनने का मौका भी प्राप्त हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हर बार की तरह इस बार भी स्कूली छात्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इनसे हाथ मिलाकर बात करते हुए, मुलाकात करते हुए, गर्मजोशी के साथ उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हर बार की तरह ध्वजारोहण के बाद, अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के बीच पहुंचते हैं और बेहद गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए उनसे मुलाकात करते हैं। उनका जोश बढ़ाते हुए, मुस्कुराकर उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो भारत की युवा पीढ़ी, भारत की युवा शक्ति, जो कि इस बार का थीम भी है, और छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, वंदे मातरम की आकृति बनाते हुए भी यहाँ पर मौजूद हैं छात्र, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जिसका इन छात्रों को काफ़ी देर से इंतज़ार भी था। सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के बाद इनके बीच पहुंचे हैं, हाथ हिलाकर इनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन छात्रों का जोश भी आप देख सकते हैं, उत्साह भी आप देख सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन किस तरह से यहाँ पर देशभक्ति देखने को मिल रही है, उसका ये अद्भुत, उसका ये भव्य नज़ारा आपके सामने है। आज़ादी का जश्न आज मनाया जा रहा है। भारत की संस्कृति को साथ लिए हुए किस तरह विकास की राह पर भारत आगे बढ़ रहा है, आज इसे गर्व के साथ मनाने का दिवस है। इसका जश्न मनाने का आज दिवस है और युवा किस तरह से बड़ी भूमिका इसमें निभाते हैं, आज उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा हुआ, यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की गई दर्शकों के ऊपर, और आपको बता दें किसानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, युवाओं को यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर छावनी में इसे तब्दील किया गया है, जिससे परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी लोगों के बीच जाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, मुस्कुराकर उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जश्ने आजादी किस तरह से मनाई जा रही है, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरा हुआ और इसके बाद पीएम मोदी अब यहाँ पर मौजूद अतिथियों के बीच पहुंचे, यहाँ पर मौजूद लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। आज पूरा देश देशभक्ति की भावना में लीन नजर आ रहा है। आज देश के वीर सपूतों को, वीर जवानों को याद किया जा रहा है, उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी जान की आहुति दे दी। आज उन्हें याद किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं आज तिरंगे को जगह जगह पर कुछ इसी तरह से लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर झंडा फहरा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। सबसे पहले युवाओं से मिलते हुए नजर आए, छात्रों से मिलते हुए दिखाई दिए और अब यहाँ लोगों के बीच उनकी मौजूदगी हो चली है। तस्वीरें आप देखिए, हाथ हिलाकर लोगों से मिलते हुए पीएम की ये तस्वीरें। हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों के बीच आ पहुंचे हैं, उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराकर उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बार का जो थीम है वो युवाओं की भूमिका को मुख्य रूप से अब उजागर किया जा रहा है, क्योंकि युवा इस देश की शक्ति हैं, जो 2047 तक भारत के एक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनने में बेहद अहम योगदान देने वाले हैं। तो वहीं आत्मनिर्भर और हरित भारत भी इसके तहत एक अहम मुद्दा है। इस थीम के तहत आत्मनिर्भर रक्षा भी ग्रीन ट्रांजिशन हो या फिर 6G ट्रायल्स हों, ऐसे स्वदेशी तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया गया है और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है क्योंकि ये दिन हमारे देश के पुनर्जन्म का, हमारे देश के स्वाभिमान का और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। किस तरह से भारत की अलग अलग संस्कृतियां, भारत के अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं सब एक साथ मिलकर एक पर्व को मनाते हैं, एक जश्न मनाते हैं, उसकी ये तस्वीर है, उसका ये दिन है। 200 सालों के ब्रिटिश शासन से आज के दिन मुक्ति मिली थी। वीर शहीदों और बलिदानों को नमन करने का आज दिन है। आज ही देश संप्रभु राष्ट्र बना था और भारतीयों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले थे। भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों का देश है और स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अवसर है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक तिरंगे के नीचे एकजुट करता है और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। GNT पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है देशभक्ति में किस तरह से लोग लीन नजर आ रहे हैं, पूरे देश में तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, हर ओर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई जो ये बयां करती हैं कि किस तरह से लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है, देश के प्रति समर्पण है। हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो भाव विभोर कर देने वाली हैं। ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं बल्कि ये देखने का भी है कि आज़ादी के बाद से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में कितनी प्रगति की है। ये दिन हर नागरिक को देश की समस्याओं को मिटाने और विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है और इसीलिए इस बार का ये थीम रखा गया है विकसित भारत 2047, जिसमें अब तक की भारत की उपलब्धियों की बात की गई, जिसमें भारत की चुनौतियों की भी बात की गई, क्योंकि जो देश भारत आगे बढ़ रहा है उसमें चुनौतियों की बात करना भी बेहद ज़रूरी है जिससे भारत की प्रगति में कोई बाधा ना आए। तो वहीं इसमें युवाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया गया, युवाओं की भागीदारी को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी बात की गई। भारत को लेकर भारत सरकार का विजन क्या है, आने वाले सालों में भारत किस तरह से आकार लेने वाला है, इसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है, इसको लेकर भी आज जिक्र किया गया। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर झंडा फहराया और ऊंचाई पर झंडा फहराया गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से तिरंगा शान के साथ आसमान में लहरा रहा है और देश का गौरव, देश के यहाँ पर सम्मान को बढ़ा रहा है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। लाल किले पर झंडा फहरा रहा है, ये प्रतीक है भारत के लोकतंत्र का, भारत की आज़ादी का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर झंडा फहराया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, उसके बाद सलामी दी गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। देश आज आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ को मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया, 13वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है। आपको बता दें 2014 में पहली बार ध्वजारोहण किया था और अब 2026 में। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को इस दिवस की बधाई दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ को मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया। 13वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है और इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने लाल किले से और क्या क्या कहा है आपको सुनवाते हैं।
1: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। सर्वोच्च नेतृत्व को इतने करीब देखकर उनसे आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। शुरू हो चुका है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यही वो अवसर है, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही, आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। शुरू हो चुका है, दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। इस बार की थीम विकसित भारत एट 2047 में युवा शक्ति, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर चाहे वो सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनना हो या फिर डिफेंस के क्षेत्र में भारत की गति को बढ़ाना हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, आधुनिक रेलवे कोच बनाना हो, मोबाइल फोन के उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना हो या फिर डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में अपना परचम लहराना। भारत ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, अपना झंडा बुलंद किया है और गरीबों को घर देने का, इसके अलावा पुराने कानून खत्म करने का, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता पर एक बार फिर से जोर देते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें बाकी देशों से मिलती हैं उसे हमें भारत में विकसित करना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है, जिससे विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत एक्ट 2047 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।

0: आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित, 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया, कहा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेन जी के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा 1 करोड़ युवाओं को देंगे एआई की ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी करेंगे व्यवस्था। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना। अयोध्या में रामलला के अर्चकों के लिए आज से ड्रेस कोड लागू, अब से पीले रंग की रेशमी धोती और अंगवस्त्र में नजर आएंगे सभी पुजारी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम, आजादी का उत्सव मनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परोमिता देशमुख जी। परोमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परोमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए, कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शून्य के उनाश, एकला चलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी, हाँ, जी, जी।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: श्वेत केसरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं।
1: आजादी क्या है जेंजी की नजर?
2: आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ बन जाना।
3: तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो।
4: जल थल नभ चहुओर देश रक्षित है, वीर रण बांकुरों को शीश नत कीजिए।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: देश है रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना।
10: तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यार।
1: क्या बात, क्या
10: संभालो इसे, यही ताकत है यार।
11: नेपाल, बांग्लादेश, भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: नौ बताएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे।
12: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। लाल किले पर नारी शक्ति की भी झलक। लाल किले पर ध्वजारोहण का सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह रही मौजूद। ध्वजारोहण में पीएम मोदी की मदद की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया। कहा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेन जी के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा 1 करोड़ युवाओं को देंगे AI की ट्रेनिंग। फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी करेंगे व्यवस्था। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती के सुख समृद्धि की कामना।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हरियाली तीज की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे हरियाली तीज के विशेष उपायों के बारे में। 12 राशियों का राशिफल भी बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें और मां पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा। सिंह राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें। दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं हरियाली तीज पर, इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी? विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए भगवान शिव से और मां पार्वती से कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। जो आपने भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित किया था, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिएगा और इन वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगले साल तीज पर गांठ को खोलकर वस्त्रों को साफ करके पुनः आप अर्पित कर सकती हैं, पुनः गांठ लगाकर अपने पास रख सकती हैं। अगर आप महिला हैं और तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही करिएगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपको लाभ होगा। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का उपाय हरियाली तीज पर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पुरुष शीघ्र विवाह के लिए उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करेंगे। शिव जी को पीला और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा प्रदोष काल में करते हैं हरियाली तीज पर तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: वीरांगनाओं का देश है, रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना।
2: तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यार।
3: क्या बात, क्या?
2: संभालो इसे, यही ताकत है यार।
4: नेपाल, बांग्लादेश, भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम, दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा पाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के बिगड़े काम बना देगा? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि को करियर में नए मौके देगा, और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के व्यक्ति की सेहत बिगाड़ देगा? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पांच चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी, आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी यहां सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान, और आपको हम कहें, आपकी सरकार को, आपके राजा साहब को हम धन्यवाद देते हुए कहें, यहां के प्रिंस, कि आपने जो बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम जो आयोजित करवाया ना, जो आपने अबू धाबी में राम मंदिर बनवाया, इनसे आपने भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले लगभग 120 करोड़ हिंदुओं के भाव को अपने से जोड़ा है। बागेश्वर धाम को आपने जो सम्मान पूर्वक बुलाया, जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी इस कार्यक्रम को जो आपने कराया, सच बताएं बागेश्वर धाम हम भर नहीं है, यहां रहने वाले जो लाखों लोग हैं और भारत में रहने वाले 100 करोड़ जो सनातनी है उनका नाम बागेश्वर धाम है। आपने 100 करोड़ सनातनियों के भाव का सम्मान किया है, ये पहली आपकी महानता। दूसरी दुबई की महानता ये है, यहां समान नागरिकता है। हां जी या ना जी, बोलो है या नहीं। यहां के मूल निवासी भी वही नियम का पालन करते हैं जो बाहर वाले करो, हमने ये देखा। तीसरी यहां की बात जो सबसे खूबसूरत है, सभी को नियम पालन करना पड़ता है। भारत में चाहे तुम दाएं से गाड़ी चला लो, चाहे बाएं से, चाहे जितनी चींपों कर लो, पर यहां पर एक सिस्टम है और वो यहां के मूल निवासी भी फॉलो करते हैं और विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि यहां सब कुछ प्रोटोकॉल में है। यहां की हमने चौथी जो खूबसूरती देखी वो ये देखा है कि विश्व को एक आपने इतना बड़ा संदेश दिया कि यहां बड़ा मंदिर भी है तो गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है और मस्जिद भी है। ये जो आपने संदेश दिया ना, एक नई लाइन खींच दी, मतलब पूरी दुनिया में आपको सब कुछ देखना हो तो दुबई आ जाओ। पांचवी जो बात, अच्छा हम दुबई की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, पर हम गा रहे हैं। और पांचवी जो हमने बात यहां की देखी वो और अद्भुत है, सुरक्षा। हां जी या ना जी, हां जी या ना जी, ये पांच बातें तो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं। और केवल सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम तो ये बात लेकर के यहां से जा रहे हैं, हम अपने भारत में जाकर के सबको बताएंगे। पर भैया अब एक बात बोले, यही संस्कृति हमारे भारत से मिलती जुलती है। वर्तमान में हमारा देश भारत भी इसी ओर अग्रसर है, इसलिए भारत नित नई इमारतें बना रहा है, भारत नित नया इतिहास बना रहा है, और राम मंदिर बना करके भी भारत ने एक नित नया इतिहास बनाया है। जो आपने यहां अबू धाबी में राम मंदिर बनाया, उधर अयोध्या में हमारे यहां बन गया। दोनों कंट्रियां जो दोनों देश हैं, दोनों बहुत तेजी के साथ विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं इन दोनों देशों को किसी की नजर ना लगे। और दुबई के लिए, दुबई के साथ भारत का पुराना नाता है, दुबई की उन्नति में भारत के मूल लोगों का साथ है, लेकिन वर्तमान में भारत के लिए व्यापारिक केंद्र दुबई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम तो भैया भारत में रहने वाले लोगों से भी कहेंगे, अद्भुत है। हम लोग अपने जीवन में इस बातों को देखो, जो जहां से पाओ वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छी चीज कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति भी, जिस संस्कृति से हम आते हैं, वो संस्कृति भी क्या अद्भुत है, उस संस्कृति की भी क्या अद्भुतता है, क्या विविधता है। हमारे भारत में भी भाषा अनेक है, पर सबका दिल एक है।

0: से प्यार करता है?
1: भारत देश है।
0: क्या आप भारत से प्यार करते हो? हाँ जी या ना जी?
1: देश
0: जो हाथ नहीं उठाएगा ना। अच्छा, भारत के साथ साथ दुबई में रहने वाले लोग कौन कौन दुबई से प्यार करते हैं?

संस्कृति की महानता बताने नहीं, हम दुबई की महिमा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बताने और जगाने आए हैं कि जो आप कर रहे वही हमारे भारत देश में 10,000 वर्ष पूर्व वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए हम भारतीय होने के नाते गर्व के साथ कहते हैं, भैया जहां भी रहो सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहो।

कुछ यहाँ है, सभी संस्कृतियां हैं, ऐसे ही अपने भारत की भी बात सुनो। इसीलिए तो दोनों देश बहुत क्लोज हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। यूएई और भारत दोनों में प्रगाढ़ प्रेम क्यों है? इसी कारण से। ओ हम जब आबू धाबी में राम मंदिर में गए, हमारे साथ सब लोग गए, वहां पर मंदिर के अंदर हमें बताया गया ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है। बाहर गंगा और यमुना का सरोवर, अंदर सरस्वती। हमारा मन गदगद हो गया, इसलिए हमने फिर कहा

0: काल है तो परमात्मा भारत है। भैया अगर भारत तन है तो मन नेपाल है, नेपाल भक्ति है तो भारत भगवान है, और आत्मा के बिना परमात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, भक्ति के बिना भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और भगवान के बिना भक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो कितना अद्भुत संयोग है। इस कथा के मुख्य आयोजन करवाने वाली हमारी बहन पूनम कहां से? नेपाल से, जहां पर माता जानकी जी विराजमान हैं, उनकी नगरी से, श्री किशोरी जी की नगरी से। इसलिए हम लोग भी दोनों हाथ उठाकर तीनों राष्ट्रों के लिए,
1: यह है भारत देश के मेरा,
0: ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे उठाओ दोनों हाथ।

आपका मन करे थोड़ा पैर ठीक करना हो तो अपनी कुर्सी से खड़े होकर थोड़ा ठुमका लगा सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कथा निशुल्क है, ठुमका भी निशुल्क है। हो अब जो खड़ा नहीं होगा उसको अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। बाद में मत कहना कि आपको पड़ोसी बेकार मिला, फिर बागेश्वर धाम पर आकर अर्जी मत लगाना।

0: वीरांगनाओं का देश है, रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना।
1: तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यार।
2: क्या बात, क्या?
1: संभालो इसे, यही ताकत है यार।
3: नेपाल, बांग्लादेश, भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम, दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा पाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची

0: खबरों का वक्त, रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
20: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: राशि परिवर्तन किस राशि के बिगड़े काम बना देगा? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि को करियर में नए मौके देगा? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के व्यक्ति की सेहत बिगाड़ देगा? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आजादी के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही मौजूद, ध्वजारोहण में की पीएम मोदी की मदद। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित, 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया, कहा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेंजी के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा 1 करोड़ युवाओं को देंगे AI की ट्रेनिंग फ्री, ऑनलाइन कोचिंग की भी करेंगे व्यवस्था। विदेशों में भी मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न, मेलबर्न में लेजेंडरी अभिनेत्री रेखा ने किया ध्वजारोहण, मौके पर कई भारतीय अभिनेता मौजूद रहे। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।

0: अलावा स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं, 80वां आजादी दिवस है। और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या, आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए जेंजी का बहुत बोलबाला है, हर तरफ जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियन को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की स्टोरी को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बात भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए। और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं, हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाईं तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई, जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत, अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड, यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शोभित अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या, एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं, राजपाल आप ही से शुरू करूंगी, आजाद हैं हम?
1: हाँ आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों?
1: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
0: जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया,
1: जेंजी हैप्पी भी है ही है इंडिया के साथ,
0: जेंजी हैप्पी है। शोभित
2: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
0: अलंकृत,
3: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
4: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
0: और पता किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी,
5: देखिए अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
5: ये किसी एक स्वस्थ परिवार की, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी,
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
6: मैम, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या बात,
6: जेंजी की सबसे अच्छी बात।
0: हां जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
7: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ। हाँ। मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
7: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजादी, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
2: देखिए मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी लिखी,
3: स्वागत है,
0: स्वागत
2: के आजादी है नहीं एक का शासन। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है तो आप आजाद नहीं है, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भींच सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
5: क्या बात है, बहुत खूब।
2: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मीबाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना।
5: क्या बात है।
2: आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
5: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
5: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए आज जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
6: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे।
5: क्या बात है।
6: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो ये काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंत्र प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए, अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं, विदेश से, वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांघो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाबी हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली, हे पंकज हे बजरंग बली उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार।
5: बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है,
0: लेकिन एक सवाल भी आता है आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
5: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
0: जी।
5: आज सड़क से लेके संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
0: बिल्कुल,
5: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
0: बिल्कुल,
5: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैन जी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, जीरो डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप वृत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बांकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बांकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
0: बिल्कुल,
5: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दम्भियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु किंतु दम्भियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
1: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है तो संभालने वाला कौन होता, भारत होता है।
0: क्या बात,
1: कोरोना का काल हो किसने संभाला, भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धधकती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूं
0: स्वागत
1: कि भारत

लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एकजुट हो गए। तब कहता हूं कि भारत मा

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी, एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। कि वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था, जय हनुमान। उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से पावनी जेनजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
3: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या बात।
3: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छाव में पलते कुकुरमुत्ते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, चालक अनाड़ी है। हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम वो खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की, और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं। तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगी?
4: जी, सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
4: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेन ज़ी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है, तभी पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं।
1: क्या बात।
4: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। पढ़ती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की, इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सुनिएगा। ये अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है।
1: क्या बात है।
4: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेन ज़ी हूँ तो मुझसे बेहतर जेन ज़ी को कौन समझ सकता है।
1: बिल्कुल।
4: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेन ज़ी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आजादी के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

0: स्वागत है। आजादी दिवस हम मना रहे हैं और मेरे ख्याल से इस मंच से बेहतर और कोई मंच हो नहीं सकता जब देश का जेंजी हमारे साथ मौजूद है और हम सुन रहे हैं उसको। जेंजी क्या चाहता है, किस तरीके से, उसका लक्ष्य क्या है, भारत किस तरीके से आगे बढ़े, उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को लेकर किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। चलिए यहीं से हम अपने इस कवि सम्मेलन को भी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत क्यों खास है बताइए।
1: अपने काम के सिलसिले में अलग अलग देशों में रहना हुआ, जाना हुआ, तो पूरी जिम्मेदारी से कई देशों में रहने के बाद एक कविता लिखी, एक कविता उतरी, वो आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि भारत में ही अवतार क्यों हुए, ऐसा क्या है। तो चलिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से जुड़ते हैं। मानचित्र के अंबर पर मान

0: के बर्फीले पर्वत गोवा सागर घेरा है, मध्य प्रदेश घने जंगल तो कच्छ रेतीला डेरा है, चारों धाम यहाँ स्थित है, रामायण गुरबानी है, आल्हा उदल की कविताएं तानसेन की वाणी है, आल्हा उदल की कविताएं तानसेन की वाणी है, पृथ्वीराज महाराणा के बलिदानों की थाती है, सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं, सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं, प्रेमचंद्र के किस्से पढ़ते मीरा के दीवाने हैं, इस मंच के नाम कर रही हूँ, प्रेमचंद्र के किस्से पढ़ते मीरा के दीवाने हैं, दिनकर और निराला जैसों की गर्वित संताने हैं, दिनकर और निराला जैसों की गर्वित संताने हैं, निज गौरव और आन बान पर बात कोई जब आती है, यहाँ चूड़ियाँ और तलवारें एक हाथ सज जाती
1: क्या बात है,
0: यहाँ चूड़ियाँ और तलवारें एक हाथ सज जाती है, अपनों को छोड़ो हमने गैरों को अपना माना है, शांति सूत्र में विश्व बंधा हो एक लक्ष्य ये ठाना है, आज यहाँ पावन बेला में ये संकल्प उठाना है, विश्व गुरु सोने की चिड़िया फिर से इसे बनाना है, विश्व गुरु सोने की चिड़िया फिर से इसे बनाना है।
1: बिल्कुल, जब हम विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं भारत को, तो यकीन मानिए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो मोहित, क्या क्या जिम्मेदारी है हमारी जिसे निभाना है साथ ही साथ?
2: मैं एक जेंजी हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ सरकार को और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभावों में लिखी है जो उसी घर की कहानी है, समझ बैठे लहू जिसको मेरी आंखों का पानी है, मैं पायल और कंगन की खनक को भूल बैठा हूँ, तिरंगे के लिए कुर्बान अब करनी जवानी है, तिरंगे के लिए कुर्बान अब। और जेन जी की ताकत क्या है कि देश के लिए खड़े हैं, कोई ना समझे कि देश के खिलाफ है इस देश के जेन जी, देश के लिए खड़े हैं, देश के लिए लड़े हैं, देश पर ही अपने ये प्राण वारते हैं हम, प्यार में तो हमसे कोई भी जीत जाए पर छल और बल से कभी ना हारते हैं हम, बैठकर संसद में खुद को खुदा जो माने उन सत्ताधीशों का नशा उतारते हैं हम, और जिस जगह लोग मुंह खोलने से डरते हैं उस जगह शेर सी दहाड़ मारते हैं, उस जगह शेर सी दहाड़ मारते हैं। मैं जेंजी हूं, हो सकता है एक दो साल ऊपर नीचे हूं, मैं सीनियर जेंजी हूं।
1: अच्छा, तो जेंजी की भी कैटेगरी हो गई है,
2: सुपर सीनियर
1: जेंजी या जूनियर जेंजी।
2: अब सीनियर का तो काम है जूनियर को समझाना, ये हर जगह होता है, तो एक सीनियर जेंजी अपने जूनियर जेंजी से कह रहा है कि तुम्हें बनना क्या है, ये वीरांगनाओं का देश है, रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना। This is the advice of a senior Gen Z to the junior Gen Z. बनना क्या?
1: दोबारा एडवाइस दे दो।
3: प्रोमो कटेगा।
1: दोबारा एडवाइस दे दो।
2: मैं फिर से एडवाइस ही दे रहा हूँ कि जो देश है ये वीरांगनाओं का, ऐसी वीरांगनाओं का देश है, इसको रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, मेरी सलाह है अपने छोटे भाइयों के लिए, जूनियर जेंजीज के लिए, भाइयों बहनों के लिए, कि तुम्हें, तुमको दुनिया से भिड़ना है,

0: राणा की तलवार बनो, वक्त चीर दे दुश्मन का, वक्त चीर दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। तुमको दुनिया से भिड़ना है, क्या करना है जेंजीज को, तुमको दुनिया से भिड़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है, मेहनत का पर्वत चढ़ना है, इतिहास सुनहरा गढ़ना है, आलस पर थप्पड़ जड़ना है, फिर चट्टानों सा अड़ना है, जीवन में दिक्कत आएंगी, ये संघर्षों का झरना है, पर तय तुमको करना होगा, अब सड़ना है कि लड़ना है।
1: क्या बात,
0: इन आंखों में तूफान लिए, कुछ करने का अरमान लिए, मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रण का गान लिए, तुमान बान और शान लिए, सम्मान मान और ज्ञान लिए, वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए, अब चलो समर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए, चलो समर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए, ये जेंजीज को करना।
1: बिल्कुल, तो ये सीनियर जेंजी अलंकृत जूनियर जेंजीज को बहुत सारी एडवाइस दे रहा है, और इसी से मुझे लगता है कि भटके ना जेंजी, ऐसी एडवाइजेस की अक्सर हमें जरूरत होगी।
2: गीत है, वो गीत सुना रहा हूँ कि कैसे राम मिलते हैं। इनकी उनकी बात न सुनकर स्वयं खटो तो राम मिलेंगे, इनकी

0: मिलेंगे।
1: बिल्कुल राजपाल, दो लाइनें और चलते चलते।
2: एक हमारा जनजातियों का एक इतिहास रहा है,
1: लेकिन हम उसको नहीं भूल सकते,
2: लेकिन दुर्भाग्य से बातें भूल जाते हैं। तब मैं कहता हूँ कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, एक तरफ तोप थी एक तरफ खाली छाती, फिर भी वो लड़ते रहे, राष्ट्रभक्ति उनको भाती और तीर धनुष लेके चले, ऐसे वो सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे।
1: बिल्कुल, और जब हम आजादी दिवस मना रहे हैं तो तिरंगे पर भी चंद पंक्तियां हमारे जेंजी की नजर से।
3: जी बहुत बहुत आभार। इस देश की आन बान शान उस तिरंगे के नाम पर एक बहुत छोटी कविता सुना रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस देश का व्यक्ति कभी नहीं सोचता मुझे स्वर्ग मिले, बस उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मेरा कफन तिरंगा हो, उसी तिरंगे के नाम पढ़ती हूँ। कि भारत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, भारत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था, सोच लिया अंग्रेजी शासन अपना सहन करेंगे, सोच लिया अंग्रेजी शासन अपना सहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे लंका दहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे लंका दहन करेंगे, कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी, अंग्रेजों के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी, अपना जीवन दिया और दुश्मन को भी ललकारा, ऊधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा।
1: क्या बात है।
3: लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था, लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था और वहां पर अमर तिरंगा हमने गाड़ दिया था, जिसकी खातिर अपने सैनिक सदा अड़े रहते हैं, सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे, सोच लिया है हम दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा, अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा, हर दिन।
1: क्या बात है।
3: आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो, 14 अमृत बरस रहा है, इसका अमृत पान करो, इसीलिए कहती हूँ अपने आप हौसला खोलो। कविता की अंतिम लाइन पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस स्टूडियो में सभी का भारत माता का जय घोष हो, पढ़ती हूँ कि इसीलिए कहती हूँ अपने आप हौसला खोलो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलो, भारत माता की
1: जय,
3: भारत माता की
1: जय,
3: भारत माता की।

0: जय। चलिए भारत माता की जय, हर जगह हो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो, और इसीलिए चलते चलते शोभित वंदना।
1: रिक्वेस्ट, क्योंकि जेंजी को रील से बातें समझ में आ जाती है, 15 सेकंड की एक रिक्वेस्ट मैं भी जेंजी से कर देता हूँ।
0: हाँ।
1: कि जिन्होंने झुकने दिया नहीं देश का मान, सर कटवाए लेकिन फिर भी बचा लिया सम्मान, तुम भी होना तो उनके जैसे ही बलिदानी होना, और जो भी बनना बन जाना पर पहले हिंदुस्तानी होना, पहले हिंदुस्तानी होना, क्योंकि तुम ही जनगण के मन हो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता, उठो उठो अब बुला रही है तुमको भारत माता।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर आए और आजादी दिवस को एक तरीके से आप हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, और आज जाना कि वाकई और आज जाना कि एक्चुअली जेंजी की नजर में भारत क्या है, आजादी क्या है, जेंजी कैसा आजाद भारत चाहता है, और ये आज हमने जेंजी की नजर से जाना है। आप सभी को आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की अपनी जानी पहचानी परंपरा को आज भी जारी रखा। वे 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली पारंपरिक शैली का लाल पगड़ी पहने हुए नजर आए। ये पगड़ी गुजराती संस्कृति की बंधेज पगड़ी है और इसके अलावा उन्होंने इस अवसर के लिए सफेद कुर्ते और चॉकलेट भूरे रंग के वेस्ट कोट के साथ राजस्थानी और गुजराती संस्कृति में प्रचलित इस पारंपरिक पगड़ी को पहना था। बंधेज पगड़ी हाथ से बनाई जाने वाली पगड़ी है जो टाई एंड डाई हस्तकला से तैयार की जाती है। इस पगड़ी के लिए कपड़ों को धागों से बांधकर और रंग कर तैयार किया जाता है। यह पगड़ी सम्मान, गौरव और उत्सव का प्रतीक मानी जाती है। यह सिर्फ को सजाने का एक साधन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। राष्ट्रीय ध्वज फहराते वक्त पूरे देश की निगाहें इस ऐतिहासिक पल पर टिकी हुई थी, जब 21 तोपों की गड़गड़ाहट और राष्ट्रगान की गूंज के बीच तिरंगा आसमान में लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे बेहद अनुशासित और दृढ़ मुद्रा में खड़ी भारतीय सेना की जाबाज अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने सभी का ध्यान खींच लिया। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारी हैं। सैन्य प्रोटोकॉल में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लाल किले पर कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की मौजूदगी ने देश की लाखों युवा लड़कियों के मन में देशभक्ति की नई अलग जगाई है। आज की भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका सिर्फ कागजी कामकाज या ऑफिस तक सीमित नहीं रही। कैप्टन सोनिया की यह झलक हर बेटी के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोलती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बार फिर से भारतीय तिरंगे का गौरव दिखा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया और इस बार मेलबर्न के ऐतिहासिक फेडरेशन स्क्वायर पर दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मौजूद हजारों प्रवासी भारतीयों ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाया, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी रेखा के साथ दिखाई दिए। इस दौरान विदेशी धरती पर भी भारत की धमक देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुंबई में एक खास सम्मेलन हुआ, जहां पर महाराष्ट्र भर से तमाम किसान शामिल हुए। इस सम्मेलन को आत्मनिर्भर भारत मंच का नाम दिया गया। गुड न्यूज टुडे के किसानों के साथ खास बातचीत हुई, जिसमें फार्मर्स ने बताया कि अब से 100 साल बाद कैसी होगी भारत की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: मुंबई में आत्मनिर्भय का एक मंच है जहां का एक इवेंट चल रहा है। महाराष्ट्र भर के किसान यहां पर आज जुटे हुए हैं। एक्सपीरियंस ट्रेनर और डॉक्टर्स मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जो खाद्य उत्पादन करते हैं उसे व्यवसाय में लाएं, किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो इन किसानों से ज़रूर पूछना ज़रूरी है कि 2047 में कैसा होगा भारत, 100 साल बाद कैसा होगा भारत, और आखिर अपनी तरफ से ये किस तरह का योगदान करेंगे। सर, वाकई में मैं आपको डॉक्टर शर्मा साहब से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छा मंच आपने बना रखा है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, लेकिन वाकई में जो मेरा सवाल है, किस हद तक आप अपने किसानों को वहाँ ले जाएंगे और किस तरीके से इस मैटर को देख रहे हैं, क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है, किसानों के मुद्दे पे है। और मैं वो भारत को देखता हूँ आने वाला 20 साल, 25 साल, 40 साल के बाद भारत विश्वगुरु आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं, तो सच में मैं उन किसानों को देखता हूं, क्योंकि मैं किसानों को बहुत ग्राउंड लेवल से जानता हूं। हर गांव-गांव में जाता हूं, हर गांव-गांव में किसानों को तैयार करता हूं कि अब आप पुरानी खेती को छोड़ के नई खेती को कैसे जन्म देंगे और आपका प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में जाने के लिए तैयार है।
4: तो हमको ऐसा लगता है कि लाइक यही हमारे मेंटर बन सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेस में या ये स्पेशली बिजनेस में मेंटर की बहुत ही जरूरत है कि आपको गाइडेंस करे गुरु की। तो हम सोचते कि सर हमें करे और हमें हम आगे बढ़े इसमें।
2: अच्छा, आपसे मैं बात करूंगा, क्या नाम है आपका?
5: जी, मेरा नाम घनश्याम फुलवारिया है।
2: तो आप भी आए हैं यहाँ पर, और किस तरीके से आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या कुछ सीखा आपने, क्या लगता है कितना आसान और कैसे?
5: जी, मैं एक खुद किसान का लड़का हूँ, जो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी सन 1950 में यहाँ आए थे, जब भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद में, तो हम जब से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा उद्योग चमड़े का उद्योग था, जिसको व्यापार को आगे लाने के लिए मैंने अपने फैमिली बिजनेस को, मैं यहाँ कम से कम, मुझे आज मेरी उम्र हो गई है 53 साल से उस बिजनेस में हूँ। तो यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं लोकल, लेकिन लोकल में इतना क्वांटिटी जो बनना चाहिए, और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं, वो मैं उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी को, चप्पल के, सैंडल्स के और बेलीस को, मैं विश्व में जो भारत के जो लोगों के कदमों में रहती है, मैं उसे सुंदर बना के कि अब एक भारत में भारत का नाम हो, कि हम इस, जिसे कहते हैं हम पद में रहना, मोदी जी का जैसे सपना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं उस सपने को साकार करने के लिए हमारे मेंटर श्री शर्मा जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे, मैंने पूरे 53 ईयर्स में बहुत जगह घूमा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इसी बिजनेस को, लेकिन मुझे यहाँ कहीं नहीं मिला। यहाँ आके मुझे वो संतुष्टि और वो जुनून मिला है कि मैं अपने मंजिल को पा लूंगा और भारत का नाम आगे करूंगा।
2: अच्छा, तो जैसा कि मैंने सबसे पूछा है, महिलाओं का कितना ज्यादा योगदान होना चाहिए और आपको कितना समर्थन और सपोर्ट मिलता है इस देशवासियों से और देश की सरकार से?
6: अभी तो भारत ऑलरेडी बहुत सारा आगे है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पुरुष ही आगे है, महिला भी आगे ही है, तो और आगे जाके भी और सारे नंबर से बढ़ेंगे, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होगी।
2: अच्छा, एज ए फीमेल किसानों के इस व्यवसाय में, बिजनेस में, जैसा कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाएगा, कितना ज़्यादा और भी लोगों का आना ज़रूरी है आपकी तरह?
6: बहुत सारा,
2: उनकी या फिर उनको जानकारी जानना ज़रूरी है,
6: जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा ओशन है, हम बहुत लिमिटेड में कर रहे हैं अभी एक्सपोर्ट, हमारे पास और होना चाहिए, क्योंकि बाहर भेजने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने पास है, इनबिल्ट इंडिया में है, जो अपन कर सकते हैं, जो अभी अपन इतना पहुँचे ही नहीं है।
2: वाकई में बताइए कि किसानों का योगदान किस तरीके से देखना चाहेंगे 100 साल बाद?
3: देखिए, किसान 100 साल बाद जो हमारा किसान होगा, पूरी तरह से समृद्ध किसान होगा, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से भरा किसान होगा, उसको पता होगा, जैसे हम देखते हैं कभी कभी कि एक ही पौधे में कई तरह के फूल आ रहे हैं, तो 100 साल बाद किसान एक कमरे में भी खेती करके करोड़ों की अर्निंग करता दिखेगा मुझे।
2: क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और गॉड ब्लेस यू आप सभी को भी, क्योंकि वाकई में किसानों को इस तरीके से अत्याधुनिक चीज़ों से मिलाना, उन्हें रूबरू कराना कि वो जो पैदा करते हैं वो डायरेक्ट बड़े बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किस तरीके से अपना व्यापार कर सकते हैं, ये सिखाना, गुड न्यूज़, इससे बड़ी भला और क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के बिगड़े काम बना देगा? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि को करियर में नए मौके देगा? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के व्यक्ति की सेहत बिगाड़ देगा? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आजादी के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के बिगड़े काम बना देगा? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि को करियर में नए मौके देगा? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किस राशि के व्यक्ति की सेहत बिगाड़ देगा? क्या है सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही मौजूद, ध्वजारोहण में की पीएम मोदी की मदद। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित, 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया, कहा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेंजी के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा 1 करोड़ युवाओं को देंगे AI की ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी करेंगे व्यवस्था। विदेशों में भी मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न, मेलबर्न में लेजेंडरी अभिनेत्री रेखा ने किया ध्वजारोहण, मौके पर कई भारतीय अभिनेता मौजूद रहे। छोटी काशी मंडी में रचा गया इतिहास, देश में पहली बार ड्रोन से हुई तिरंगे की डिलीवरी, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ऐतिहासिक पल के गवाह बने। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन मोटे तौर पे ब्रीफली बता देता है कि आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव अपने घर में अब जा रहे हैं, जाने को तैयार हैं, तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आपका अगला एक महीना यानी कि 17 अगस्त से लेके लगभग 16 सितंबर तक का जो एक महीने का समय होगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव है, क्या उपाय करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः, अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। बड़ा अद्भुत मंत्र है, बड़ा चमत्कारी। और जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं इस मंत्र से सूर्य देव आपके दिए गए अर्घ को, दिए गए जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लोटे में जल भर करके जाइए छत पर या जहां से भी जल देना है, हाथ जोड़कर 3 बार बोलिए, ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। और उसके बाद जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिए। अगर आप इस तरीके से सूर्य देव को अर्घ देंगे तो आपका अर्घ, आपका जल स्वीकार होगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। आपको पहले बताया कि हर महीने सूर्य देव राशि बदलते हैं और इस आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, सूर्य देव अभी तक लगभग कर्क राशि में विद्यमान हैं। अब 17 अगस्त को प्रातः काल सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में पहले से केतु विद्यमान हैं, तो सूर्य आ जाएंगे केतु के साथ राहु और केतु के एक्सिस में। साथ ही साथ इस समय, जिस समय सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाएगा। अब सूर्य हैं मुख्यतः शासन के और सत्ता के स्वामी, तो सूर्य देव का राहु केतु के एक्सिस में जाना राजनैतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन करा सकता है। राजनीति में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर छींटा कशी करेंगे, खींचतान करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। केतु का सूर्य के साथ हो जाना दुनिया भर में तनाव की स्थिति दोबारा दिखा रहा है, तो दुनिया में युद्ध और तनाव जैसी स्थिति दोबारा बन जाएगी ये संभावना दिख रही है। यानी एक बात तो आप मान करके चलिए कि दुनिया भर के राजनीति में हलचल मचेगी और सूर्य जो हैं उनका संबंध होता है ऋतुओं से, वैसे तो चंद्र का भी होता है लेकिन सूर्य मुख्यतः सृष्टि के हर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो सूर्य का केतु और राहु के एक्सिस में आ जाना मौसम की अजीब सी चाल भी दिखाएगा, कहीं वर्षा से समस्या होगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कहीं पर स्थितियां एकदम ठीक बनी रहेंगी। तो सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक महीने में चंद्र ग्रहण की संभावना भी बनेगी, तो उसमें भी सूर्य इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगले एक महीने का जो समय है वो दुनिया भर में बड़े परिवर्तन, बड़ी निगेटिविटी की सूचना दे रहा है। अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा मोटे तौर पे समझते हैं। देखिए सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश देश में आपदाएं बढ़ा सकता है, जल संबंधी आपदाओं की सूचना हो सकती है या प्रकृति का प्रकोप हो सकता है और अग्नि से समस्या बढ़ सकती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में आप देखेंगे कि इस समय लोगों को क्रोध ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा एग्रेसिव होंगे, तो बेवजह के विवाद और बेवजह की वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है। लोगों के बीच में बेवजह के झंझट आ सकते हैं। सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में आना और सूर्य शनि का 1-8 का संबंध होना, ये दुनिया भर में राजनैतिक विवाद बढ़ा सकता है। दुनिया भर की राजनीति में बड़ी हलचल और बड़ी उथल पुथल मच सकती है। भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पहले ही आपको बताया कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन में इस बार चंद्र ग्रहण भी जुड़ा हुआ है, तो भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए, बड़े लोगों का पद चला जाए, बड़े लोगों की कुर्सी चली जाए, इस तरह की संभावना बन रही है। किसी महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति के जीवन में या कला के क्षेत्र में हो, अभिनय में हो, एक्टिंग में हो, ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या दिख रही है। किसी राजनैतिक व्यक्ति का या कलाकार का अवसान इस समय में हो सकता है, ये संभावना बन रही है। तो देखिए सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि सूर्य देव अपनी राशि में गए, राहु केतु के एक्सिस में आ गए, लेकिन ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक महीने में जितने दिन में सूर्य सिंह राशि में रहेंगे उतने दिन में ही चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन और चंद्र ग्रहण को अगर आप देखें तो ये लोगों के जीवन पर इस बार बहुत ज्यादा असर डालेगा। अगले एक महीने तक 17 अगस्त से लेकर लगभग 16 सितंबर तक। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगला एक महीना कैसा रहने वाला है। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव से अगले एक महीने का हाल इनका कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। देखिए मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। आपके बड़े महत्वपूर्ण काम, आपके करियर के काम, आप करियर में बदलाव चाहते हैं, करियर के प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस समय बहुत सावधानी रखें। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जो मेष राशि की महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना है इस समय। पूरा आराम करें, सेहत में लापरवाही मत करें, जल्दबाजी में काम मत करें, वरना आपकी प्रेगनेंसी में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अगला एक महीना सतर्कता का महीना है और अगले एक महीने तक देखिए बहुत सारे काम आपके रुकेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, अगर धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में आपके काम बन जाएंगे। मेष राशि के लोग इस समय में एक छोटा सा काम करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी 108 बार करिएगा। ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि की बात करें, देखिए वृषभ राशि वालों का जो समय है वो थोड़ा मिला जुला चल रहा है। कुछ मामले उनके बेहतर हैं और कुछ मामले वृषभ वालों के एकदम बिगड़े हुए हैं। तो अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को देखें और अगले एक महीने का हाल देखें तो सबसे पहली बात यह है कि वृषभ वाले इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आपको बेवजह का सर दर्द परेशान कर सकता है, आपको शरीर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इस समय पेन की दिक्कत, दर्द की शिकायत वृषभ वालों की थोड़ी बढ़ सकती है और आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं कि आपके महत्वपूर्ण काम अभी रुकेंगे, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा कि काम अभी होना चाहिए, काम अभी करना है, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके महत्वपूर्ण काम होने में अभी 1.5-2 महीने लगेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और अगर महत्वपूर्ण काम रुक रहे हैं तो रुकने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय काम होने से काम बिगड़ते, इसलिए काम रुक रहे हैं तो रुकते रहें। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं, जैसा आपके दिल दिमाग से इस समय लग रहा है कि बहुत सारे वृषभ वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए चेंज ऑफ प्लेस कर लें, स्थान परिवर्तन कर लें, तो स्थान परिवर्तन का निर्णय देखिए वैसे तो मत लीजिए अभी, ज़्यादा अच्छा यही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लेना है तो बहुत सोच समझ के अपने निर्णय लीजिएगा, अपने निर्णयों में सावधानी रखिएगा। आपको भी मैं कहूंगा कि नियमित रूप से आपको जब मौका मिले आप गुड़ का और गेहूं का दान करिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रख करके गाय को रोज खिलाइए अगले एक महीने तक। गाय को गेहूं का आटा और गुड़, या गेहूं के आटे की रोटी और गुड़ आप नियमित रूप से खिलाइए या मंदिर में दान करिए। ऐसा लगातार अगर अगले एक महीने तक करेंगे आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, देखिए मिथुन वालों की दिक्कत क्या है कि करियर संभालते हैं तो परिवार बिगड़ता है, परिवार संभालते हैं तो करियर हिलने लगता है, यानी बेचारे परेशान हैं बैलेंस करने में। अब ऐसे में जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो इनके लिए राहत लेकर के आया है। मिथुन राशि वालों की जो आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हल होगी। करियर की समस्या भी मिथुन वालों की हल होती हुई इस समय दिखाई दे रही है। आपका रुका हुआ, आपका फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, यानी पैसे का मामला, करियर का मामला आपका बेहतर होगा, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी और परिवार और करियर को लेकर के जो बैलेंस की दिक्कत थी वो बैलेंस भी आपका दूर हो जाएगा वो बैलेंस की स्थिति बन जाएगी। मिथुन वाले अगले एक महीने में सोच समझकर बुद्धिमानी से काम करेंगे तो इनके तमाम महत्वपूर्ण काम बड़ी आसानी से बनेंगे, तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय हो जाएंगे। मिथुन वाले अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें, करियर में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, परिवार में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अगले एक महीने में लेने से आपको लाभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटाइएगा। क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। कर्क राशि। देखिए, कर्क वालों की मुश्किल, भावनात्मक मुश्किल बहुत है इस समय, और कर्क राशि वाले मानसिक समस्याओं से बड़ा जूझ रहे हैं। हालांकि एक 6-8 महीने में कर्क वाले देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तो कर्क वाले ये जान लें कि भाई अपने पारिवारिक मामलों में, अपने फैमिली मैटर्स में सावधानी रखें। खास तौर से वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन के मामलों में इस समय आपके दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक मामले आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखें, बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर आपको परेशान कर सकता है, और अपनी आंखों का ध्यान भी इस समय बनाए रखिएगा, क्योंकि आंखों में आपके दिक्कत हो सकती है, नज़र कमजोर हो सकती है, चश्मे का पावर बढ़ सकता है। अगर कहीं पैसा देना है, कहीं पैसा लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस समय धन के मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय पैसे रुपए के मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना बड़ा पैसा डूब सकता है, आपको बड़े धन का नुकसान हो सकता है। तो आपके परिवार का मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील है, अपनी फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान दीजिए और उसके बाद पैसे रुपयों के मामले का ध्यान देना जरूरी होगा। आपको मैं ये कहूंगा कि आप अधिक से अधिक रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा, बेहतर होगा। सुबह उठ करके पहले एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाइएगा और इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि। सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य देव प्रवेश करेंगे सिंह में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो सूर्य देव का पड़ेगा वो सिंह पर ही पड़ेगा। कैसा रहेगा? सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से अगले एक महीने तक आंखों और हड्डियों की समस्या से बचिएगा। आंखों की दिक्कत और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, आपकी आंखों में दिक्कतें इस समय आ सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, सतर्क रहें। परिवार की समस्या को लेके आपको दिक्कत हो सकती है, पारिवारिक समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, खास तौर से संतान के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है और वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। करियर में बिल्कुल शांति से रहिए, अगर नौकरी करते हैं तो शांति बनाए रखिए, क्योंकि करियर में बेवजह की समस्या, बेवजह की दिक्कत आ सकती है। तो सिंह वाले दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें और करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें तो सिंह वालों के लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो नियमित रूप से गुड़ और गेहूं का दान करिए या गेहूं के आटे की रोटी ले लें, उसमें गुड़ रखकर गाय को नियमित रूप से खिलाइएगा तो इस मुश्किल स्थिति से, इस मुश्किल समय से बच जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए मुश्किल ये है कि कन्या राशि वाले अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के चक्करों में पड़े हुए हैं और इस चक्कर में आपकी सेहत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी राशि कन्या है, आंखों को लेकर सतर्क हो जाएं। आंखों में जरा भी दिक्कत होती है, लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट होने के या फ्रैक्चर होने के योग बहुत हैं। करियर के मामले में और धन के मामले में लापरवाही मत करें और मैं ये कहूंगा कि करियर में कोई जोखिम भी मत लीजिएगा, कोई रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आपने बिना सोचे विचारे इस समय नौकरी बदली तो आप आगे चल करके मुश्किल में पड़ेंगे और अगर धन पर कंट्रोल नहीं किया तो वो भी एक बड़ी मुश्किल का कारण हो सकता है। तो करियर और धन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। परिवार की जिम्मेदारियां देखिए इस समय बढ़ेंगी, परिवार में शुभ काम तो होंगे, लोग आएंगे भी बहुत, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी तो पारिवारिक समस्याओं से परेशानी हो सकती है। मुख्यतः कन्या वाले अपने पैसे के मामलों को और अपने करियर को लेके बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि एकदम से झटका लग सकता है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके परेशान मत हों, धीरे धीरे उसको निपटाने का प्रयास करें तो काफी बेहतर होगा। नियमित रूप से प्रातःकाल अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा लें तो आप मुश्किल से बचेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों का समय बेहतर होता जा रहा है और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही हैं, जिंदगी रास्ते पे आ रही है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको हर मामले में अगले एक महीने में और भी लाभ होगा। करियर में कोई बड़ा लाभकारी बदलाव इस समय तुला वालों के हो सकता है। तुला वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है करियर में और ये बदलाव फायदेमंद होगा, पैसे का और पोजीशन का फायदा होगा। तो अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं इस समय पूरी कोशिश करिए, आपके लिए अच्छा है। आपकी तमाम पुरानी समस्याएं इस समय हल होती चली जाएंगी। खास तौर से जो समस्याएं करियर में थी, जो समस्याएं परिवार में थी, वो समस्याएं एक एक करके सॉल्व होंगी। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। पैसा निरंतर आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। समय तुला वालों का बहुत अच्छा है, इस समय का पूरा फायदा उठाइए, आपके लिए बेहतर होगा। जब मौका मिले किसी भी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करें, और अगर भगवान राम का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर हो, वहां जाकर प्रार्थना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, बहुत सारा तनाव झेला है आपने पिछले दिनों में। परिवार में भी टेंशन बहुत थी और करियर में भी टेंशन बहुत थी। अब आपके तनाव के समाप्त होने का वक्त आ गया है, तो वृश्चिक राशि वाले देखेंगे कि अगले एक महीने में इनके करियर में रुके हुए तमाम काम बड़े आराम से पूरे होते जाएंगे। करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे, निरंतर पैसा आएगा, धन का लाभ होगा, और आप अपने कर्ज चुकाते जाएंगे। पैसों के मामले में, कर्ज के मामले में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस समय आप खरीद पाएंगे, और इस समय नई प्रॉपर्टी खरीद करके आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये संभावना बन रही है। तो वृश्चिक वाले अपने करियर की सारी समस्याओं को निपटाएं। जो बड़ा निर्णय लेना है इस समय लेंगे तो ये बिल्कुल सफल रहेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा तो आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में वो नहीं मिल रहा है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ी कठिनाइयां भी दिख रही हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आपके पति या पत्नी एकदम से बीमार पड़ सकते हैं। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, और अगर ज्यादा झगड़ा लड़ाई करेंगे तो नौकरी जाएगी आपकी। इसलिए इस समय किसी तरह के विवाद अपने ऑफिस में मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे, शांत रहिए। और लंबी यात्राओं से बचाव करिए, क्योंकि आपके लिए दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, और लंबी यात्रा में दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस लंबी यात्रा पर जिस काम के लिए जाएं वो काम आपका पूरा ही ना हो, समय भी लगे, पैसा भी लगे, और फायदा भी ना हो। तो धनु वाले अभी एक सवा महीने तक वेट करें, अभी आपका मुश्किल समय है। और परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का प्रेशर, चोट चपेट, इन सब चीजों को लेकर भी सतर्क रहें। नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य देव से प्रार्थना करिएगा कृपा करने की, तो आपकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है वृषभ, कन्या और मकर के लिए। मकर राशि के लोग अपनी सेहत को लेके बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं और चोट चपेट लग सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपकी दशा भी फेवरेबल नहीं है तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन गंभीर परिणाम दे सकता है आपको। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, करियर में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा वरना इस समय आपका निर्णय गलत होगा, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। अपने परिवार के लोगों का, माता पिता, पति पत्नी, संतान, इनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और स्वयं आपको दुर्घटनाओं से बचना है। मकर वालों के लिए समय कठिन हो सकता है, हर काम करने के पहले बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, और अगर संभव हो तो पहले जल चढ़ाइएगा फिर सूर्य मंत्र का जप करिएगा। आप बहुत हद तक मुश्किलों से बचेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो स्वास्थ्य का मामला और मानसिक मामला परेशान करेगा, साइकोलॉजिकली आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं, प्रेम का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, ये टूट सकता है, इसमें गलत फहमियां और विवाद की नौबत आ सकती है, तो जहां तक संभव हो रिश्तों में शांति और समझदारी बनाए रखिएगा। करियर या पैसे से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा वरना आपका निर्णय गलत होगा। कुंभ वाले इस समय करियर में लापरवाही ना करें वरना करियर में दिक्कत आ जाएगी, और अपने रिश्तों को संभालें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें तो चीजें थोड़ी संभल सकती हैं। नियमित रूप से गुड़ और गेहूं का दान करें या गाय को गेहूं के आटे की रोटी में गुड़ रखकर नियमित रूप से खिलाएं तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, देखिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है और मुश्किल समय में इनको राहत देगा। स्वास्थ्य आपका अब से लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपका तनाव कम होगा। करियर में अगर कोई परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं तो करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है जो कुल मिला के फायदेमंद रहेगा। जो आपके शत्रु और आपके विरोधी हैं, आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। तो मीन वाले अगले एक महीने तक समय का पूरा इस्तेमाल करें। करियर के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ना हो, थोड़ा रिस्क लेना हो, थोड़ी मेहनत करनी हो, बिल्कुल करिएगा, और सेहत को लेके परेशान मत होइए क्योंकि अब आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आजादी के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

और चलिए अब बात करते हैं हरियाली तीज की। सावन के महीने में मनाया जाने वाला ये पर्व इसकी रौनक नजर आ रही है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। महिलाएं आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं।

सावन का महीना बारिश की रिमझिम फुहार, लोक गीतों की मिठास और 16 श्रृंगार कर झूला झूलती महिलाएं, ये तमाम रंग हैं उस त्योहार के जिसका सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार किया करती हैं। जयपुर में तो सज धज कर आई ये महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर प्री सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं इस त्योहार के लिए खास तौर पर राजस्थान की पारंपरिक पोशाक लहरिया पहनकर आई हैं। किसी ने पारंपरिक मोठड़ा और गुलाबी लहरिया पहना तो कोई नए रंगों और डिजाइन के लहरिये में नजर आया। राजस्थानी पोशाक और पारंपरिक आभूषणों ने तीज के इस त्योहार में एक अलग ही रंग घोल दिया है। सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं। सावन के

0: झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहां महिलाएं आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएँ मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पर है, अलग अलग एक्टिविटीज़ साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिए में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नजर आ रही हैं।
1: इस पूरे सेलिब्रेशन में तीज का झूला खास आकर्षण बना रहा। महिलाएं बारी बारी से झूला झूलती दिखी और इसके साथ ही तस्वीरें भी क्लिक करवाई। झूले के आसपास पूरे समय उत्साह और चहल पहल बनी रही। हरियाली तीज राजस्थान में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का उत्सव है जिसे सुहागिन महिलाएं हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाती आई हैं।
2: पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मुझे काफ़ी शौक है। और लहरिया के लिए मैं वैसे ही बहुत क्रेजी हूँ, सो मैंने पूरा गेटअप इसी उस पर लिया है थीम पे।
3: तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में। सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज़ नो लव, हस्बैंड के लिए लव एक ही दिखाता है। ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव। एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं।
1: हरियाली तीज की बात हो और घेवर का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हर साल की तरह इस साल भी बाजार में एक से बढ़कर एक स्वाद और फ्लेवर वाले घेवर मिल रहे हैं। जयपुर में इस बार करीब 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर खास आकर्षण बना हुआ है। आम घेवर जहां मैदा से तैयार होता है तो वहीं इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है। इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट की परत है। सबसे खास है इसका गोल्ड टच, ऊपर सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल हुआ है। इसी शाही और प्रीमियम अंदाज की वजह से इसकी कीमत 21,000 रुपए है।
4: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपए पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
5: जी।
4: साथ ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोर्स्ड हैं जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डाला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड वो भी डाली है और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है अगेन विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे रबड़ी इसमें नहीं यूज हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है।
1: बदलते समय के साथ घेवर कई साइज और स्वाद में मौजूद है। जयपुर में घेवर 3 साइज में मिल रहा है, रेगुलर 3 इंच का मिनी और 1.4 इंच का छोटा घेवर। अलग अलग पैक में पसंद के फ्लेवर चुनने का विकल्प भी आपको मिलेगा। मसलन 16 पीस के पैक में अलग अलग फ्लेवर शामिल किए जा सकते हैं जबकि 4 पीस के पैक में अपनी पसंद के 4 फ्लेवर आप चुन सकते हैं। यानी त्योहार पर घर ले जाने से लेकर गिफ्टिंग तक घेवर का अंदाज भी अब काफी मॉडर्न हो गया है और अगर मीठे घेवर से मन भर गया हो तो इसका चटपटा अंदाज घेवर चाट भी लोगों के लिए मौजूद है।
0: घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नजर आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं, अलग अलग शेप्स में अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं। कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है, पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को जिसको कहा जाता है जेन जी उनको खास पसंद आते
4: हैं। आजकल लोग मिठाई खाना चाहते हैं पर वैरायटी में खाना चाहते हैं तो हमने उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आप हर फ्लेवर चख सकते हैं छोटे छोटे साइजेज में। इसको हमने नाम दिया है कॉइन घेवर।
0: कौन से फ्लेवर्स आप बताइए इसमें मौजूद है?
4: इसमें 16 तरह के फ्लेवर हैं, पान हो गया, ये रबड़ी हो गया, रोज गुलकंद, न्यूटेला, ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, लोटस बिस्कॉफ, ये रेगुलर कैसर चाशनी पिस्ता, ये मैंगो मैनिया, तिरामासु, कुनाफा घेवर, लेमन चीज़ केक, ब्लूबेरी, और ये हमारा हो गया लीची क्रीम, और साथ ही में ये बेल्जियन चॉकलेट। एक जनरली लोग आजकल चाहते हैं, अगर हम मीठा कम खाना चाहते हैं और मीठे इतना सारा जब मीठा खा लिया है त्यौहार पे, उसके साथ उनको कुछ नमकीन टेस्ट चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज़ डिश बनाई है जिसको हमने घेवर चाट बनाया है। बेस इसमें घेवर का ही है जो जनरली हम देखते हैं मैदा और चीनी और घी से बना हुआ, और ऊपर जो इसमें ग्लेजिंग है ये अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, छोले हैं इसमें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में मूली, चुकंदर के लच्छे डले हुए हैं।
1: बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में हरियाली तीज को भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: और अब बात करते हैं ऐसे व्यापार महोत्सव की, जो भारतीय कपड़ों के कारोबार को लोकल मार्केट से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचाने के लिए मंच दे रहा है। धागों को आपस में पिरोकर कपड़ा बनाने के बाद सुई और धागे की मदद से खूबसूरत और जटिल डिजाइन वाले भारतीय परिधानों की ये प्रदर्शनी पुराने फैशन ट्रेंड को तोड़ रही है। बुनाई, कढ़ाई, रंगाई और छपाई जैसे वस्त्र शिल्प से जुड़े भारतीय कारीगरों के नए अंदाज भी आप देखिए।

0: दिल्ली का भारत मंडपम आजकल देश की वस्त्र कला, ओढ़ने पहनने की संस्कृति और उसे समय के साथ नए आयाम देने वाली प्रतिभाओं का गवाह बन रहा है। बुनाई, कढ़ाई, रंगाई और छपाई जैसे वस्त्र शिल्प से जुड़ी विरासत और परंपराओं की झांकी लगी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े देश भर के डिजाइनर विलुप्त होती कलाओं और वस्त्र बुनाई की समृद्ध कला को संजोए रखने वाले कारीगरों का सबसे बड़ा मंच सजा है। धागों को आपस में पिरोकर कपड़ा बनाने, फिर सुई और धागे की मदद से खूबसूरत और जटिल डिजाइन बनाने की कला की प्रदर्शनी लगी है। आमतौर पर साधारण सूती या शिफॉन दुपट्टे की कीमत 50 रुपए से 200 रुपए के बीच होती है। डिजाइनर सिल्क या भारी कढ़ाई वाले दुपट्टे हो तो ज्यादा से ज्यादा कीमत 500 से 2500 के बीच चली जाती है। हालांकि भारतीय व्यापार महोत्सव में एक स्टॉल पर 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का दुपट्टा मिल रहा है। इस खास दुपट्टे में चांदी के कई सिक्के लगे हैं। एक का वजन 20 ग्राम के करीब है, जिसकी वजह से दुपट्टे का रेट भी रोज ऊपर नीचे होता रहता है।
1: बेहद अनोखी और शानदार चीजें भी आपको यहाँ मिलेंगी। चांदनी चौक अमूमन आप जाते हैं शादियों की शॉपिंग के लिए और सोचते हैं कि कम पैसे में बहुत अच्छा माल लेकर आएंगे, लेकिन चांदनी चौक के एक व्यापारी हैं जो कि इस मिथ को थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से। ये भाई साहब सिर्फ दुपट्टे में डील करते हैं और इनके पास 2.25 लाख का दुपट्टा है।
2: हाँ जी, हमारे पास 2500 से लेके 2.25 लाख तक के दुपट्टों की पूरी रेंज है। और मैं आपको अपना 2.25 लाख वाला दुपट्टा दिखाता हूँ कि वो क्या दुपट्टा है।
1: लेकर ऐसे आए हैं जैसे इसमें कोई नेकलेस रखा हो, बहुत महंगा सा।
2: ये हमारा दुपट्टा है, ये चीफ, इसमें 36 क्वाइन लगे हुए हैं 20-20 ग्राम के, 720 ग्राम चांदी लग रही है जी। ये जो ओढ़ना है दुपट्टा है ये अप्रोक्स 45 to 60 days में रेडी होता है। अच्छा। और ये सब हमारे पास इन स्टॉक रेडी होते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ ये क्या चीज है।
1: ये मेरे ख्याल से पूरा हाथ से ही बनता
2: है, पूरा जरदोजी का वर्क है, पूरा ये हाथ से बनता है। ये देखिए
1: 2.25 लाख का दुपट्टा है, बड़े प्यार से खोलिएगा।
2: हाँ जी, ये देखिए आप, ये 2.25 लाख का है। आप थोड़ी पीछे जाके इनको वो खोलिए। आप इसमें एक एक जो काम देखेंगे ना, जैसे हमारा मोदी जी कह रहे हैं तो लोग अपने भारतीय संस्कृति को हम दिखा रहे हैं कि इसमें सारा जरदोजी का काम करवा रहे हैं।
1: वोकल फॉर लोकल,
2: वोकल फॉर लोकल जी।
0: सूरत से आए सिद्धार्थ को तरह तरह के ब्लाउज बनाने में महारत हासिल है। 5000 से ज्यादा डिजाइन के साथ उनके पास 50,000 रुपए तक के ब्लाउज मौजूद हैं। 60 से ज्यादा देशों में उनके डिजाइन पसंद किए जाते हैं।
1: कुछ आइडियाज बहुत अलग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। उनके बारे में जब आप सोचते हैं, देखते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ क्रिएटिव माइंड्स हैं जो उस काम को कर रहे हैं और बेहद पैशन के साथ कर रहे हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं और सूरत से आए हैं, और सिद्धार्थ जी सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज बनाते हैं, यही उनकी USP है। आप दुनिया की कोई भी डिज़ाइन सोचिए, वो सब कुछ उनके पास मौजूद है। लगभग 5000 डिजाइंस में ये डील करते हैं।
3: आप देख सकते हो एक मॉडल ने बहुत यूनिक ब्लाउज वेयर किया हुआ है। देखिए मैम ने जो एक डेनिम के साथ वेयर किया हुआ है वो भी बहुत बड़ा कट दाना में यूनिक ब्लाउज बना हुआ है। सबसे हॉट जो मतलब सबसे यूनिक ब्लाउज है, इसमें हमने ये आउटफिट बनाने में जो जरदोसी में बना हुआ है, ये आउटफिट बनाने में हम लोग को 20 दिन लगा है, 20 दिन लगा है, क्योंकि एक एक डोरी जो उसकी रहती है ना, डोरी बहुत हार्ड से हमको बनानी पड़ती है।
0: एक बार फिर बच्चों के लिए प्लास्टिक के बजाय लकड़ी के खिलौने खरीदने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक के खिलौनों में हानिकारक केमिकल की आशंका ज्यादा होती है, जबकि अच्छी लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से बने खिलौने बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ऐसे खिलौनों की भी यहाँ नुमाइश है। 15 अगस्त तक चलने वाला भारतीय व्यापार महोत्सव देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे कारोबारियों, MSME, स्टार्टअप, निर्माता, निर्यातक और महिला उद्यमियों को एक मंच मुहैया करवा रहा है, ताकि भारतीय कपड़ों का कारोबार लोकल मार्केट से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
5: फुकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्ही बच्चियों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपाकर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है। बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठा कर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आजादी के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही मौजूद, ध्वजारोहण में की पीएम मोदी की मदद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र पर अर्पित किया। विदेशों में भी मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न, मेलबर्न में लेजेंडरी अभिनेत्री रेखा ने किया ध्वजारोहण, मौके पर कई भारतीय अभिनेता मौजूद रहे। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: आज पूरा देश मना रहा है आजादी का जश्न, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 13वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी अनोखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान मौजूद रही, ध्वजारोहण में पीएम मोदी की मदद की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5000 विशेष मेहमान शामिल हुए, 100 NCC और 100 माई भारत वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। लाल किले पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा परिसर। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। लाल रंग की बंदेज पगड़ी बांधे लाल किले पहुंचे पीएम मोदी, लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। आजादी के जश्न में दी गई 21 तोपों की सलामी, भारत माता की जय से गूंज उठा इलाका। लाल किले की प्राचीर से उड़ाए गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे तो वहीं देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक हैं, आसमान में ऊंचाई छूते ये गुब्बारे। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से भी मिले पीएम मोदी, पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित नजर आए बच्चे। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, दोहराया 2047 विकसित भारत का लक्ष्य। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के गान पर भी बोले पीएम, देश के लिए बेहद गर्व का पल। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को AI से जोड़ने के लिए बड़ी योजना की तैयारी, सरकार 1 करोड़ युवाओं को देगी AI की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान, बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया, बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, बोले 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाना गर्व का पल है। लखनऊ में विधान भवन में हुआ भव्य स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, सीएम योगी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी आवाज पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को आजादी के जश्न की मुबारकबाद दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो, ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्नकंद, यह है सूर्नकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा पहली बार, लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। बद्रीनाथ में श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य पुजारी रावल जी ने किया ध्वजारोहण। भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। विदेशों में भी मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न। मेलबर्न में लेजेंडरी अभिनेत्री रेखा ने किया ध्वजारोहण। मौके पर कई भारतीय अभिनेता मौजूद रहे। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती के सुख समृद्धि की कामना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
9: नमस्कार, स्वागत है आप सबका सास बहु और बेटा के इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में। आज ये जो हमारा तिरंगा है ना, सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा है, बल्कि ये तो हमारे दिलों में लहरा रहा है। 15 अगस्त का ये दिन हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि आज हमारा देश आजाद हुआ था, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि इसके पीछे कितने अनगिनत बलिदान हुए थे। हमारा ये प्यारा सा तिरंगा जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि इसका केसरी रंग त्याग का प्रतीक है, इसका ये जो श्वेत रंग है ये शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो उन्नति का प्रतीक है, और इसमें ये जो अशोक चक्र है वो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, आज हम आजाद भारत में खुल के बोल सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी ने हमारे लिए, जी हाँ, इस आजादी के लिए लड़ाई की थी। तो आज का हमारा ये एपिसोड है हमारे देश भारत, हमारे तिरंगे और हमारी आजादी के नाम। चलिए शुरू करते हैं सास बहू और बेटिया का ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हेडलाइंस के साथ।
10: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया में आज देखिए तेजस्वी को होगा रूहानी पर शक। क्या रूहानी है गौतम की कातिल? परेशान होगी स्वाति, क्या वृंदा बनेगी सहारा?
11: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं।
10: बदलेगा प्रथम की राध्या का अंदाज, आएगा ग्लैमरस टच।
11: ये तेरी वो हवाएं हैं।
12: पापा मेरी जान हरदम रखना।
10: जूही करेगी अपनी नई शुरुआत, लेगी अपने पापा का आशीर्वाद। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रंगबाजी दिलों की पुष्पा यानी कि शिवानी गुसाई जाएंगी रायन इंटरनेशनल स्कूल, करेंगी वृक्षारोपण। और साथ ही सास बहू और बेटियां संग टीवी के कई सितारे मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
13: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
14: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
9: प्यार में किसी को पाना जरूरी नहीं है, देखिए कभी कभी उसकी आजादी से प्यार करना ना ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि प्यार का मतलब अधिकार नहीं है, प्यार का मतलब तो आजादी है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। वैसे रूहानी, हम तो चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए अपनी जिंदगी की हर परेशानी से आजादी, और आपके चेहरे पर हो बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट। लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास।
15: अरे मेरा भाई, तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपने फोन का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था। वो मुझे अपनी इकलौती।
10: रूहानी और तेजस्वी की बहसबाजी।
15: क्या किया? धोखा दिया, बर्बाद कर दिया, मुझे सब कुछ लिया, मेरा परिवार चाहिए, मुझे अनाज लगता है ना इसे सदमा लगा। आप इसे कमरे में लेकर जाइए, मैं इसे चेक करती हूँ। अगर तुम दोनों भाई बहन
10: तेजू ने रखी शर्त,
15: रिश्ता नाता तोड़ देते हो, कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हो, तो फिर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार।
10: तेजू की गुड न्यूज में आई सैड न्यूज,
15: तो तुम्हें भी अपना भाई खोना होगा।
10: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में रूहानी कर रही है तीज की तैयारियां, तभी वहां पर पहुंच जाती है तेजू अपने भाई की अस्थियां लेकर। जी हां, गौतम मर चुका है और ऐसे में तेजू काफी उदास है और गुस्से में भी, क्योंकि रूहानी की वजह से ही गौतम की जान गई है ऐसा तेजू को लगता है। इसीलिए तो देखिए कैसे त्योहार में ट्विस्ट लगाने के लिए वो पहुंच गई है रूहानी को खरी खोटी सुनाने।
16: अच्छा हुआ तुम आ गए, अब बताओ ये कैसे?
15: मेरा भाई तुम्हारी प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपने फोन का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था। वो मुझे अपनी इकलौती सगी बहन को तक भूल गए थे, और तुमने क्या किया उनके साथ? क्या किया? मुझे धोखा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया, अनाथ।
10: भाई तेजू रूहानी को सुना ही रही होती है कि संदीप आ जाता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अचानक तेजू बेहोश हो जाती है और फिर पता चलता है कि तेजस्वी प्रेग्नेंट है।

0: सैड न्यूज, गौतम भैया की अस्थियां हैं वो लेके आती हूँ मैं. एंड जब जैसे ही तेजस्वी आती है रूहानी को देखती है कि वो स्पीच के लिए प्रिपरेशन कर रही है एंड रंग बिरंगी साड़ियाँ ले रही है तो उसे बहुत गुस्सा आता है. वो उसे कन्फ्रंट करती है तुम्हारी वजह से भैया की जान गई है और तुम यहाँ पे बहुत खुशियाँ मना रही. तो तेजस्वी को बहुत जेलसी होती है, बहुत दुख होता है.
1: ऐसे में तेजस्वी किसी की सुन नहीं रही है, उसे ये बच्चा नहीं चाहिए. ऐसे में रूहानी उसे समझा रही है और बड़े ही चालाकी से तेजस्वी रूहानी की बात तो मान जाती है, लेकिन साथ ही रख देती है शर्त कि रूहानी अब अपने भाई संदीप से कभी मिल नहीं सकती और अगर वो मिली तो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा. ये सुनकर रूहानी और संदीप के तो होश ही उड़ जाते हैं.
2: अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, पर अब है, ये बच्चा है. संदीप भैया है, मम्मी है, पापा है, निक्की है और मैं भी हूँ.
3: वाह रूहानी वाह, क्या चाल चलती हो तुम. पहले अपने भाई का घर बसाने के लिए मुझे उसकी तरफ धकेल दिया और अब इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तुम ये कहानी बना रही हो.
2: नहीं तेजस्वी, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ.
3: ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी. इनफैक्ट मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त. अगर तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से सारा रिश्ता नाता तोड़ देते, कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, तो फिर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हूं. मैंने अपना भाई खोया है ना, यही है मेरी शर्त.
4: तुम बदला ले रही हो तेजस्वी. हाँ? अरे इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी जिद नहीं टूटी. एक बात अपने दिमाग में डालो, मैं अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं.
3: व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी खबर? जब हमारा रिश्ता इतने आगे बढ़ा ही नहीं है तो तुम्हारे लिए खबर अच्छी खबर कैसे हो सकती है?
1: ऐसे में बच्चे की खातिर रूहानी तेजस्वी की इस शर्त को मान जाती है और अपने भाई से नाता तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है. ऐसे में देखने को मिला भाई बहन का ये इमोशनल मोमेंट, जहां देखिए कैसे अभी से ही रूहानी अपने भाई संदीप को राखी बांध रही है क्योंकि अब वो उससे मिल जो नहीं पाएगी. ऐसे में वो अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर संदीप को राखी बांधती है.
4: निक्की, निक्की को अपनी बड़ी बहन से दूर कैसे कर दूं? वो भी अपने बच्चे के लिए. नहीं यार रूहानी, मुझसे नहीं होगा. मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार
2: हूँ. आपको तैयार होना पड़ेगा अपने भाई के साथ रहने के लिए. आपके मासूम बच्चे की चक्कर में नहीं डाल सकती. आप समझ लें कि आपके पैर सुल्तानपुर में है ही नहीं.
4: पागल हो गई क्या तू? हाँ, क्यों उसकी बात सुन रही? अरे भाई हो गए, अपनी बहन का साथ कैसे छोड़? हाँ, उसके सुख उसके दुख से कैसे मुंह मोड़? नहीं रूहानी, पापा मम्मी से हक कैसे छीन लूं उनकी बेटी?
2: ऐसा होगा भैया, ऐसा ही होगा. बच्चे को बचाने के लिए तब से कभी नहीं मिलूंगी.
4: क्या?
2: कभी अपने घर की दहलीज पे पैर भी नहीं रखूंगी. कि मेरा वादा है आपसे.

0: selfish, whatever. I really don't care. पर जिस दिन रूहानी अपने भाई से मिलेगी ना, वो दिन इस बच्चे का आखिरी दिन होगा।
1: And the thing is, बेहोश हो जाती है तेजस्वी, एंड जैसे ही वैसा होता है तो उसके बाद रूहानी जब चेक करती है पता चलता है तेजस्वी इज प्रेग्नेंट, एंड इट वॉज अ शॉक फॉर हर ऑल्सो, बिकॉज उसे पता नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, बिकॉज एक्चुअली संदीप और तेजस्वी की इतनी क्लोजनेस थी ही नहीं। सो संदीप कुछ रेफरेंसेस देते हैं कि जब वो ड्रंक थी तब ऐसा होता है एंड ऑल दैट, एंड फाइनली इतनी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, आउट ऑफ नो वेयर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा इतने बड़े ट्रेजेडी से डील कर रही है एंड अचानक से ये पता चलना दैट शी इज ऑल्सो प्रेगनेंट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा शॉकिंग है। तो तेजस्वी एक शर्त रखती है कि आज से रूहानी भी अपने भाई से नहीं मिलेगी, बिकॉज वो तेजस्वी अपना भाई खो चुकी है, तो रूहानी भी अपने भाई के साथ नहीं रहेगी अब से, अब वो दोनों नहीं मिलेंगे। सो अगर वो चाहती है कि वो ये बच्चा इस दुनिया में आए तो।
2: तेजस्वी ने अपना भाई गौतम खोया है, ऐसे में उसने चाल चलकर रूहानी को भी उसके भाई संदीप से अलग कर दिया। तो भाई अब देखना होगा कि रिश्तों की ये दरार कहानी में और कौन से नए ट्विस्ट लेकर आती है, क्योंकि बवाल होना तो अभी बाकी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज हम अपने फैसले ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो आज जब आप तिरंगा फहराएं तो याद करें उन सभी को जिन्होंने दिए हैं बलिदान कि आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का ये दिवस, और उसके साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपकी फेवरेट कहानी, जिसमें फिर से आया है एक नया ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है आपके लिए अनलिमिटेड ड्रामा। कैसे? ऐसे।
2: और स्वाति की परेशानी।

0: खुशियों में बदली परेशानी। मान गई स्वाति की माँ। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में स्वाति परेशान है और देखिए कैसे परेशान होकर वो घर से निकल गई है बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे में वृंदा उसका पीछा कर रही है और उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वाति किसी की नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे में बेचारे वृंदा स्वाति को रोक नहीं पाती और हो जाती है काफी उदास। ऐसे में स्वाति घर भी आ जाती है और वृंदा हो गई है परेशान कि कहीं स्वाति को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन स्वाति वृंदा को बताती है कि सब कुछ ठीक है। तभी होती है स्वाति की मम्मी की एंट्री, जो स्वाति को पहले तो गुस्सा दिखाने लगती है।
1: दीदी ठीक हो ना?
0: लेकिन फिर बाद में स्वाति की मम्मी का तो रूप ही बदल गया है। देखिए कैसे वो स्वाति की सगाई की तैयारियों की बात करती है, वृंदा से भी वो थैंक यू कहती है और सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर देती है, जिस वजह से वृंदा और स्वाति काफी खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वृंदा तो स्वाति की मम्मी के पैर भी छूती है।
1: तुम्हारी स्वाति दीदी की परेशानी दूर करेंगे। थैंक यू।

और फिर आती है हैप्पी डांस की बारी, जहां पर स्वाति, वृंदा और स्वाति के पापा देखिए कैसे झूम झूम कर नाच रहे हैं और मना रहे हैं खुशियां, क्योंकि मम्मी के मानने के बाद सब कुछ ठीक जो हो गया है। तो अब स्वाति और संजय की सगाई की तैयारियां होंगी, लेकिन क्या इसी के साथ कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? क्या ये स्वाति की मम्मी की कोई नई चाल है? भाई यही देखना है कहानी में आने वाला नया मोड़ क्या होता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: आजाद भारत में हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि उसके साथ साथ हम जिम्मेदार भी हों। जिस तरह भारत के संविधान का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, और हाँ, बस आज़ादी के इस रास्ते पर यूं ही चलते रहें और अपने देश को बेहतर बनाएं। आज तो हम मना रहे हैं आज़ादी का ये दिवस और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको इस अगली कहानी की ओर, जिसमें फिर से आया है एक नया मोड़, यानी आपके लिए मनोरंजन। गेट सेट गो।
1: सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे।
2: 15 अगस्त की कहानी, सचिन की जुबानी।
3: इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे और फिर यहाँ आए थे कुछ मेहमान जो मीठा मीठा बोलकर करने आए थे यहाँ कुछ काम।
2: फिर दोहराया गया अंग्रेजों का काल।

0: अभी तक मुझे घर के किराए के पैसे क्यों नहीं मिले? परेश, इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ मत बोलो।
1: इंडिपेंडेंस डे पर रेणुका ने मचाया बवाल। स्टॉपर्स के सीरियल उड़ने की आशा में आज सचिन के घर के बाहर सेलिब्रेट हो रहा है 15 अगस्त। ऐसे में देखिए कैसे सभी रंग गए हैं स्वतंत्रता के रंग में और फहरा रहे हैं झंडा और दे रहे हैं अपनी सलामी। ये जो देश
2: है तेरा। मेरे हिसाब से मैं तो स्कूल के बाद आज बना रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे। इसके उससे पहले तो मैंने कभी ऐसे सेलिब्रेट किया नहीं है। स्कूल में हम लोग पतंग उड़ाते थे, हम लोग बहुत मैं दिल्ली से हूँ तो जब हम छोटे थे तो 15 अगस्त को वहाँ बहुत पतंग उड़ती है, काइट फ्लाइंग होती है, तो वी वर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग छत पे जाके पतंग उड़ाते थे। फिर जब बॉम्बे आए तो पता लगा यहाँ तो छत होती नहीं है, तो हमने पतंग उड़ाना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त को पतंग नहीं उड़ती, यहाँ पर आई थिंक मकर संक्रांति को उड़ती है। तो उसके बाद 15 अगस्त को यूजुअली जहाँ पर हम आजकल जहाँ भी रहते हैं बॉम्बे में, वहाँ पर सुबह सुबह कुछ ना कोई फ्लैग होस्टिंग होती है और हम हमेशा चले जाते हैं, तो ऐसे ही बनाते थे। और अब यहाँ पर सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, स्पेशली उड़ने की आशा में आई थिंक पहली बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज न्यू एनर्जी, बच्चे वो साथ कर रहे हैं तो अच्छा इंटरेस्टिंग है।
3: एक्चुअली जो मुझे बोला था सब बोल दिया इसने।
2: तुम पतंग कहाँ उड़ाती होगी?
3: पतंग की नहीं बात कर रही हूँ, कि मैं बोल रही थी कि हम पहली बार एक्चुअली सेट पे इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और ऑब्वियसली बच्चे बच्चे हैं तो सब अलग ही माहौल है सबका और सब एंजॉय कर रहे हैं।
1: इतना ही नहीं, आज के दिन तो सचिन और उसके पूरे परिवार ने स्पेशल स्किट भी तैयार की है जहां पर सचिन अंग्रेजों की कहानी दोहरा रहे हैं, वो भी ढपली बजाकर, और तेजस बन गए हैं अंग्रेज, साथ ही रोशनी और रिया दोनों ही अंग्रेज की साथियां बन गई हैं और अक्षय बन गया है राजा जिससे धोखाधड़ी की थी अंग्रेजों ने।
4: भारत, इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे और फिर यहाँ आए थे कुछ मेहमान जो मीठा मीठा बोलकर करने आए थे यहाँ कुछ काम।

0: व्यापार के नाम पे घुसे थे जो, धीरे धीरे उन्होंने बना ली बहुमत। सत्ता के लालची और अंग्रेजों ने शुरू की इस देश पर हुकूमत।
1: सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आई फील कि बस एक ही चीज़ है कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग्स कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी गलती से या ऐसी नीचे गिर जाते हैं, कुछ होते हैं, तो आई जस्ट विश एंड होप कि वो उसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करे कोई भी, और ऐसे कचरे में ना डाले, उसे अपने ही पोजिशन में रखे।
2: मेरा कहना है कि बस खुश रहो, सबको खुश रखो एंड ऑलवेज बी काइंड।
1: एक्चुअली जैसे हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में जैसे मनाया जाता है, सुबह 8-9 बजे आते हैं सब नीचे, सब वैसे फ्लैग होस्टिंग के लिए वेट करते हैं, उसके बाद सब खाने के लिए वेट कर रहे हैं, जो हम इस अभी शो में कर रहे हैं वही सब एग्जैक्टली होता है। और डिफरेंट कुछ होता था तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे टाइप ऑफ कुछ तो ऐसे होता था, और उसमें हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, कैप्टन ऐसे सब सिलेक्ट किए जाते थे, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी। हाँ, एक्चुअली हमारे स्कूल में था स्काउट एंड गाइड, एक्चुअली गर्ल्स स्कूल थी, तो हम गाइड्स थे सारे, और आरएसपी, एमसीसी, ये सब जो होते थे तो सारे ऐसे परेड करते थे, तो या इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस।
2: नहीं, हमारी छुट्टी होती थी 15 अगस्त को, एक दिन पहले कुछ सेलिब्रेशन होता था, बट हम लोग कभी कुछ भी अटेंड नहीं करते थे,
1: सैड,
2: और हम अलग से चिल करते थे।
3: भाई, इस स्पेशल स्किट के जरिए सभी लोगों को आजादी की कहानी तो सुनाई जाएगी ही, लेकिन इस कहानी के दौरान आएगा ट्विस्ट, क्योंकि सभी को लगेगा जोरदार झटका, और ये झटका देगी रेणुका, क्योंकि इन दिनों उसे हो गई है बीमारी, वो भी भूलने की। तभी तो देखिए कैसे वो पहुंच गई है पांडे से किराया लेने के लिए। हालांकि इस बात पर बहस छिड़ जाती है और सभी रेणुका का ये रूप देख कर हैरान है।
4: रुक जाइए पांडे जी, अभी तक मुझे घर के किराए के पैसे क्यों नहीं मिले?
5: मैंने तो अपना किराया दे दिया है, शायद आपने देखा नहीं होगा।
6: उन्होंने किराया दिया है, मैं था वहाँ।
4: परेश, इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ मत बोलो।
6: अरे ये रसीद है ना, ये सूबेदार साहब ने रसीद दिखाई, इसमें है ना, ये इसी महीने के 3 तारीख को तूने भाड़ा लिया है, और ये तेरा साइन है, तूने एक साइन मारा है।
4: तू क्यों बीच में बोल रहा है?
7: बाबा की भाई को ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है।
3: खैर, अभी तो छोटा सा झटका लगा है, लेकिन जल्द ही सभी घर वालों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रेणुका अब धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है। देखना होगा क्या रेणुका को अपना परिवार याद रहेगा, या फिर रेणुका के सामने उसे याद दिलाने के लिए सभी लोग फिर से एक नई स्किट तैयार करेंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: तिरंगे के ये रंग जब हमारे कपड़ों में, हमारे अंदाज में नजर आते हैं ना, तो पूरा देश बस देशभक्ति के माहौल में रंग जाता है। और यहाँ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के अनेक रंग। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट, जहाँ हम दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट सितारे अप क्लोज एंड पर्सनल। ये तो है स्पॉटेड, सो गेट सेट गो।
3: एक साथ जमा हुए सभी ट्वीटर्स, रिया चक्रवर्ती का स्पेशल सेलिब्रेशन, में दिखा सितारों का दर्शन, जो फील करे वो जाके दो रन बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। Amazon प्राइम पर ट्रेटर 2 प्रीमियर हो चुका है, कई सारे एपिसोड्स भी आ चुके हैं, और दर्शक ट्रेटर 2 को पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में इस कामयाबी को रिया चक्रवर्ती सेलिब्रेट कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने रखी है ये खास पार्टी, जहां पर सभी ट्रेटर 2 के प्रतियोगी पहुंच गए हैं साज श्रृंगार करके। एक तरफ हसीनाएं अपना जलवा दिखा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंडे भी अपना स्वैग दिखा रहे हैं। बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की, तो उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनी है, सिंपल सोबर अवतार में है।

लेकिन इस पार्टी में जगमगाती झिलमिलाती नजर आ रही है मलिका शेरावत, जिन्होंने ग्रीन कलर की फ्लेयर्ड ड्रेस पहनी है और देखिए बार बार गोल गोल घूम रही है क्योंकि इन्हें अपनी ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है।

0: इन्हीं के साथ ग्रीन कलर के जगमगाते ड्रेस में नजर आई हैं शालिनी पसी भी, जिन्होंने ग्रीन कलर की सीक्वेंस ड्रेस पहनी है और ये रंग इन पर खूब पब रहा है। वैसे बात करेंगे पारुल गुलाटी की, तो वो भी सिंपल सोबर अवतार में नजर आई हैं, जिन्होंने चॉकोल ब्लैक कलर की प्रिंटेड जीन्स पहनी है और साथ ही टॉप पहना है। इसी के साथ वहाँ पर लाल रंग का जादू बिखेरती नजर आई हैं श्रेया कालरा भी, भाई लॉकअप 2 की विनर हैं, ऐसे में इनकी चमक अब भी बरकरार है।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: इसी के साथ ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं सोंदूस, जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट तो पहनी है लेकिन उसे पेयर अप किया है सिल्वर ग्लिटर्ड मिनी स्कर्ट से। वैसे मिनी स्कर्ट में तो वहाँ पर क्रिस्टल डिसूजा भी नजर आ रही हैं, जिन्होंने सिंपल टॉप पहना है और उसमें खास प्रिंटेड लिखा हुआ है नॉट अ ट्रेटर।
2: भाई तेरा फुल सेट इमोशन भी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़।
0: साथ ही वहाँ पर दिखी है शहनील गिल भी, जो ब्लैक कलर के टॉप और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड स्कर्ट में नजर आ रही है। भाई हसीनाओं ने तो अपना जलवा दिखाया ही, साथ ही एंटरटेनमेंट जगत के देसी मुंडे भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। बात करेंगे शेफ रणवीर ब्रार की, जिन्होंने सिंपल सोबर अवतार चुना है। इसी के साथ साकिब सलीम भी सिंपल अवतार में नजर आ रहे हैं। जीन्स और टी शर्ट के लुक में दिखे हैं हरमन सिंघा। वैसे अतरंगी अंदाज में नजर आ रहे हैं साहिल सराटिया, जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट तो पहनी ही है लेकिन उसमें अतरंगी शॉर्ट्स पहने हैं और यही कपड़े उनको सभी में अलग दिखा रहे हैं। इनके अलावा वहाँ पर नजर आ रहे हैं आदित्य कुलश्रेष्ठ भी, जिन्हें आप कुल्लू के नाम से भी जानते हैं और ये सिंपल सोवर अवतार में नजर आए हैं। फिलहाल तो ये पार्टी शुरुआती कामयाबी की है, अब देखना होगा कि ट्रेटर 2 के विजेता कौन होंगे और बम्पर पार्टी कौन रखेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

केसरिया हमें साहस और त्याग की याद दिलाता है। ये जो श्वेत रंग है ये तो है सत्य और शांति का प्रतीक, और फिर ये जो हरा है ये है समृद्धि और उसके साथ साथ आगे बढ़ने का प्रतीक भी। और ये जो इसमें अशोक चक्र है ना, ये भी हमें यही याद दिलाता है कि निरंतर हमें अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़ना है। आज तो हम मना रहे हैं आज़ादी का ये दिवस, और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी जो जुड़ी है हमारे आज़ादी के इस दिवस से। तो किस तरह आपके फेवरेट सेलेब्स मना रहे हैं आज़ादी के इस दिवस को, कौन दे रहा है हमें आज़ादी की शुभकामनाएं, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।

0: इंडिपेंडेंस डे।
1: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन।
2: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
3: सितारों की देशभक्ति,
4: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
3: इंडिपेंडेंस डे पर खास
0: नदी सुनहरी हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना,
1: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
0: मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय हिंद
1: भारत माता की।
0: जय।

0: 15 अगस्त के दिन सितारों को याद आए बचपन के दिन। भाई मौका है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे का, और इस खास मौके पर हमारे साथ हैं जी अनमोल के सीरियल हमारी राधा के राधा और गिरधर उर्फ गैरी यानी कि सिमरन कौर और अक्षय म्हात्रे, जिन पर आज चढ़ गया है देशभक्ति का फीवर। भाई आज मौका भी है और दस्तूर भी, ऐसे में देखिए कैसे आज राधा और गैरी गा रहे हैं गाने।
1: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,

0: बना रहे हैं इंडियन फ्लैग।
1: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है।
0: कर रहे हैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा। और कुछ इस तरह ये मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए हम चलते हैं सीधा हमारी राधा के सेट पर और देखते हैं इनकी देशभक्ति।
2: नदी सुनहरी हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
3: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद
1: भारत माता की
0: जय।
2: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
0: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कौर और मैं हूँ आपकी राधा।
3: और मैं हूँ अक्षय मात्रे, यानी कि आपका गिरधर उर्फ गैरी।
1: और हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
3: स्वतंत्रता दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: भाई आज इस खास मौके पर देखिए कैसे ड्राइंग बुक हाथ में लेकर ढेर सारे कलर अपने पास रखकर आज दोनों बना रहे हैं ड्राइंग। और इस ड्राइंग में खास ये है कि ये बना रहे हैं इंडियन फ्लैग और अपने बचपन के दिनों को कर रहे हैं याद। भाई आज तो ये भी बच्चा बन देखिए कैसे ड्राइंग में हो गए हैं मशरूफ।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंस डे है और ड्राइंग बुक हाथ में है और क्रेयॉन्स साथ में है, तो क्यों ना वापस से चाइल्डहुड मेमोरीज को रिलीव किया जाए और इंडियन फ्लैग बनाया जाए। व्हाट से?
3: या आई एग्री, लेट्स गो।

0: एक्चुअली सब मुझे तो मैं इतने टाइम बाद कलरिंग भी कर रही हूँ तो सच में एंड मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंद था स्कूल में
1: मैं तो काफी बुरा था

0: भाई देखिए, स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर दोनों ने ही कितना प्यारा फ्लैग बनाया है पूरे दिल से। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं कि आज इस तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाकर इन्हें कितना मजा आया।
1: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
2: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन।
3: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने इंडियन फ्लैग बनाया है जो ट्राई कलर का है, जिसमें ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और बीच में अशोक चक्र है।
2: मैंने भी वही बनाया है। सिमरन की आर्टिस्टिक स्किल्स मुझसे काफी ज्यादा बेहतर है, बट मैंने पूरी कोशिश की है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बचपन में भी ऐसे ही दिखता था, आज भी ऐसे ही दिखता है। So, yeah.
3: नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से ऐसे एकदम पर्टिकुलर होके ड्राइंग करती होती थी और बहुत शौक भी था, और लिटरली मेरा फेवरेट था इंडियन फ्लैग बनाना, जो मैंने आज फिर से बनाया है बहुत टाइम बाद। सास बहू और बेटियों के दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और देखना मत भूलिए हमारी राधा और हम दोनों को, मतलब राधा और गैरी, हम दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।
0: राधा और गैरी यानी कि सिमरन कौर और अक्षय महात्रे ने अपनी बचपन की यादें ताजा की और बताया कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंस डे मनाते आए हैं, और आज सेट पर भी इन्हें इंडिपेंडेंस डे मनाने का मौका मिल गया।
3: मतलब स्कूल में तो कितना सेलिब्रेशन होता था ना इंडिपेंडेंस डे का, तो मतलब एक हफ्ते पहले से ही सब बच्चों में इतना वो जज्बा होता था, हम इतने एक्साइटेड होते थे, स्कूल में सेलिब्रेशन होता था, और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी पतंग उड़ाने के लिए। तो आई रिमेम्बर सर छत पे जाके आप पतंग उड़ाओ और फ्री, क्योंकि आई थिंक जो पतंग होती है वो एक सिंबल होता है फ्रीडम का, और सब लोग ऐसे अपनी छतों से वो उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इट वाज टू बी सच अ नाइस फीलिंग।
2: 15th August यूजुअली स्कूल को कभी भी छुट्टी मिल जाती थी तो सेलिब्रेशन सोसाइटी में बहुत बढ़िया होता था। सुबह सब बच्चे उठ के सब ट्रेडिशनल अटायर में आते थे, झंडा वंदन होता था, एंड फिर कुछ ना ऐसे स्मॉल गेम्स, स्पोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, स्पोर्ट्स डे टाइप का होता था, एंड देन शाम को कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते थे। तो ट्रॉफी एग्जैक्टली या तो मतलब जैसे एंड स्पोर्ट्स यानी कैसे ना कि ए विंग बी विंग के बीच में क्रिकेट मैच हो गया, फिर छोटे बच्चों के लिए हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता था, छोटे बच्चों के लिए वो चम्मच और नींबू रख के वैसे वो रेसेस, सो वो सब होते थे। शाम को कुछ ड्रामा परफॉर्मेंसेज होते थे एंड डांस परफॉर्मेंसेज होते थे, और ये सब की तैयारी में पिछले एक महीने से सबकी मतलब एवरीवन यूज्ड टू प्रैक्टिस स्कूल से आने के बाद, और या एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, मजा आता था।
3: मुझे ऐसे एकदम बचपन में भेज दिया, और पता मुझे अभी भी वो याद आता है आज तक, मतलब मेरा वो खौफ है कि मेरे ना वो चम्मच के ऊपर नींबू कभी टिकता ही नहीं था। जो एक होता ना कि चलो 10 बच्चे हैं तो सबसे पहले वो नींबू मेरा ही ऐसे स्पून में से नींबू गिरता होता था, और मैं मतलब मैं कहती थी यार ये क्या बात होती है। फिर मेरे ना मन में आया कि मैं फेविकोल को चिपका दूं, मैंने कहा नहीं चीटिंग नहीं करूंगी, कोई बात नहीं आ जाओ। मैंने देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, मेरे ख्याल से ये सब लड़कियों का ऐसा फेवरेट गाना है, और ये हर इंडिपेंडेंस डे पे बजता है एंड यू नो पीपल डांस ऑन इट। तो मैंने स्कूल में हर साल आई थिंक इसी गाने पे डांस किया है।
2: मैंने डांस तो नहीं लेकिन स्पीच भी नहीं एक प्ले या सो हमने रामायण किया था एक बार, एंड मैंने रावण का रोल किया था उसमें, सो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग, बहुत बढ़िया था।
3: जैसे वो भगत सिंह बनके, गांधी जी बनके, हाँ मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक नर्सरी में थी, तो ऐसे ही हम फ्रीडम फाइटर्स के ऐसे नो कपड़े उपड़े पहन के सब ऐसा करते थे। बट पता है बहुत अच्छा लगता था, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग जब आप वो अटायर में होते हो ना एज अ किड ऑल्सो, आप छोटे भी हो तो आपको एकदम अंदर से ऐसे वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इट जस्ट यू नो चलता है वो दिमाग में, बहुत अच्छी फीलिंग है वो। ये 80th इंडिपेंडेंस डे है तो 79 ईयर्स कम्प्लीट होंगे, और ये हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है। बोलो वाओ।
2: आई थिंक इंडिपेंडेंस डे तो मतलब थैंक यू बोलने का दिन है हमारे पूर्वजों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, और वो सारे लोग जो हमारे फ्रीडम के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने अपने हमारे हक के लिए लड़ाई की है ताकि आज हम यहाँ ऐसे आराम से बैठ सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। सो या इट्स अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, उन सब लोगों को सलाम देने का दिन है।
3: And I also feel आज जो हमें इतना फ्रीडम है मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू नो हर हर तरीके का फ्रीडम है. हम जो चाहे वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो जो मन में आए, यू नो ऑल इन अ गुड वे, जो मन में आए वो कर सकते हैं, जो हमारे मन का हो, जो जैसे 80 साल पहले जो सब हम लोग नहीं कर पाते थे, आज हमारे जो मन में आता है वो करते हैं और दिल की सुनते हैं. तो मेरे ख्याल से जो फ्रीडम है वो मेरे लिए दिल की सुनना है. और वी शुड रियली बी थैंकफुल टू ऑल आर फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने मतलब इतना सैक्रिफाइस किया था हम सबके लिए. उन्होंने तब फ्रीडम फाइटर्स और आम लोग भी जो सब मतलब उनके पीछे पीछे चले थे, और उन्होंने, मैं आज के डेट पर सोचती हूँ कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा. मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज यू नो सुन के उनकी कहानियाँ हम लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे इनमें इतना साहस, इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी, जो यू नो कोई भी करने से पहले दो बार सोचे कि अरे हमारी फैमिली है, ये है, कैसे क्या. लेकिन उनके दिमाग में बस ये था कि हमें जैसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए, और जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है वो ऐसे दबके नहीं रह सकती, उनको भी मतलब यू नो एक फ्री होके रहना है. सो जो उन्होंने बढ़िया काम किया था उसकी वजह से ही आज हमें खुले फ्री माहौल में जी पा रहे हैं. सो ही इज राइट, यू आर वेरी राइट कि हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए.
0: तो भाई राधा और गैरी ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस कुछ इस तरह से मनाया. अब चलते हैं एरिका कश्मीर और निखिल आयुषी के पास, जहां आज वो इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं अपना नेशनल फ्लैग और कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की अपनी यादें ताजा. तो भाई आज हमारे साथ है कश्मीर यानी कि 108 बेस हॉस्पिटल उरी के अनिरुद्ध जायसवाल और एरिका यानी नैना सान्याल. तो आइए देखते हैं कि आज किस तरह ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं.

0: जय हिंद।
1: An artist, man. Here you go, you're an artist, yeah. Oh, look at the top.
2: हाँ, मेरा बेटा है 7 साल का, तो वो तो बहुत एक्साइटेड, और ये होता है कि सुबह उठे 6:30-7 बजे, नहाए, फिर अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है वो उसको परिधान करे और जाके फ्लैग होइस्टिंग करे, ये सब चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट होती है उसको। इट्स लाइक अ वेरी बिग ओकेजन फॉर अस।
3: Doing the flag hoisting and singing the national anthem, nice, all of those things.

0: पहले बजता हो?
1: मुझे काफी अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे सबसे बोलू तो ये सुनो गौर से दुनिया वालों एक गाना है, वो बहुत मज़ेदार गाना है, बहुत मतलब जोश वाला गाना है। और इवन रहमान साहब का वंदे मातरम जो गाना है वो भी बड़ा, जो उन्होंने कंपोज किया है ए आर रहमान ने, वो भी बड़ा कमाल का है, मुझे बहुत पसंद है।

0: देखो सुन लो गाना भाई।
1: सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो।
2: देखो मैं गा रहा हूँ मजाक करो, बट दिस इज अ लवली सॉन्ग।

0: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: इसी के साथ आज हमारे साथ निखिल यानी कि समीर और आयुषी यानी मिली है, और ये भी तिरंगा बना रहे हैं और कुछ इस तरह मना रहे हैं आजादी का ये दिन।

0: ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है बिकॉज हमारा शो भी है, सो दैट वे
1: 15th अगस्त को हमारी छुट्टी होती थी और हम सारे लड़के मिलके क्रिकेट मैच खेलते थे और जिसकी टीम जीतती थी वो छोले भटूरे और लस्सी स्पॉन्सर करता था एंड फिर उसके बाद जाके हम मार्च पास देखते थे और क्योंकि हमने लस्सी पी होती थी बिकॉज ऑफ विच इनएविटेबली हम 6 घंटे सो जाते थे सारे और उसके बाद शाम को अगेन क्रिकेट. सो आई थिंक उस छुट्टी को इंजॉय करते थे उस लिटरली एज अ स्कूल किड आप उस फ्रीडम को इंजॉय करते हो क्योंकि सबकी छुट्टी है और सब मज़े में एंड इट्स नॉस्टैल्जिक एंड आई मिस दोज टाइम्स फॉर श्योर. मतलब आर्मी फिल्म्स में तो कल्ट क्लासिक मेरे लिए बॉर्डर है और वही पिक्चर जो है हमेशा मुझे मूव करती है एंड ये कैरेक्टर के लिए अगर मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली है तो वो मेरे फादर रहेंगे क्योंकि मैं खुद ही एक आर्मी फैमिली से आता हूँ तो मैं हमेशा से अपने फादर को लुक अप टू करता था और उन्हीं के कारण मैं आर्मी में जाना चाहता था बट आई कुडंट गो बिकॉज मेरी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी. बढ़िया मतलब माई फादर आई थिंक या
0: बॉर्डर तो हम सबका फेवरेट है ही बट रिसेंट टाइम से मुझे उड़ी एंड शेरशाह पसंद है. हाँ मुझे पसंद है.
2: तो देखा आपने कुछ इस तरह सितारों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस. तो भाई हमारी तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
3: आजादी का मतलब अपनी आवाज उठाने का हक. और अक्सर जब कहानियों में ऐसा होता है ना तो आते हैं हमारे लिए भी अलग अलग मोमेंट्स क्योंकि कभी तो ये होते हैं रॉकिंग लेकिन कभी होते हैं शॉकिंग. आप तो समझ गए होंगे मेरा इशारा. तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
2: सास बहु और बेटियां लेकर हाजिर है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. और रॉकिंग खबर जुड़ी हुई है कलर्स टीवी पर जल्दी आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 20 से. 6 सितंबर को ये शो ऑन एयर होगा और इसी के साथ नाम आ रहा है कि पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस के घर में नजर आ सकते हैं. हालांकि इस खबर को खारिज खुद ललित मोदी ने किया है और एक नोटिस जारी करके दर्शकों को बताया है कि वो इस शो का हिस्सा नहीं होंगे. इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि रोडीज और स्प्लिट विला के विनर रह चुके गुल्लू भी कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे. हालांकि अभी तक गुल्लू ने इस बात पर कंफर्मेशन नहीं दी है.

जल्द ही प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग और आवारापन 2 के डायरेक्टर नितिन कक्कर एक साथ नई फिल्म बनाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और वो फिल्म होगी म्यूजिकल रोमांस पर आधारित। हालांकि इस फिल्म का अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है।

खबरें आ रही थी कि डायरेक्टर एटली की आने वाली फिल्म राका की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी, जिसमें नजर आएंगे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना। लेकिन अब खबर आ रही है रश्मिका मंदाना को हिप इंजरी हुई है, जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग 1.5 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई है।

जूनियर एनटीआर की शोल्डर सर्जरी के चलते उनकी आने वाली फिल्म ड्रैगन की शूटिंग पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया है, जिसके चलते इस फिल्म की रिलीजिंग डेट आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। और उसी के चलते सलार 2 जो ड्रैगन के बाद रिलीज होने वाली थी वो अब पहले रिलीज होगी।

इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रवीना टंडन आज के दिन को खास मना रही हैं और देखिए कैसे बच्चों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहरा रही हैं।

इसी के साथ शिल्पा शेट्टी भी अपने घर पर ध्वजारोहण कर रही है, जिसका वीडियो उन्होंने अपने फैंस के लिए शेयर किया है। वैसे ध्वजारोहण तो जगधात्री के सेट पर भी हो रहा है, जहां पर पूरी टीम मिलकर भारत के झंडे को सलाम कर रही है।

0: इसी के साथ स्टार्स की सभी बहू बेटियां भी अपने फैंस को इंडिपेंडेंस डे की बधाइयां दे रही हैं।
1: आजादी ही असली सोना है और हर आजाद चिड़िया है सोने की चिड़िया।

फिल्म मिर्जापुर द मूवी में राध्या का कैरेक्टर निभाने वाली प्रसन्ना शर्मा ने कुछ बिहाइंड द सीन अपने फैंस के लिए शेयर किए हैं। डाल लीजिए उन पर एक नजर।

0: देख लीजिए दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी का ये नया प्रोमो, जहां पर आकाश की वापसी होने वाली है और इसी के चलते सूरज के आगे नई मुश्किलें आएंगी।
1: नहीं, तुम मिहिका को मुझसे अलग नहीं कर सकते।
2: सूरज, मुझे अपने परिवार पर कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। तेरे मिहिका ऐसे वापस
3: क्या चुनेगा? सूरज, ईशा की ममता या ताई माँ का हुक्म?
0: क्या हुआ जब मुलाकात हुई विवेक दहिया और गौहर खान की? भाई, गौहर खान के गानों पर विवेक दहिया ने ठुमके लगाए।
4: ये क्या?

0: फराह खान पहुंच गई हैं दिल्ली और वहां से सामने आया एक वीडियो जहां पर फराह खान वरुण और आरुष के घर के बाहर मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं। इसी के साथ देख लीजिए जब फराह खान और आकांक्षा चौधरी की मुलाकात हुई तो कैसे आइकॉनिक मोमेंट रिक्रिएट हुआ लॉकअप से।
1: मैंने कहा उठो बिस्तर से।
2: तो आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से।
3: लो
1: लो
3: लो
1: क्या लो
2: आज तो वसुधा हमसे कह रही हैं कि भारत की पहचान सिर्फ उसके शहरों से नहीं है बल्कि भारत में तो हैं नदियां, जंगल, मिट्टी, खेत। तो आज आजादी के इस दिवस पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, ये भी तो हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वैसे वसुधा क्या बात कही है आपने, तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको वसुधा के पास और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।
0: मिट गई चंद्रिका और वसुधा की दूरियां। प्रभात संग हादसा।
4: व्हाट द हेल, तुमने मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए।
0: शुरू होंगी रिश्तों में उलझने।
4: आपने सही कहा था मासा, ये लड़की मेरे लायक है नहीं। गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। अब जाओ यहाँ से।
0: टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका और प्रभात के बीच अनबन शुरू हो गई है जिसके चलते प्रभात अपना कमरा छोड़ पहुंच गए हैं देव के कमरे में सोने के लिए और ये देखकर देव बेहद परेशान है क्योंकि उसने आज तक अपने मम्मी पापा के बीच की ये बातचीत बंद होते हुए देखी जो नहीं थी। बस फिर क्या, ऐसे में देव और वसुधा ने अपना प्लान बनाया और देखिए कैसे उसी प्लान के मुताबिक वसुधा ने देव के इम्पोर्टेंट कागजों पर दूध गिरा दिया जिसके चलते देव वसुधा पर भड़कने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर चंद्रिका और प्रभात दोनों देव के कमरे में पहुंच गए।
4: वसु, तुमने मेरे इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए।
5: मैंने अभी ठीक कर दिया मंसूरी।
6: रुको वसुधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती, गलती देव की। देव अपनी पत्नी के साथ इस तरह कौन बर्ताव करता है?
4: मां साहब को मेरा बर्ताव दिख रहा है, इसकी हरकतें नहीं दिख रही। सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, सुबह से मेरी शर्ट खराब कर दी और अब मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए। तो गवाह है, दूसरों के काम की कोई गलत नहीं। आपने सही कहा था मासा, ये लड़की मेरे लायक है नहीं। गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। अब जाओ यहाँ से।
6: क्या कर रहे हो तुम? तुमने खुद सुना तुमने किस तरह से बात किया, देखा क्या किया तुमने? इस तरह का बर्ताव हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी मांगो।
0: भाई जिस हिसाब से देव नाटक कर रहा है और वसुधा और देव दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं उस हिसाब से प्रभात और चंद्रिका दोनों ने उनकी चोरी पकड़ ली। बस फिर क्या, देव ने अपने पापा प्रभात को समझाना शुरू कर दिया और तो और प्रभात को भी अपने बेटे की इस नादानी पर गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी।
7: तो अपने पापा साहब का पापा साहब बनने जा रहा था, मेरी ही बातों में मुझे ही उलझा दिया। सॉरी बाबा साहब, सॉरी मां साहब, बस मैं नाटक नहीं करना चाहिए था। और मेरे और वसु के बीच में तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे लिए आपकी शादी एक आइडियल शादी है। वसु तो वैसे भी मासा की परछाई और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पापा साहब की तरह बनूँ, उनके आदर्शों पे चलकर प्यार और समझदारी के साथ रिश्ते।
0: भाई देव और वसुधा का मजबूत रिश्ता बनता देख चंद्रिका ने कहीं न कहीं ठान ली है कि अब वो वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेगी। ऐसे में आज देखिए कैसे चंद्रिका ने आरती की थाली भी तैयार कर ली और वसुधा को अपनी बहू के रूप में मान लिया।

0: जैसे ही चंद्रिका ने वसुधा की आरती उतारी और वसुधा को गले लगाया, कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि प्रभात के साथ हो गया हादसा।
1: वसु को अपना कल तुमने मेरी और माँ के साथ दोनों की इच्छा पूरी कर दी।
0: भाई प्रभात के साथ हुआ ये हादसा क्या फिर से वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते में दरार लाएगा, और क्या फिर से चंद्रिका वसुधा को बहू मानने से मना कर देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब सच्ची आजादी तो तब होती है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, तो दूसरों की उम्मीदों पर जीने की बजाय खुद का सम्मान करना, खुद को स्वीकार करना, ये भी सबसे बड़ी आजादी है। और कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। लेकिन क्या कुछ हो रहा है राध्या और प्रथम की इस कहानी में आज, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
3: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं।
0: राध्या का 16 श्रृंगार,
3: अजब

मंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या का ये नया अंदाज देखकर आप लोग भी हैरान रह गए ना। हाँ जी, ये राध्या नहीं बल्कि इनके अंदर हो गया है विष कन्या का असर। तभी तो देखिए कैसे हमेशा सीधी सादी साड़ी और बाल बांध कर रहने वाली राध्या आज चमकीली साड़ी और घुंघराले बाल बिखेरती हुई नजर आ रही है और अपना साज श्रृंगार कर रही है, वो भी प्रथम के लिए।

0: राध्या नहीं, दरअसल विश्वकन्या इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो नई नई चीजें कर रही हैं। वो पहले तो सिर्फ बाल खोल के घूम रही थी, पर उन्हें लग रहा है कि प्रथम करीब नहीं आ रहा है, क्या करूँ, प्रथम को कैसे पटाओ, तो वो फुल रेडी हुई हैं, बाल वाल अलग किए हैं अपने जैसे कि जैसे विश्वकन्या रेडी होती है, ज्यादा लिपस्टिक लगाई है, उनको तिल है तो तिल भी बनाया हुआ है। तो विश्वकन्या पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके प्रथम को रिझा सके। एज तनिष्क मुझे तो आई थिंक बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कपड़ों में फुल फुल पहन के, बट मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ नया चल रहा है शो में। आई गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो, तो मुझे तनिष्क को पर्सनली बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस ट्रैक को।
1: यहाँ राध्या उर्फ विश्वकन्या प्रथम के लिए अपनी खूबसूरती निखार रही है तो वहाँ दरवाजे पर खड़ी दादी उसे देख रही है क्योंकि उसे राध्या पर शक है। इससे पहले कि राध्या उन्हें देख पाती, दादी वहाँ से भाग जाती है। हालांकि राध्या यानी कि विश्वकन्या उसे शक हो गया है कि कोई तो दरवाजे पर है, हालांकि उसे कोई नजर नहीं आता। खैर अभी तो विश्वकन्या का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है प्रथम को अपना बनाना। तभी तो देखिए कैसे वो प्रथम के लिए कैंडल्स जला रही है और तो और कर रही है प्रथम का इंतजार भी, क्योंकि आज वो अपने मकसद में कामयाब जो होना चाहती है।

आई थिंक प्रथम तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है बेचारे. उनको ऐसा लग रहा है कि शर्मीली सी राध्या अचानक से इतनी अप फ्रंट कैसे हो गई है, और रेगुलर बेसिस से ज़्यादा राध्या रेडी हुई है, बाल बाल खुले हैं. तो खुश तो होंगे वो उसे देख के, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि राध्या का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है, डिफरेंट बिहेव कर रही है. पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी बीमार है, दवाइयों की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे होंगे. तो प्रथम खुश होंगे, पर क्या रिएक्शन देंगे वो नहीं पता, क्योंकि वो राध्या ने उन्हें बोला है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है जो छूने से फैल रहा है. तो वो खुद भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि राध्या को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. और रही बात दादी की, तो दादी को तो बहुत टाइम से डाउट है कि राध्या के अंदर कुछ ना कुछ तो है. तो उन्होंने तांत्रिक के पास लेके जा चुकी हैं, बाबा बुला चुके हैं, दोनों को राध्या ने डरा के भगा दिया, मतलब विष्कंठा ने डरा के भगा दिया है. तो अब दादी को फाइनली जाके पता चला है कि एग्जैक्टली कोई भूत प्रेत पिशाचनी नहीं है, उसके अंदर विष्कंठा

0: पूरे झालू और उसके साथ ही रहूं।
1: अब विश्वकन्या की ये कोशिश कैसे रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले विश्वकन्या ने ही ऐसा खेल खेला है जिसके चलते सभी घरवालों को लगता है कि राध्या जिसे छुएगी उसे बीमारी हो जाएगी, जिसके चलते कोई भी अब राध्या के करीब नहीं आ रहा। देखना होगा कि अब विश्वकन्या कैसे कोशिशें करेगी प्रथम को अपने करीब लाने की। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: कभी भी आपको जीतने नहीं देंगे। आप हमारी वजह से आजाद हुई हो ना, अगर हम ही अपनी जान दे देंगे तो आप अपने आप ही वापस कैद हो जाओगे।
3: इस आजादी के दिवस पर आज हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम सिर्फ मेरा भारत महान कहकर ही नहीं, बल्कि हम कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पर करें कि इस देश को आगे ले जाएं, इसे और भी महान बनाएं। क्योंकि देश सिर्फ उसकी सरकार या एक व्यक्ति से नहीं, देश तो हम सबको मिलाकर बनता है। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की अगली खबर, जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी

कलर्स के सीरियल जूही मुई में आज जूही के लिए है बड़ा दिन। तभी तो उसके दिन की शुरुआत बड़ी ही खुश मिजाज हुई है। उठते के साथ ही जूही ने तैयारी कर ली है अपने पहले केस के लिए।

करता ये बुद्ध। और देखिए कैसे कोट पैंट पहन पहुंच गई है अपने पापा की तस्वीर के आगे और ले रही है अपने पापा का आशीर्वाद, क्योंकि आज जूही बड़ा केस लड़ने जो जा रही है। ऐसे में पापा का आशीर्वाद तो बनता है।

0: हमेशा चाहती थी कि उनके बाद तुम बेस्ट लॉयर बनो, याद है ना?
1: याद है।

0: tomorrow morning. Study.
1: Okay, let's go.
0: Come.
2: तो मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है, पति के साथ भी हमेशा लड़ाई जूही को लेकर इसी बात से हुई है क्योंकि वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहे और मैंने हमेशा कहा है कि नहीं, दुनिया नुकीली चीज़ों से भरी हुई है तो उसे इस दुनिया में ही जीना है, आगे जाके ज़िंदगी अकेले बितानी है तो वी हैव टू गेट हर रेडी फॉर दैट। हर बार नहीं बचा सकते उसे। तो अभी भी यही टेक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि जूही अब एक लॉयर बन चुकी है और एक बहुत बड़ा केस हैंडल कर रही है जो इनफैक्ट उसे सब कहते हैं कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम जूही के साथ हैं क्योंकि अगर डर के आगे जीत है और जूही को जाके केस लेना ही पड़ेगा।

इनफैक्ट जूही के पापा को कभी लगा ही नहीं कि जूही एक इतनी बड़ी लॉयर बन सकती है. उन्हें हमेशा लगता था कि उनका बेटा जो है वो लॉयर बनेगा और जूही बिकॉज स्पेशल है शायद नहीं बन पाएगी. तो इनफैक्ट आज अगर वो होते तो वो सच में शॉक्ड हो जाते कि मेरी जूही एक लॉयर बन गई है. इसलिए ज़्यादा इमोशनल ये सीन हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पापा का नाम जो है, जो लेगेसी है, वो करण नहीं बल्कि जूही जो है वो आगे बढ़ा कर ले जा रही है.

भाई जूही ने ना सिर्फ अपने पापा का आशीर्वाद लिया है बल्कि वो पहुंच गई है अपने पापा के कैबिन में भी, जहां पर उसके पापा केस की तैयारी किया करते थे और अब जूही वहां तैयारी करती है। ऐसे में जूही ने ना सिर्फ अपने पापा का रुमाल लिया बल्कि उनकी कलम भी ले ली और अपने आप से वादा किया कि वो अच्छी वकील बनकर दिखाएगी। कभी

0: और जूही का अपने आप से ये वादा देख करण और जूही की माँ दोनों ही इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि जूही की जिंदगी में आज का दिन सबसे बड़ा दिन है।
1: जूही सूरी, डॉटर ऑफ राजेंद्र सूरी, जो वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर, उनके बाद करण और थे।
2: देखिए ये ना बहुत ही एक कहते थिन लाइन है, बच्चा स्पेशल है हमें पता है, लेकिन उसको अगर हम पुश नहीं करेंगे, उसे ये नहीं फील करने देंगे कि तुम लोगों से इनफैक्ट बेटर हो, तुम और भी अच्छी हो सबसे, तब तक वो बच्चा शायद अपनी तरफ से उतनी कोशिश नहीं करेगा। तो आई थिंक हर फैमिली जिनके यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि इन बच्चों को आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि जाओ दुनिया से लड़ो, क्योंकि तुम में वो ताकत है।
0: खैर अब जूही पूरी हिम्मत के साथ निकल तो रही है अपना पहला केस लड़ने के लिए, देखना होगा जूही को उसमें कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा।
3: ये तो दही चीनी है, आज आपका पहला केस है ना, ये रहे आपके कागज पत्र।
4: इंस्पेक्टर सैयद, आप मेरे साथ ही रहोगे ना, छोड़कर तो नहीं जाओगे? तो
3: मैडम मैं आपने छोड़ के बेटा, बेटा।
0: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: बेटा बोल के गाली ना दो,
3: आपने अपना पहला केस छोड़ना पड़ेगा मैडम, पड़ेगा मैडम।
6: तिरंगा सिर्फ तीन रंग नहीं, हमारे त्याग की कहानी, हमारे आजादी की पहचान और हमारी तरक्की की निशानी भी है। और ये जो अशोक चक्र है, हमें ये निरंतर यही याद दिलाता है कि हमें इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने देश को और आगे ले जाना है। तो आज़ादी के इस दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगली स्टोरी जो है स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
7: ये जो देश है तेरा,
0: शिवानी गोसाई का देश प्रेम,
7: तुझे है पुकारा।
0: रायन इंटरनेशनल स्कूल का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन,
7: ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
0: ताजा हुई शिवानी की बचपन की यादें,
7: स्वदेश है तेरा।
0: सीरियल रंगबाजी दिलों की में पुष्पा ने भले ही अलग अलग अंदाज दिखाए हो, लेकिन रियल लाइफ में शिवानी गोसाई के दिल में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब इन्हें सास बहू और बेटियां का साथ मिला, तो अपने बचपन के दिनों को ताजा करने के लिए और देशभक्ति दिखाने के लिए वो सीधा पहुंच गई हैं कांदीवली के रायन इंटरनेशनल स्कूल में, जहां वो न सिर्फ बच्चों के साथ मिलकर देशभक्ति गीत गा रही है, प्रतिज्ञा कर रही है, बल्कि साथ ही कर रही है वृक्षारोपण भी, भारत को स्वच्छ बनाने का संदेश देने के लिए। तो आइए शिवानी संग शामिल हो जाते हैं ध्वजारोहण में, जहां भारत के ध्वज को सलामी देते हुए गीत गाया गया और साथ ही ली गई प्रतिज्ञा।

0: country. And all Indians are my brothers and sisters.
1: All Indians are my brothers and sisters.
0: I love my country.
2: हाय, मैं आपकी शिवानी गोसाई और हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं यहाँ रायन इंटरनेशनल में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है। अपने स्कूल के दिन याद आ गए, कितनी एक्साइटमेंट से हम लोग सब ऐसे इंडिपेंडेंस डे स्कूल में मनाते थे, प्रिपेयर करते थे अपने आप को डांस के लिए, मार्च के लिए। सो आई एम सो एक्साइटेड टू अटेंड दिस इंडिपेंडेंस डे का पूरा जो यहाँ बच्चों ने तैयारी की है उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड येस, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। बचपन में ना मैं फोक डांस वगैरह करवाते थे हमें स्कूल में, मार्चिंग करवाते थे, तो आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे मैं हमेशा मतलब एक्टिव इन्वॉल्व रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी सारे बच्चों की तैयारी देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एंड कितनी मेहनत की है इन लोगों ने। हाँ हाँ, मेरी मम्मी की साड़ी लेके ना, मम्मी मुझे तैयार करके भेजती थी, तो मम्मा की साड़ी से मुझे ऐसे सजा के और थोड़ा थोड़ा ऐसे लिपस्टिक और वो बचपन में कैसे ना ऐसे लाली लगा के और वैसे करके मम्मी भेज देती थी, और तो वो सब मुझे बहुत याद आ रहा है। तो स्कूल आना मैं पहले तो था कि हाँ जैसे हम लोग जाते हैं अटेंड करेंगे, पर यहाँ आके ही मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, बहुत प्यारे थे। भगत सिंह रहे हैं मेन, तो सुभाष चंद्र बोस रहे हैं और भगत सिंह, क्योंकि मतलब 24 साल की छोटी सी उम्र में, मतलब मैं सोच के भी हैरान होती हूँ कि क्या जज्बा होगा उस लड़के के अंदर। मतलब उसने अपनी लाइफ भी गंवा दी शहीद मतलब भगत सिंह ने, और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ उनका रहा है, उनके साथियों का रहा है, तो मैं उनको, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बाकी मेरे नाना जो हैं वो भी फ्रीडम फाइटर थे, और उन वो सुभाष चंद्र बोस के उसमें थे, आर्मी में थे। एंड मेरे मतलब मेरे नाना ने के तो वो होता है ना कि नाम भी कहीं पंजाब की बुक्स में आता था, मुनी लाल कालिया, तो वो बहुत ऐसे जज्बे वाले, और मेरी मम्मी को भी वो ना ऐसे जासूसी करवाते थे कहीं कहीं भेज के। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टोरी अपने घर में सुनी है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा इंडिपेंडेंस डे का लेवल और फ्रीडम फाइटर्स का एक नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि मैं उसी घर से हूँ जहाँ मेरे घर में फ्रीडम फाइटर भी हैं, मेरी मम्मी ने खुद जासूसी में पार्टिसिपेट किया है। और सो या

भाई वाकई आज तो शिवानी के लिए दिन नॉस्टैल्जिक बन गया है, क्योंकि बच्चों को इस तरह मार्च पास करता देख और देशभक्ति में लीन होता देख शिवानी को अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। इतना ही नहीं, स्पेशल गेस्ट बनी शिवानी ने रायन इंटरनेशनल स्कूल की टीम के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया और साथ ही दिया देशवासियों को ये संदेश कि अपने भारत वर्ष को बनाना है स्वच्छ।

0: It's a joy to have in our school the presence during the Independence Day celebration, which we are proud of. It is not a duty now to enjoy, but it is a duty of responsibility to sustain it in a right way as we head completing almost 80 years now.
1: Yes.
0: And we are aiming with the education policy to have a Viksit Bharat by 2047, Yuva Shakti Viksit Bharat at the rate 2047. So we know that our Yuva Shakti will take our India strong and united and in peace.
1: As I told you, मुझे तो बहुत nostalgic लग रहा है because school आना अपने school के दिन याद दिला देता है, तो it's some feeling nostalgic. तो मुझे मेरे time का याद आ रहा है, कैसे I used to prepare for folk dances, for marching and everything because I was very active and I used to participate in everything. तो and this is like always एक वो जो patriotic वो एक energy होती है ना अंदर 15th August की और 26th Jan की, वो एक अलग ही होती है. मतलब वो तिरंगा और सारे गाने, मतलब ऐसे जोश भरने वाले. सो फॉर मी इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक एंड आई एम फीलिंग कि यार वापस वो वाले दिन वापस आ जाए, मैं स्कूल में चले जाऊं. तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड माय सिस्टर सन अर्जुन यूज्ड टू स्टडी इन दिस स्कूल फॉर फ्यू इयर्स, अर्जुन नायडू. फिर उसके बाद वो गोकुलधाम शिफ्ट हो गया, उनका घर वहां था. तो हर तरीके से मेरे लिए बहुत ही प्यारा, मतलब यस एक्सपीरियंस है.
0: Thank you so much. Thank you once again. Hearty welcome and happy Independence Day to you.
2: भाई रायन इंटरनेशनल स्कूल की टीम के साथ मिलकर शिवानी ने आज के दिन को संजो लिया है और बना लिया है खास, क्योंकि आज के दिन ये अपने बचपन में जो चली गई है. खैर, इसी के साथ इन्होंने ली है पूरी टीम से विदाई भी, और साथ ही इन्हें मिला है एक सरप्राइज भी, और वो है प्यारा सा पौधा जिन्हें वो अपने साथ लेकर चली है.
1: मैं वापस यहाँ मेरा बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस लेके स्कूल से जा रही हूँ, अपने स्कूल की यादों को ताज़ा करके. और मुझे ये ग्रीन पौधा दिया है जो मैं घर जाके उगाऊंगी, तो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर. और वापस आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और या ए वतन, वतन मेरे वतन, मैं जहाँ

0: मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आजादी ये हमारा सिर्फ अधिकार नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, तो बहुत जरूरी है कि हम इसका सम्मान करें, अपने देश का, अपने संविधान का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। बस यही तो असली आजादी है। और ये जो हमारा तिरंगा है ना, ये है हमारी शान, हमारी पहचान। और जहां भी हम हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें बस यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश भारत की उन्नति में हम कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। और आज जब हम इस झंडे को फहराएंगे तो हमें उन अनगिनत लोगों को याद जरूर करना है जिनके बलिदान से ही हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो आप सब रखिए अपना अच्छे से ख्याल। जय हिंद।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को किया याद, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य पुजारी रावल जी ने किया ध्वजारोहण, भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के लगे जयकारे। 500 साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार। आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा। मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: आज पूरा देश मना रहा आजादी का जश्न। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक। ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही मौजूद। ध्वजारोहण में की प्रधानमंत्री मोदी की मदद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि शामिल हुए। 100 एनसीसी और 100 माय भारत वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। लाल किले पर प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा परिसर। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। लाल रंग की बंधेज वाली पगड़ी बांधे लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लाल किला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उनका स्वागत। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आजादी के जश्न में दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत माता की जय से गूंज उठा इलाका। लाल किले की प्राचीर से उड़ाए गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे। देशभक्ति, राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रतीक है आसमान में ऊंचाई छूते ये गुब्बारे। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे बच्चे। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित। दोहराया 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। युवाओं को साथ जोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के गान पर भी बोले प्रधानमंत्री। देश के लिए बेहद गर्व का पल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए बड़े योजना की तैयारी। सरकार 1 करोड़ युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर दिया जोर। बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दिया गया जिसका फायदा सीधे लोगों को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को किया याद। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। इस दौरान रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने निजी आवास पर फहराया राष्ट्र ध्वज। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कोविंद ने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की तस्वीरें। लोगों से आजादी, एकता और भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फहराया तिरंगा। बतौर मुख्यमंत्री ने ये उनका पहला ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्र ध्वज फहराया। बोले 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाना गर्व का पल। लखनऊ में विधान भवन में हुआ भव्य स्वतंत्रता दिवस आयोजन। सीएम योगी ने फहराया राष्ट्र ध्वज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी आजादी के जश्न की मुबारकबाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फहराया तिरंगा। ली परेड की सलामी। देशवासियों को बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में भरा राष्ट्र ध्वज, देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को याद किया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय नागरिकों और बच्चों के साथ मिलकर फहराया तिरंगा, राष्ट्रगान और अन्य देशभक्ति तरानों में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, परेड पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का जश्न, छत्तीसगढ़ के सीएम ने फहराया ध्वज, ली परेड की सलामी। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ली परेड की सलामी, फहराया तिरंगा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में
3: विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश आज मना रहा है अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को नमन किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य पुजारी रावल जी ने किया ध्वजारोहण, भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के लगे जयकारे। 500 साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार, आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा, मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत, भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर भारतवासी भारत माता की आजादी का उत्सव मना रहा है, लेकिन आज हम आपको प्रार्थना हो स्वीकार में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकत की दास्तां बयां करेंगे, जब माँ के मंदिर पर गिरने वाले बम रूपी शूल भी फूल बन गए थे। वो साल था 1965 का, जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक दुनिया एक चमत्कार ही मानती आई है। चमत्कार मां तनोट की शक्ति का, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे बेअसर हो गए सारे बम।

इस कहानी में हौसला भी है और करिश्मा भी। करिश्मा मुट्ठी भर सैनिकों के साहस का, और चमत्कार शक्ति के साक्षात प्रदर्शन का। युद्ध वाली देवी माता तनोट, जब 3000 बम हो गए बेअसर, देवी है सैनिकों की सुरक्षा कवच।

कहते हैं 1965 की जंग में दुश्मन भारी लाव लश्कर के साथ आया था, लेकिन उसके सामने आ गया सरहद की रक्षक देवी मां तनूट राय का मंदिर। मान्यता है कि देवी का चमत्कार देखकर ही दुश्मन फौज उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और पाकिस्तान के जनरल को देवी के दर पर चांदी का छत्र चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को 1965 की जंग में मिली हार चैन से सोने नहीं देती। उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे बारूद तबाही की ज्वाला में तब्दील नहीं हो सका। भारतीय सैनिकों की आस्था का केंद्र है मां तनूट का ये मंदिर। भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाल पोस्ट पर हर सुबह इसी पूजा के साथ शुरू होती है।

0: बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की उस जंग के बाद से लगातार चला आ रहा है, जब मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे।
1: देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें तो 1965 में जो पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था, तो पाकिस्तान का मेन टारगेट तनोट एरिया था, और वो क्योंकि तनोट पर बीएसएफ 1965 में बनी थी, उससे पहले आरएसी वहां पर तैनात थी। तो 1965 आरएसी ने वो युद्ध लड़ा था आर्मी के साथ में। 1965 में जब बीएसएफ बनी तो ये चौकी बीएसएफ के पास आ गई, और तब से बीएसएफ इसकी न केवल क्योंकि ऑफ बेस के रूप में कार्य कर रहा है, और जनरली होता है हमारे चौकियों में भी कोई ना कोई मंदिर स्थापित होता है, तो इस मंदिर को भी बीएसएफ ने तभी से 1965 से इसकी पूजा करती आ रही है।
0: राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है तनोट माता मंदिर। जो दुनिया भर में अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है, इस मंदिर से पाकिस्तान की सेना भी कांपती है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी ये आस्था का केंद्र रहा है। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी रेतीली सीमा, यहीं पर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है तनोट माता का ये मंदिर, जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं कि सन 828 ईस्वी में यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिन्हें सुनकर आप मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को समझ पाएंगे। बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सालों पहले जैसलमेर के माता तनोट मंदिर पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कई बम गिराए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसमें से एक भी बम फटा नहीं। कहा जाता है कि ऐसा माता तनोट की कृपा से ही हुआ। एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सबकी रक्षा कर ली। मां तनोट के तेज से पाकिस्तानी सेना ने मौकी खाई। देवी के प्रकोप से पाक सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। मंदिर परिसर पर निशाना साधकर पाकिस्तान ने सैकड़ों बम दागे। युद्ध के बाद गिनती हुई तो पाया कि यहां करीब 3000 गोले दागे गए थे, लेकिन इसमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। तनोट माता की कृपा से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ।
1: उस युद्ध में जो बताते हैं, इनका इतिहास बताता है कि करीबन 3000 बम तनोट माता का जो स्थान है उसके आसपास गिरे थे, और उसमें से भी करीबन 450 बम मंदिर परिसर के अंदर गिरे, लेकिन माता के आशीर्वाद से कोई भी इस प्रकार से हानि नहीं हुई। मैक्सिमम तो बम फटे ही नहीं, कुछ फटे तो भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई खरोंच तक नहीं आई। उसके बाद से ही माता को बमों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है।
0: माँ की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक थे। कहते हैं कि इस अजूबे को देखकर भारतीय सेना के जवान जोश से भर उठे। तनोट माता में उनकी आस्था विश्वास में बदल गई। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया, और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई।
1: बीएसएफ की चौकी है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन लोगों की आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ हमेशा से उनको उनके लिए एक तरह से जरिया बनी है कि लोग आके यहाँ दर्शन कर सके, पूजा कर सके, और बीएसएफ न सिर्फ उसका देखरेख करती है बल्कि पूजा सुबह नियमित आरती होती है सुबह शाम। इसके अलावा जो भी त्योहार होते हैं उनको वह बीएसएफ मनाती है।
0: आज भी उसकी आस्था इस पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों में जोश भर देती है। मंदिर के पास पाकिस्तानी बमों को आज भी साबुत हालत में नुमाइश के लिए रखा गया है। बमों को भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के एक संग्रहालय में रखा गया है।
2: जवानों महिलाओं की तनोट माता के प्रति गहरी आस्था है। शौर्य, पराक्रम और चमत्कार की ये अद्भुत दास्तान है। जैसलमेर के इस बॉर्डर पर तैनात जवान तनोट माता के दर पर मत्था टेकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हैं और माता की आरती में तो वीर रस ही प्रधान रहता है, जो जवानों को आने वाली हर मुसीबत से लड़ने का हौसला देता है।
0: मंदिर पर एक एक करके कई बम गिराए गए। पाकिस्तानी फौज ने रेतीली जमीन को बारूद से पाट दिया, लेकिन एक भी गोला शोला नहीं बन पाया, विनाश की गर्जना नहीं कर पाया। और वे बम खामोश क्यों हो गए, इसे दुनिया मां तनोट का चमत्कार ही मानती है। कहते हैं कि एक और करिश्मा उस रात हुआ था जब पाकिस्तानी आर्मी पर मानो किसी ने मोहिनी अस्त्र छोड़ दिया हो और वे अपने ही सैनिकों का संहार कर लेंगे। माना जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव से पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी थी। कहा जाता है कि पाक सेना एक दूसरे को ही दुश्मन समझकर लड़ पड़ी थी। माता के मंदिर में घुसे पाक सैनिक आपसी विवाद में ढेर हो गए थे। पाकिस्तान जिस शक्ति से लड़ रहा था उससे जीतना उसके बस में नहीं रहा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बाद में तनोट माता के दर्शन किए, देवी को छत्र चढ़ाया। तनोट माता हिंगलाज माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आवड़ माता भी है मां तनोट का एक नाम।
1: हाँ, देखिए अगर हम इतिहास में जाएं, जो माता का जो जन्म से जाएं, तो आपको पता होगा कि जैसलमेर जिले के जो चलक गांव है वहां के ममड़िया जी चारण थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी और वो हिंगलाज माता जो आज के पाकिस्तान में मंदिर स्थित है उसके वो अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत पूजा की और कहते हैं कि 7 बार उन्होंने यहाँ से हिंगलाज माता मंदिर तक पैदल यात्रा की। फिर माता ने प्रसन्न होकर उनको सपने में दर्शन दिए और उनसे वर मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप मेरे घर में पधारे, आप मेरे पुत्री के रूप में जन्म लें। तो इस प्रकार से आवड़ माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कुल उनके उनके माता के आशीर्वाद से 7 बहनें हुई थी, 7 कन्याएं हुई और 1 पुत्र का प्राप्ति हुआ और यही आवड़ माता आगे जाके तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
0: दावा किया जाता है कि भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने तनोट को अपनी राजधानी बनाया और विक्रम संवत 828 में माता तनोट राय का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति को यहां स्थापित कर दिया था। भाटी राजवंशी और जैसलमेर के आसपास के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तनोट माता की

0: तनुराव भाटी, उन्होंने 847 में एक दुर्ग की वहां पर नींव रखी, एक किले की नींव रखी, और वहां पर उनकी अवध माता की मूर्ति भी वहां पर उन्होंने उस नींव के साथ साथ में प्रतिष्ठापित की। और ये जो दुर्ग है वो 888 में जाके पूरा हुआ, और वहां पर कहते हैं कि माता ने खुद आकर और प्राण प्रतिष्ठा करवाई अपने मंदिर में।
1: भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो चमत्कार मां ने दिखाए, उसने तनोट माता को सरहद की रक्षा पहरी बना दिया। 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन हुआ और तब से ही तनोट माता की देखभाल खुद बीएसएफ करने लगा। तब से इस मंदिर में बीएसएफ का सिपाही ही पंडित होता है। 1965 के बाद तो तनोट माता भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का केंद्र बन गई।
0: माताओं को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना गया है। युद्ध शुरू होने से पहले ही वो माता का के मंदिर में जाके उनको पूजा करते थे, तो तब से ये माता शक्ति का प्रतीक है। और खास करके जब तनोट माता ने 1965 और उसके बाद 1971 के युद्ध में भी जब चमत्कार दिखाए, तो एक शक्ति केंद्र के रूप में इनका भी जो है प्रसिद्धि बढ़ती गई।
1: पूरी दुनिया में शायद किसी भी मंदिर में ऐसी आरती नहीं होती होगी। वीर रस से ओतप्रोत रहती है आरती। इस आरती में भक्ति रस में वीर रस का समावेश है। तनोट माता की आरती में जो गीत गाया जाता है वो भी अनोखा है। ये आरती पूरे एक घंटे चलती

0: बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकसी बनाई है और बीएसएफ के जवान ही अब मंदिर की पूरी देखरेख कर रहे हैं। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है।
1: सुबह शाम एक घंटे की सुबह एक घंटे शाम आरती होती है और आप ठीक बोल रहे हैं क्योंकि लोगों में इस आरती के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, क्योंकि जैसा आप पता है कि एक तो बीएसएफ के कार्मिक है जिनमें वैसे भी जोश होता है और माता के आस्था से उनका जोश और दुगना हो जाता है, तो इसको पावर पैक आरती बोलते हैं। इतने जोश से वो आरती करते हैं कि लोगों में एक नया जोश का संचार भी होता है आस्था के साथ साथ, इसलिए ये आरती बड़ी फेमस है।
0: जवानों का मानना है कि तनोट माता की कृपा से ही उन्हें ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। सुरक्षा बल जब यहाँ से गुजरते हैं या किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं तो यहाँ आकर तनोट माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। बीएसएफ के जवान तनोट माता मंदिर की ऐसी ही सेवा करते हैं जैसे वो भारत माता की करते हैं। उनकी श्रद्धा और आस्था अतुलनीय है।
2: माता तनोट को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, लेकिन युद्ध वाली देवी को रुमाल वाली देवी कहने के पीछे क्या मान्यताएं जुड़ी हैं? चलिए जान लेते हैं।

0: कहते हैं कि 1965 की जंग में हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, लेकिन मां तनोट के चमत्कार का किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।
1: तो जो भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने, वो ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के बम थे जो यहाँ पर गिरे हैं। तो इसी उनमें से कुछ बम को वहां रखा गया ताकि वो आके देख सके कि वास्तव में इस प्रकार के बम इस परिसर में गिरे थे और माता ने उसकी रक्षा की थी।
0: कहते हैं कि पाक सेना के अधिकारी शाहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार से माता के दर्शन की इजाजत मांगी थी,

करीबन 2.5 साल बाद इजाजत मिलने पर शहनवाज खान ने माता के दर्शन करके यहां छत्र चढ़ाया। तनोट माता देवी हैं वरदान।

0: रुमाल बांधने से पूरी होती है मनोकामना। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं और रुमाल खोल देते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालु के रुमाल बंधे हुए हैं।
1: ये एक तरह से आप समय के साथ साथ में लोगों में एक भावना भी आती गई कि यहाँ पर रुमाल अगर बांधेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, और उसके बाद में जब मनोकामना पूर्ण होने के बाद में वो यहाँ के रुमाल खोलते हैं, ऐसा लोगों में आस्था है, तो इसीलिए रुमाल भी एक तरह से परिपाटी चल पड़ी है।
0: यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया है। यह स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने माँ के दर पर पहुंचते हैं। माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। माता तनोट के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास में डूबे भक्त माँ से मनोकामना मांगते हैं और बीएसएफ मानती है कि माँ तनोट के आशीर्वाद से वो और उनका मुल्क महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोगों ने आजादी का उत्सव रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किस तरह से मनाया, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारी संवाददाता श्वेता झा दिखा रही है पूरे कार्यक्रम की झलक।
2: हमारा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमारा देश अमृत काल से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की तरफ, जब विकसित भारत एट 2047 का संकल्प लिए हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा पीढ़ी। आज उसी को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए हम आज नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां कमान आज उन्हीं युवाओं ने संभाला है। तो हर दिल में किस तरह से तिरंगे को लेकर मान सम्मान और खुशी है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुशी है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
3: आगे बढ़ेगा।
4: तो आप लोगों को बोलना, जब मैं हाथ खड़ा करूंगा, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई थी जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी को, लिए बिना गर्दन के मोल। कलम आज उनकी जय बोल। एक बार जोर से बोलेंगे, कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघुद्वीप हमारे तूफानों में किनारे, बुझ बुझा गए किसी दिन, मांगे बिना स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल।
5: आजादी जो हमने पाई है,

0: वीरों का तुम कर लो स्मरण, उन सबको है शत शत नमन।
1: महान मानवों का शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपना जीवन दान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई। फिर नमन करते हैं उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने अपने बलिदान से हमारी आजादी को कायम रखा।
2: इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस का थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा पीढ़ी यानी कि युवा शक्ति। और उसी युवा शक्ति को जानने, उसी ऊर्जा को समझने के लिए इस वक्त हम नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और इनमें ऊर्जा कितनी है, उत्साह कितना है और जोश कितना है, आइए सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम है आपका बेटा?
3: मेरा नाम अर्थ है।
2: अर्थ, आप क्या सुनाने वाले हो?
3: मैं सुनाने वाला हूँ आरंभ है प्रचंड।
2: सुनाओ।
3: आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज चन्न की खरी पे तुम महार दो, आन बान शान आके जान का उतारे यार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज चन्न की खरी पे तुम महार दो, आन बान शान आके जान का उतार यार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तभी मिता प्रमाण है। कौरों की भीड़ हो पांडवों का नीर हो, जो रस का वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी पे ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरी, ये जाके आसमान पे दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज जन्न की घड़ी पे तुम महार दो, आने बान शाने आके जान का उतारे यार इस धनुष के बार पे जो उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
2: वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। आरंभ अगर ऐसा है तो आप सोचिए आगे फिर क्या होगा। कुछ और बच्चे, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा?
4: क्यान।
2: क्यान, अच्छा आप ये बताइए कि आपके लिए इंडिपेंडेंस या फिर आजादी का क्या मतलब है?
4: इंडिपेंडेंस टू मी मींस मेकिंग माय ओन चॉइसेस एंड लिविंग विदाउट फियर।
2: ऐसा आपको लगता है?
4: हाँ।
2: यू आर फीलिंग दैट?
4: Yeah.
2: Are you proud to be an Indian?
4: Yes.
2: Jai Hind.
4: Jai Hind.
2: Jai Hind.
4: Jai Hind.
2: Bharat Mata ki.
5: Jai.
2: Bharat Mata ki.
5: Jai.
2: जोश पूरा हाई है, माहौल पूरा बना हुआ है, बहुत प्रोग्राम्स यहाँ पर होने हैं। एक और बच्ची इस वक्त हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
6: मिश्का।
2: मिश्का, आपको सुना रही है हमें?
6: हाँ जी, एक कुछ पंक्तियाँ हैं मनोज मुंतशिर जी द्वारा लिखित, जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रणाम। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुश्मन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूं जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा है, मैं उस भारत से आती हूं जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद।
2: जोरदार तालियां हो जावे मिश्का के लिए, बहुत कमाल का मिश्का आपने बोला। एक और छोटी सी और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका?
7: वेदा चौधरी।
2: वेदा, आप हमें कुछ सुना रही हो?
7: यस,
2: सुनाइए।
7: भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों जिस लदी है धरती, गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों से लदी है धरती, जिस धरती पर जन्म लिया है माता उसे पुकारेंगे, माता उसे पुकारेंगे, कोटि कोटि है जिसके वासी छाए उस पर क्यों उदासी, कोटि कोटि है जिसके वासी छाए उस पर क्यों उदासी, काप उठेंगे शत्रु सारे मिलकर जब ललकारेंगे, मिलकर जब ललकारेंगे।
2: बोलो भारत माता की
5: जय,
2: वंदे
5: मातरम,
2: वंदे
5: मातरम।
2: तो ये है युवाओं का जोश और युवा शक्ति, लगातार इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, और भी बहुत कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, तो चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक, 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पहली बार लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का गान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को किया याद, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य पुजारी रावल जी ने किया ध्वजारोहण। भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के लगे जयकारे।

70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण। शिवसिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जा रहा है व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की कामना।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। वही वो प्राचीर है जहां से हर साल तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, बल्कि आजादी के उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है। जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर।

0: आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था उन क्रांतिकारियों पे चला था जिन्होंने की फौज को ज्वाइन कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर लड़े थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है उनमें से, वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: के विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो आपके नादिर शाह हो, जितने लोग भी आए, तो यहाँ से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी ऐसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां भी बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह पर अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब से हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत उठता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया, शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना।
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदलकर दिल्ली ले जाएंगे, और वहां पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं, लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरीके से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवान आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवान खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहर बहिश्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था,
4: उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा। तो तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव शाहजहां के दौर में पड़ी थी, जिसे कभी किला-ए- मुबारक के नाम से जाना जाता था, वही लाल किला आज आजाद भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। हर 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: तो भारत जब स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मना रहा है तब पूरे देश के साथ साथ सरहद भी जोश जज्बा और जुनून अपने चरम पर रख रही है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का ऐसा नजारा, जहां बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। भारत माता की जय के नारों से पूरा अटारी वाघा बॉर्डर गूंज रहा है। वैसे तो यहां हर दिन शाम को ध्वजा उतारने के दौरान ये समारोह होता है, लेकिन जब मौका जश्न आजादी का हो तो बीएसएफ के जवानों का उत्साह देखते ही बनता है। इसलिए तो बीएसएफ के जवानों का उत्साह चरम पर है और दर्शकों की देशभक्ति और उसकी अभिव्यक्ति भी अद्भुत नजर आ रही है। तो देखिए ये नजारा है वाघा अटारी बॉर्डर का, जहां दर्शक जो है वो पहुंचे हुए हैं और ये नजारा रोज यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन आज की बात ही कुछ और है, क्योंकि आज जश्न आजादी का उत्सव पूरा देश मना रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से, जब स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मना रहा है पूरा देश और देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं और संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, जहां बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। भारत माता की जय के नारों से पूरा अटारी वाघा बॉर्डर इस वक्त गूंज रहा है। वंदे मातरम से पूरा वाघा बॉर्डर इस वक्त गूंज रहा है और साथ ही साथ आप देखिए नारी सशक्तिकरण की भी तस्वीरें।
1: जोश से भरे हुए, जोश से लवरेज हैं, मतलब जोश उनका हाई है। अब आपको यकीन कि अगर मुझे एंकरिंग ना करनी होती तो आप कुछ में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल।
0: तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग वहां पहुंचे हैं उनका जोश देखते ही बन रहा है। और जोश, वो कहते हैं ना, जोश हमेशा हाई रहता है। जैसे ही आप अटारी वाघा बॉर्डर पर एंटर करते हैं, अपने आप आपके अंदर एक अलग सा जोश जो है वो पैदा हो जाता है और वो जोश देखने लायक होता है, जो जोश हमेशा हाई रहता है। वैसे तो यहाँ हर दिन शाम को ध्वज उतारने के दौरान ये समारोह होता है, लेकिन जब मौका जश्न आजादी का हो तो बीएसएफ के जवानों का उत्साह और भी ज्यादा देखने लायक रहता है। इसलिए तो बीएसएफ के जवानों का उत्साह चरम पर है और दर्शकों की देशभक्ति और उसकी अभिव्यक्ति भी अद्भुत यहाँ नजर आ रही है। देखिए किस तरह से आज जश्न आजादी का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हर किसी के हाथ में आपको तिरंगा नजर आएगा, भले ही थोड़ी सी गर्मी हो, लेकिन ये सब झेलते हुए जो दर्शक है वो वहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है वो बैठे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। और देखिए किस तरह से बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो हो रही है और स्वतंत्रता दिवस पर ये रंगारंग कार्यक्रम जो है हो रहा है। आज वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं तिरंगा लेकर। सबके जबान पर सिर्फ एक ही नारा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बीएसएफ के जाबाजों का जोश यहाँ आप देखिए किस तरह से जो जवान हैं वो गा रहे हैं, नाच रहे हैं और जश्न आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। तो ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में जश्न आजादी की रौनक है। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को किया याद। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। जश्न आजादी के मौके पर डोंबिवली में 35,000 वर्ग फीट की तिरंगा रैली, बना नया विश्व रिकॉर्ड। बनारस में शहनाई से देशभक्ति तरानों की गूंज। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार। आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा। मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक। स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी।

0: सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में आयोजित मुख्य समारोह की अगुवाई की और 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित उन्होंने किया। आज के दिन एक और मायने में बेहद खास आज को माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही थी। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने फूलों की पुष्प वर्षा की। फिर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। लाल किले पर हुए समारोह की हर खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से आजादी का उत्सव आज मनाया गया। जश्न आजादी का पर्व आज पूरा देश मना रहा है। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके पर ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। हेलीकॉप्टर से लोगों पर पुष्प वर्षा हुई। वंदे मातरम का गान आज पहली बार लाल किले से किया गया। तो देश आज पूरे जोश और उत्साह के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हर घर तिरंगा, हर मन में तिरंगा है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको अटारी बॉर्डर की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का जोश देखते ही बन रहा है। किस तरह से जवान जो हैं वो पूरे उत्साह और जोश के साथ आज जश्न आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। तो अटारी वाघा बॉर्डर पर जश्न आजादी का कार्यक्रम चल रहा है, जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी वहां हो रही है, जहां हजारों की संख्या में दर्शक जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप देखिए हर किसी के हाथ में आपको तिरंगा नजर आएगा और सबकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा होगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें देखिए किस तरह से दर्शक जो है वहां पहुंचे हुए हैं। वैसे तो ये नजारा आपको रोज देखने को मिलेगा, लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पूरा देश मना रहा है जश्न आजादी का पर्व और उस खास मौके पर वहां कई कार्यक्रम होते हैं। बीएसएफ के जवान वहां गाना गाते हैं और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार वहां होते रहते हैं और इस खास मौके पर आज काफी लोग वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। भले ही थोड़ी गर्मी है, लेकिन इन सब के बावजूद जो जोश है ना वो भारतीयों में सबसे ज्यादा है। और आप देखिए जोश हाई है, हाथों में तिरंगा है और बीएसएफ के जवान आपको एक तरफ दिखेंगे किस तरह से बीटिंग द रिट्रीट समारोह देखते हुए हजारों लोग वहां पहुंचे हुए हैं और इन जवानों को देख रहे हैं जो रोज सरहद पर खड़े रहकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से, जब हर घर आज जश्न का माहौल है, हर घर तिरंगा लहरा रहा है और उसी बीच अटारी बॉर्डर से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है। अब देखिए किस तरह से लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग शहरों से लोग अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और आज का दिन तो अपने आप में खास है। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जश्न आजादी का माहौल है और जोश इन सब से ऊपर है। आप देखिए बीएसएफ के जवान रात दिन वहां खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हमारे जवान, हमारे सेना के जवान, और उस पर आज एक खास मौका। तो आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सुबह लाल किले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए रंगारंग कार्यक्रम भी वहां चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं और जवान भी साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो अटारी बॉर्डर पर भव्य समारोह की तस्वीरें। तो जब स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और 80वीं सालगिरह मना रहा है पूरा देश, तो सरहद पर भी जोश देखने लायक होता है, जज्बा देखने लायक होता है और जुनून तो अपने चरम पर होता है। तो अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का ऐसा संगम

0: को मिस कर सकते हैं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच ये नज़ारा बाघा बॉर्डर से, बीएसएफ के जवान वहाँ मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से बीएसएफ के जवान बीजिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। हर साल ये सेरेमनी होती है और इस साल ये सेरेमनी और भी ज़्यादा बेहद खास हो जाती है क्योंकि इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है। हमारे साथ कबल जी संधू जी जुड़ गए हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि इस वक्त क्या माहौल है, क्या नजारा है और कितना जोश है।
1: जोश हमेशा से अटारी वाघा बॉर्डर पे रहता है। 80 स्वतंत्रता दिवस है लेकिन इस बार हमने देखा किस तरह से वंदे मातरम के नारे से और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में ये ऑडियंस आई। आपको बता दें देश भर से ये ऑडियंस आई है, तकरीबन 30,000 लोग हैं और आपको बता दें शनिवार का दिन है इसी वजह से ज्यादा लोग हैं। और जो रंगारंग प्रोग्राम आप सीधे अगर सामने देखें तो डीजीपी है प्रवीण कुमार, आपको ये मराठी डांसर्स टेकनपुर ग्वालियर से नजर आ जाएंगे। तो ये आप देखिए ये जो पहला कार्यक्रम है वो अब ऑफिशियली शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ऑडियंस में एक बहुत बड़ा उत्साह है। गर्मी को काफी लोग झेल रहे हैं लेकिन अहम बात है भारतीय फ्लैग हम बोल सकते हैं वो लोगों के हाथों में है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे अगर आप देखें तिरंगा झंडा भी नजर आएगा और आपको लोगों में उत्साह उतना ही नजर आएगा। आपको बता दें बहुत उमस है लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग देश भर से आए हैं अमृतसर में और अटारी वाघा। और ये आपको बता दें कि ये जो ट्रेडिशन है ये काफी समय से चलता आ रहा है और आपको बता दें 1947 के बाद अगर हम बात करें 11 अक्टूबर को ये यहाँ पर ब्रिगेडियर मोहिंद्र सिंह चोपड़ा है उन्होंने यहाँ पे ये एक सेरेमनी शुरू की थी और उसके बाद 1959 में डेली बीटिंग रिट्रीट हुई और पहली दिसंबर 1965 को बीएसएफ ने चार्ज लिया। और आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद जो गेट है वो लगातार बंद रहे हैं तो वहाँ पे आपको गेट बंद नजर आएंगे लेकिन यहाँ पर आपको जो जोश है चाहे हम बीएसएफ में बात करें या फिर बात करें लोगों में उत्साह उतना ही है। और ये देखिए एकता अखंडता की अगर हम बात करें मराठी में डांसर्स हैं वो अभी अपनी कला दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है एक अहम बात है, एक अहम मैसेज है और जाहिर सी बात है जेन जी है, जेन अल्फा है, ये पूरा प्रोग्राम लीड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टैलेंट पूल है जो अब आप अटारी वाघा बॉर्डर पे देख सकते हैं। और आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करें गेट के उस पार पाकिस्तान है लेकिन इस बार ना कोई मिठाई भेजी गई ना कोई हैंडशेक हुआ लेकिन बीजिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो लगातार चल रही है लेकिन मित्रता कोई नहीं है। और उस बीच में 80वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। आपको बता दें देश भर से जो कार्यक्रम है अगर हम बात करें कश्मीर का प्रोग्राम होगा यहाँ पे, दंदा पट्टा जिम्नास्टिक्स फीचर किया जाएगा, घूमर होगा, कराटे होगा, डॉग शो जो कि बहुत लोकप्रिय है वो भी किया जाएगा और जो सीमा प्रहरी हैं वो भी आएंगे। और हम आपको बता दें 6:30 से 7 के बीच में तब बीटिंग रिट्रीट होता है जहाँ पे जो झंडा है जो दोनों देशों के झंडे हैं वो लोअर किए जाते हैं और उसके बाद 7 बजे तक ये कंक्लूड किया जाता है। लेकिन एक नज़र आपको दिखाते हैं यहाँ पर देश भर से लोग आए, आप ये जो मिस देख रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोशिश करते हैं बात करने की। कहाँ से आए आप?
2: हम रोहतक हरियाणा से आए मैम।
1: हरियाणा से आए बच्चे के साथ आए, गर्मी खूब है, उत्साह
2: बहुत हाई है, भारत माता की जय।
1: कितने उम्र की है?
2: 3 साल की गुड़िया है मेरी है। ये भी कह रही थी पापा मैं देखने जाना है तभी हम आए हैं अमृतसर स्पेशल छुट्टी लेकर।
1: छुट्टी लेकर आए हैं लेकिन क्या बोलना चाहेंगे देशवासियों को गर्मी? अब आप देखिए अगर एक नजर दिखाएं तो कितने लोग पंखा यहाँ पे खिला रहे हैं

0: करें तो ये जो प्रोग्राम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और स्क्रीन लगाई गई हैं और पाकिस्तान का जो झंडा है वो आपको नजर आएगा उस तरफ और पाकिस्तान की ऑडियंस, लेकिन भारत का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। और अगर हम बात करें, आपको हर साल होता है लेकिन इस साल कुछ खास जरूर है, 80th है इंडिपेंडेंस डे
1: जी।
0: और अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर हम बात करें देश भर से लोग आते हैं और उसी बीच में जो उत्साह है वो देखते बनता है। कहाँ से आई हैं आप?
2: हम दिल्ली से आए हैं, नई दिल्ली से, और हम लोग कल आए थे, हम लोगों ने गोल्डन टेम्पल विजिट किया और आज हमें यहाँ बाघा बॉर्डर पे आना था। हमने इसकी बहुत एक साल से प्लानिंग कर रखी।
0: इससे पहले कभी आए?
2: कभी नहीं आए, टुडे इज द फर्स्ट टाइम।
0: आप जेन जी हैं कि जेन अल्फा?
3: जेन जी।
0: जेन जी हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने रोष प्रदर्शन किया जंतर मंतर, वहाँ के कंपैरिजन यहाँ पे आप क्या देखती हैं, क्या उत्साह है और क्या फीलिंग है?
3: यहाँ पर ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा, मेरे को यहाँ पर जोश ज़्यादा फील होया। ऑनेस्टली इंडिया के लिए सपोर्ट वो ज़्यादा बेस्ट है।
0: और क्या ये पहली बार आई
3: है? पहली बार आई हूँ।
0: पहली बार
2: बेटी है मेरी।
0: और आपको हम एक बार फिर बता देते हैं कि जो लोग हैं जगह जगह से आए हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई कन्याकुमारी से आया है, तो देश भर से आए हैं। और अभी हम आपको बता रहे थे कि रोहतक से आए हुए हैं, कोई आया हुआ है दिल्ली से। तो हमेशा एक चीज़ जो देखने को मिलती है और सरहद पे आके जिस तरह का जोश बनता है, आपको बता दें एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, एक जन समूह देखने को मिलता है। और आप ये देखिए तकरीबन 25,000 की सीटिंग है, मगर दूर दूर तक जहाँ नज़र आए 30,000 से 35,000 लोग हैं वो आज आए हैं। और इसका मतलब यही है कि लोग जुड़ना चाहते हैं और ख़ास तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये देखिए यहाँ पे अगर आप दिखा दें कि जो एक प्रोग्राम लाइंड अप है, चाहे मार्शल स्किल्स की बात करें, चाहे डॉग शो की बात करें, चाहे मोटरसाइकिल पे आती हुई महिला प्रहरी की बात करें, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हिट है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं हम रंगारंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जो कि लोगों को काफ़ी भाता भी है। और वहाँ पे अगर हम बात करें जो गिद्दा परफॉर्मेंस है वो डीएवी कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। और आप ये देखिए तालियों के गूंज के बीच में एक गिद्दा परफॉर्मेंस किया जा रहा है। उसी बीच में अगर आपको बताएं तो लोग हैं गर्मी झेलते हुए यहाँ पर आए हैं और खास तौर पे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये ऐसे दिन है जहाँ पे हजारों की तादाद में आते। और अमृतसर उस टाइम आपको बुकिंग मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता। तो एडवांस प्लानिंग के साथ जो लोग चलते हैं और इसी का इंतजार लोग करते हैं कि कब 15 अगस्त आए और कब यहाँ पर आए। और इस वक्त क्योंकि शनिवार है तो लोग हैं वो छुट्टी लेकर भी आए हुए हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ा उत्साह है लोगों में। और आपको बता दें कि शुरुआत वंदे मातरम से की गई है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो लोगों के लब पर वंदे मातरम था और उसके बीच में ये कार्यक्रम अब चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 6:30 से 7 के बीच में तभी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आखिरकार होती है, लेकिन उससे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सल जो पर्सनल है वो अपनी कला भी दिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स दिखाते हैं, मोटरसाइकिल पे अपना जो कर्तव्य है वो उसको दिखाते हैं। और ये जो समूह है लोगों का, जन समूह, वो जाके जुड़ता है और एकता में अखंडता, यही एक बड़ी बात है जहाँ पे भारतवासी आके जुड़ जाते हैं।
1: तमाम तस्वीरें तो आप लगातार दिखाई रही हैं कमल जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लगातार जो हम ये रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे पहले गणेश स्तुति की और अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भांगड़ा गिद्दा लड़कियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की भी ये साफ साफ तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियां जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एकता और एकजुटता भी हमें उसकी तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है इसमें। और कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसका समापन कब तक होगा? जैसे कि आपने बताया 6:30 से 7 जो है वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी, तो क्या 7 बजे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा या उसके बाद भी कार्यक्रम चलेगा?
0: देखिए औपचारिक रूप से 4:30 से 7 बजे के बीच में ये पूरा कार्यक्रम होता है और बीटिंग रिट्रीट जैसे ही खत्म होती है, यानी लोअरिंग ऑफ फ्लैग जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही वो लोअर ऑफ फ्लैग करते हैं और उसके उसके बाद 7 बजे ये कंक्लूड किया जाता है। जाहिर सी बात है कुछ मीट द प्रेस चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन जो जनता है आपको बता दें तकरीबन 1-1.5 बजे से आने लगती है, तो लोग अपनी पसंदीदा सीट लेना चाहते हैं, आगे वाली फ्रंट सीट लेना चाहते हैं। और आपको यही दिखा दें, यही जो एरिया सेक्शन है वो VIP एरिया है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लोग आते हैं वो खास तौर पे जगह जगह से आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर हम बात करें, जो लोग हैं वो एक साथ आने की कोशिश करते हैं। आपको इनमें कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। और अगर बात करने की कोशिश करें, where are you from?
4: I'm from Russia.
0: You're from Russia?
4: Yes.
0: And, what do you have to say about this entire scenario coming here on the Independence Day, the 80th Independence Day?
4: You know, I've been here like not very long time, but I can already see it's very impressive. A very big event for sure.
0: Russia is such a cold country, you must be really sweating it out.
4: Yeah, it's true. Even though right now it's summer, so it's not really cold.
0: Alright, we'll just try and get a sense from people. मैम आप कहाँ से आई हैं?
5: दिल्ली से।
0: दिल्ली से आई हैं। आप बताइए कि पहले भी आई हैं यहाँ पे?
5: बहुत साल पहले आई थी, आज मैं अपनी डॉटर के लिए आई हूँ।
0: तो आप ये जरूर बताइएगा क्या फीलिंग आती है, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ का सिनेरियो देखे आप यहाँ पे आके इस साल क्या
5: अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पर आकर?
6: पैसा दे रहे हैं,
5: बहुत अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पे आकर। पूरा पैट्रियटिज्म का पूरा यहाँ पे माहौल जो है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। जो जंतर मंतर पे हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स तो बहुत कम थे। और
0: तो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम लगातार चल रहा है, और यही एक ब्यूटी है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं, ऑडियंस में भी आपको महिलाएं नजर आएंगी, और यही एक बहुत बड़ी बात है। जहां पे आपको बता दें कि सालों साल लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, और एक अच्छी बात जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने की है, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम में जो सिविलियन हिस्सेदारी करना चाहते हैं, इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो तो कर ही पाते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम में फाइनल कट नहीं ले पाते, यानी जो ऑफिशियल प्रोग्राम में नहीं होता है, 2-3 बजे से वो भी अपना कलाकृति दिखा सकते हैं, अपना कला दिखा सकते हैं, और उनको अलाउ किया जाता है, ये स्टेज पूरा दिया जाता है, उससे ऑडियंस भी एंगेज रहती है, और लगातार ये जो बच्चे हैं और खास तौर पे जेन जी हैं या जेन अल्फा हैं, ये लगातार अपनी योग्यता भी दिखाते हैं और अपनी कला भी दिखाते हैं लोगों के सामने।
1: कमल जी, शायद ये कहना गलत होगा कि जब आप वाघा अटारी बॉर्डर पर होते हैं तो जो फीलिंग होती है, वो जो जोश होता है, वो सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं तो बेशक आपको भी गूज़बम्स आते होंगे, जैसे ही दोनों तरफ की फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो पूरा का पूरा सीन ही कुछ अलग हो जाता है। और ऐसे में चाहे वो जेन अल्फा हो, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो, आई थिंक सबकी फीलिंग जो है वो एक जैसी रहती है। तो ऐसे में आप तो वहाँ सभी लोगों से मिल रही हैं, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो जेंजी हो, चाहे मिलेनियल्स हो। आप ये बताइए कि आपने कैसा फील किया, क्या सबके फीलिंग्स अलग हैं, क्या सबके थॉट्स अलग हैं, या वाघा अटारी बॉर्डर पर आकर सबका जोश एक जैसा हाई ही रहता है?
0: देखिए, मैं तो 2 दशक से आ रही हूँ, और हर साल आपको बता दें कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, और क्योंकि हमने रेड फोर्ट में भी देखा है, लेकिन जो रेड फोर्ट का जो प्रोग्राम होता है जहाँ पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वहाँ पे ऑडियंस पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ऑडियंस बिल्कुल अप क्लोज होती है, यानी रोड से थोड़ी ही दूर होती है, और इसी वजह से ये बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से जो ऑडियंस है वो जुड़ती है, और एक क्लोज सेंस मिलता है कि पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल इतना नज़दीक है। यहाँ से बात करें लाहौर का, कुछ किलोमीटर दूर ही डिस्टेंस बनता है, और आपको बता दें खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, और उसके बाद भी लगातार किस तरह से ड्रोन एक्टिविटी हुई है, ड्रग्स आना, वेपन आना, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रही है। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि एक तो ये ऑडियंस को जोड़ता है, दूसरा आप पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं, और यही एक जो चीज़ है, और जो लोग यहाँ पे डिसिप्लिन देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल का, जवान्स का, जो कमांडोज आते हैं और उनकी जो लगातार, अब हालांकि उसमें भी कई लोग आलोचना जरूर करते हैं कि कई सालों से ये चल रहा है, लेकिन अगर आप ऑडियंस देखें और ये पूरा हाउस फुल, आप अगर शोर सुन सकते हैं तो आपको एक चीज जरूर समझ आएगी कि लोग ये देखना चाहते हैं। और आपको ये देखिए मार्शल आर्ट्स के ये आपको अब नजर आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खूब जो लोग हैं वो आके देखते हैं। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, ये दत्त पट्टा है और खास तौर पे मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंस है और इसके बाद जिम्नास्टिक्स किया जाएगा, तो ये एक ही मंच पे दिखाता है कि भारत के पास भाषाएं इतनी हैं, इतने राज्य हैं और उसी बीच में इतनी कलाएं हैं। और जाहिर सी बात है इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है हर साल और ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है, और जाहिर सी बात है इसमें पंजाब का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। और हमने हमेशा देखा है कि बहुत ज़्यादा एक लिस्ट बनती है और जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन इतना स्टिफ होता है जहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एक से बढ़कर एक कॉलेज आता है, एक से बढ़कर एक ग्रुप आता है और यहाँ पे वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जाहिर सी बात है चाहे सेल्फी कल्चर की बात करें जहाँ पे अटारी वाघा बॉर्डर पे वो दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना नज़दीक है, या फिर बात करें यहाँ पर आके एक एहसास लेना कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल है वो काम करते हैं। जाहिर सी बात है अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसमें BSF का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खास तौर पे कभी भी बॉर्डर टेंशन में हो या कुछ हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अपने जवान तैनात रखता है, और यहीं से एक इंस्पिरेशन मिलती है एक तो अप क्लोज देखना कि किस तरह से वो लगातार डिसिप्लिन से करते हैं। लेकिन
1: जी कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।

0: सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हांक। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देशभर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को किया याद, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र किया अर्पित। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। जश्न आजादी के मौके पर डोंबिवली में 35,000 वर्ग फीट की तिरंगा रैली, बना नया विश्व रिकॉर्ड। बनारस में शहनाई से देशभक्ति तरानों की गूंज। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार, आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा। मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज वो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: '62 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। '70 का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इसराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोड व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
2: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
2: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
0: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से
2: भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
1: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
2: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर बेचे, इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं, इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
1: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए, इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
2: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भारतीय नौसेना आज नए कीर्तिमान गढ़ रही है। हमारे पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर दुश्मन के परखचे उड़ाने वाली मिसाइलें हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास स्वर्णिम है। हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था।
0: ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, उस समय इस सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता के साथ सीधा व्यापार किया करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ सीधा व्यापार होता था और ये पूरा का पूरा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही हुआ करता था और उस समय जहाजों की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी।
2: 1960 के दशक में जब गुजरात के लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला था, जिससे ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है, यानी ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा है और बाद में चोल वंश के राजा और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेना बनाई।
0: चोल वंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और इनके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दोनों ने मिलकर नौसेना का खूब विकास किया था।
2: दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन हुआ करता था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार हुआ करता था और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजना पड़ते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्रीविजय राजवंश से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जीत हासिल की। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बड़ी भूमिका थी। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवी में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इनमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास एक ही एयरक्राफ्ट है। यानी इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं और भारत की तटीय रेखा लगभग 11,098.81 किलोमीटर लंबी है।
0: भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। दरअसल अभी तक जितने भी प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे थे वो हिमालयी क्षेत्रों में किए जा रहे थे, जहां चीन एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमेशा भारत के लिए खड़ा रहता है। लेकिन अब क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति से समंदर में भी अपना विस्तार कर रहा है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करे, उसमें आत्मनिर्भर बने और चीन को भी करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे।
2: INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट करियर है, यानी कि ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट करियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है।
0: हिंदुस्तान की आर्टिलरी का इतिहास लगभग 196 साल पुराना है, जब 1827 में पहली बार बॉम्बे आर्टिलरी की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद इसका खूब विकास हुआ। इसके 3 डिविजन्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए तोप की तो वो मीडियम डिविजन का हिस्सा है।
2: भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई देता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मन पर हमला बोलना पड़ा, इसीलिए जरूरत महसूस हुई दूर से ही हमला करने वाली तोप की, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया।

0: कहा जाता है कि आराम हराम है। कम से कम रक्षा के क्षेत्र में भारत इस नीति के साथ ही आगे बढ़ा और यही एक बड़ी वजह है कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ चुका है। आज हम रक्षा क्षेत्र में किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं है, बल्कि कई दूसरे मुल्क हम पर डिपेंड है। आज भारत में ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मुल्क भी उन्हें खरीदने के इच्छुक हैं। यानी भारत दूसरे देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। ऐसा ही एक हथियार है धनुष, जो कि लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है और ये भारत ने ही विकसित की है। धनुष एक होविट्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। डीआरडीओ 155 mm तोप को हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंट करके शूट एंड स्कूट प्रणाली विकसित कर चुका है। इसके साथ ही पूर्णतः स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट गाइडेड सिस्टम की रेंज और मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भविष्य के युद्धों को देखते हुए डीआरडीओ की प्रयोगशाला पारंपरिक बारूद के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हाइपरसोनिक स्पीड पर गोले दागने वाली रेलगन तकनीक की बुनियादी सब सिस्टम्स विकसित कर चुकी है।
1: भारत आत्मनिर्भर हो रहा है खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में और इसी कड़ी में भारत ने अपने पहले स्वदेशी लाइट वेट टैंक जोरावर को भी रोल आउट कर दिया है। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि डीआरडीओ और एलएनटी दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और लक्ष्य है साल 2027 यानी कि 2027 में से पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की योजना है।
0: स्वदेशी टैंक जोरावर को भारत चीन सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव और पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की ओर से तैनात टाइप 15 लाइट टैंकों को करारा जवाब देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। महज 19 महीनों के रिकॉर्ड समय में विकसित हुआ जोरावर 25 टन का टैंक है जो बेहद ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन बर्फीले रास्तों पर भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है।
1: भारत की आर्टिलरी यानी कि तोपखाना विभाग में पूरी तरह से स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर सीधे तौर पर चलते हुए भारत ने ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना लिए हैं कि भारत अब किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत के पास अपनी तोपें, अपने हथियार, अपनी गन्स, तमाम साजो सामान भारत के पास खुद का मौजूद है।
0: आर्टिलरी के साथ साथ भारत ने वायु शक्ति में भी इजाफा किया। मिराज और मिग के दौर से आगे निकलकर आज भारत खुद का फाइटर जेट तैयार कर रहा है। तेजस फाइटर जेट के साथ भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वहीं राफेल की शक्ति भी भारत के पास है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत के पास तीनों तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें S-400 सबसे ताकतवर है और अब भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज या स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार करने में जुटा है। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। 2 लेयर का हवाई रक्षा कवच होने से ये फायदा होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया, पहला बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा अपनी तकनीक को विकसित करना।

डीआरडीए ने साल 2080 में इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत आकाश मिसाइल पर काम करना शुरू किया। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई और आज आकाश मिसाइल पूरी तरह से अपनी सेवाएं भारत को दे रही। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पेट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है।

0: भारत जानता है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सैनिकों के साथ नहीं बल्कि तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। यानी जिस देश के पास सबसे अच्छी तकनीक वो देश रण क्षेत्र में उतना ही भारी होगा। और इसीलिए भारत ने भी तकनीक पर ज्यादा जोर दिया और ऐसी ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे हमारे सैनिकों का कम से कम नुकसान हो, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, डेटा केंद्रित प्रणालियों और इंटीग्रेटेड कमांड पर आधारित तमाम तकनीकें विकसित की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणि के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल अब थल, नभ और जल के पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़कर मल्टी डोमेन ऑपरेशन जैसे कि साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। भारत अपनी आजादी के बाद का सबसे बड़ा सैन्य सुधार लागू करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत सेना की 17 अलग अलग कमानों को मिलाकर 3 प्रमुख एकीकृत थिएटर कमानों में बदला जा रहा है। एक ही कमांडर के नीचे काम करने से फैसला लेने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाएगा। चीन, पाकिस्तान और समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित 3 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे। पहला वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो प्रमुख रूप से पाकिस्तान पर फोकस करेगा। दूसरा है ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये मुख्य रूप से चीन पर फोकस करेगा। और तीसरा मैरीटाइम थिएटर कमांड, जिसके पास हिंद महासागर के बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली का जिम्मा होगा। अंडमान निकोबार का मौजूदा ट्राई सर्विस कमांड CDS के अधीन है और इसे ईस्टर्न या मैरीटाइम में शामिल करने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन मुख्य खतरा है। पाकिस्तान और चीन का सामना नॉर्दर्न कमांड को कैसे हैंडल करना है, ये भी एक चुनौती है।
1: आज के जमाने में कोई भी युद्ध मिलकर लड़ा जाता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी मिलकर युद्ध लड़ते हैं, तभी जीत हासिल हो पड़ती है। ऐसे

0: नाइट टाइम कमांड होगी और जो भी ऑपरेशन होंगे ये इन्हीं के द्वारा संचालित किए जाएंगे।
1: थिएटर कमांड का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की आए। इस मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद कारगर साबित होगा। थिएटर कमांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो और तीनों सेना एक मशीन की तरह काम कर सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सभी थिएटर कमांड्स के ऊपर होगा और सरकार को सैन्य सलाह देना मुख्य बिंदु होगा। वहीं हर थिएटर कमांड का नेतृत्व एक थिएटर कमांडर करेगा। ये कमांडर तीनों सेनाओं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में से किसी भी सेवा का 4 स्टार या फिर 3 स्टार जनरल हो सकता है। थिएटर कमांडर सीधे CDS को रिपोर्ट करेंगे। इससे तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका युद्ध लड़ने के बजाय अपनी अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने और संसाधन जुटाने तक सीमित हो जाएगी। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के मुताबिक दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है।
0: देखा जाए तो थिएटर कमांड CDS के अंडर काम करेंगी, जो प्रधानमंत्री से जो पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलेगी उसके द्वारा काम करेंगी। इनके नीचे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्ट्रक्चर रहेंगे, जहाँ जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उस प्रकार के ट्रुप्स का फोर्सेस का इस्तेमाल करके युद्ध में विजय हासिल की जा सकती है।
1: दुश्मन की साजिश हो या फिर हमले को नेस्तनाबूद करने में थिएटर कमांड की रणनीति बेहद कारगर साबित होती है। यही वजह है कि जल थल और नभ तीनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना निगरानी और साइबर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि भारत इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि आने वाला युग AI का है और आने वाले समय में किस तरीके से AI रण क्षेत्र में युद्ध की तकदीर बदल सकता है ये भारत को अच्छे से पता है। खास तौर पर ड्रोन्स पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ऐसे ऐसे AI ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं जो बड़े पैमाने पर निगरानी करके डेटा इकट्ठा करके हमारी सेना को तुरंत पहुंचाएंगे ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ड्रोन स्वॉर्म तकनीक कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन के साथ साथ भारत लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है। सेना का मेन फोकस अब सिर्फ भारत में ड्रोन असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वदेशी डिजाइन, घरेलू कंपोनेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक होना भी है। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के भीतर विशेष ड्रोन रेजिमेंट स्थापित करने की योजना बनाई है। ये रेजिमेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्वॉर्म ड्रोन्स और कामिकेज ड्रोन्स का संचालन करेगी। नागास्त्र 1 और अग्निवैग भारतीय सेना के आत्मघाती और लड़ाकू ड्रोन हैं, जो दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना को अपनी पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन फ्लीट नागास्त्र 1 की डिलीवरी मिल चुकी है, जिसे रणनीतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC के पास अग्रिम चौकी पर तैनात किया गया है। ये सैनिकों को 15 से 40 किलोमीटर के भीतर बिना अपनी जान जोखिम में डाले दुश्मन के बंकर को तुरंत उड़ाने की ताकत देता है।
0: देखा जाए तो भारत सरकार ड्रोन्स के ऊपर काफी महत्व दे रही है, क्योंकि आज का युद्ध ड्रोन्स का युद्ध है, रॉकेट का युद्ध है, मिसाइल का युद्ध हमने देखा है। यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ईरान के युद्ध में किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने एक तो बाहर से इम्पोर्ट में ड्रोन के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है। कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे उनका स्वदेशीकरण करने के लिए उनमें परमिशन दी गई ताकि देश में ही फिर बन सके। साथ साथ में भारत की जो कमी है प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें हमारे यंग और स्टार्टअप्स भी काफ़ी कर रहे हैं, और हर तरह के ड्रोन, चाहे वो सर्विलेंस ड्रोन हो, कामिकाजी ड्रोन हो, अटैक ड्रोन हो, हर तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए खुद को नेटवर्क केंद्रित, डेटा संचालित और नेटवर्क सेंट्रिक एंड टेक ड्रिवन फोर्स में बदल दिया है। अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और AI आधारित युद्ध प्रणालियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज भारत अपनी सीमाओं पर खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, डटकर खड़ा है। भारत दुनिया को ये बता रहा है

0: कि अब भारत को रक्षा के क्षेत्र में किसी की जरूरत नहीं है और भारत खुद की रक्षा खुद कर सकता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे के लिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: तो आज भारत जब स्वतंत्रता दिवस की 80 सालगिरह मना रहा है, तब पूरे देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से, जहां देखिए डॉग शो जो है वो चल रहा है। और इस वक्त डॉग शो की ये तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से, लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे थे वाघा बॉर्डर से, और उस बीच डॉग शो की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से डॉग्स जो हैं वो तमाम करतब दिखा रहे हैं। और बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का ये नज़ारा है। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है और जश्न आज़ादी की तस्वीरें वाघा बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और देखिए लगातार ये तस्वीरें वाघा बॉर्डर से, जहां एक तरफ आप देखिए कि महाराष्ट्र से नवारी साड़ी पहने हुए जो लड़कियां हैं ये लेजियम कर रही हैं, गणेश स्तुति इन्होंने इससे थोड़ी देर पहले की, भांगड़ा किया गया, गिद्धा किया गया, हरियाणा से भी संस्कृति के रंग आपको देखने को मिले। और उस बीच ये बीएसएफ के जवान जो हैं वो भी तमाम करतब करते दिखाई दिए। मार्शल आर्ट्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मार्शल आर्ट्स किया जा रहा है। और जश्न आज़ादी का ये दिन बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम जो है ये वाघा बॉर्डर पर चल रहा है। और हमारे साथ कबलजीत जुड़ गई हैं फिर से, लगातार वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अटारी वाघा बॉर्डर से और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की तमाम तस्वीरें कबलजीत हमको दिखा रही हैं। तो इस वक्त का नज़ारा क्या है, और जैसे कि कबलजीत आपने बताया था कि डॉग शो जो है वो शुरू होने वाला है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि डॉग शो की शुरुआत हो चुकी है, तो कितना खास और कितना अलग है ये बाकी शो से?
1: देखिए आपको बता दें ये जो हिस्सा है पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये सबसे मनपसंद है क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क होती है, एक ह्यूमन और एनिमल की होती है। और ये ट्रेन डॉग्स हैं, ये फोर लेगेड सोल्जर हैं। अगर आप देखें किस तरह से इनका जो कर्तव्य है वो, आप ये देखिए कि बिल्कुल एक प्रिसिशन के साथ इनका अपना करना। और ख़ास तौर पे ये देखिए, ये इंडियन नस्ल है, इंडी डॉग्स किए जाते हैं इनको कहा जाता है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से ये करतब दिखाते हैं लगातार, आपको बता दें तो अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है ये किसी एक सोल्जर से कम नहीं है। और इसी वजह से इनको फोर लेगेड सोल्जर्स किया जाता कहा जाता है। और आपको बता दें टेकनपुर है वहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि पहले जो विदेशी नस्ल थी उसके जो डॉग्स थे और उनकी तरफ से भी शो किया गया, और ख़ासतौर पर वहाँ पर किस तरह से डिटेक्शन होता है। और आपको बता दें चाहे हम बात करें एक्सप्लोजिव की या ड्रग्स की, वहाँ पे काफ़ी काम आते हैं। लेकिन जो इंडी नस्ल है वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो जलवा है वो जरूर दिखाया है, और इसी वजह से उन्हें इंग्रेन किया गया है। आपने अक्सर भी देखा होगा कि जहाँ पे मिलिट्री कैंप्स होती है उसके आसपास जो लोकल डॉग्स होते हैं वो एक तरह से सुरक्षा घेरा और चेतावनी भी माना जाता है, लेकिन अब उन्हें फॉर्मली क्योंकि इंडक्ट किया गया है और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चाहे हम बात करें, कई जगह कहते हैं कि ड्रोन डिटेक्शन तक में उनका जो सहयोग है वो काफ़ी होता है। और लगातार हम जो आपको बता रहे हैं कि डॉग शो के बाद सीमा प्रहरी होगी जहाँ पे महिला सोल्जर्स हैं वो आएंगे, उसके बाद जवान हैं जहाँ पे मोटरसाइकिल, आगे आपका मोटरसाइकिल की एंट्री अब हो चुकी है और डीजी बीएसएफ से परमिशन सी की जाएगी। और तो परमिशन मिल चुकी है और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मोटरसाइकिल से जवान। और आपको बता दें जब हम बात करते हैं आसपास की, जब हम बात करते हैं दिल्ली की, वहाँ पे जो सड़क है वो काफ़ी खुली है, लेकिन जो अटारी वाघा बॉर्डर है वहाँ पे डिस्टेंस है वो काफ़ी नैरो है। अब आपको बता दें तकरीबन 30-35 के अंदर है इतने ही और एक क्लोज्ड क्वार्टर में परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह लोगों का बना हुआ है। और आपको बता दें ये बहुत अहम कड़ी है खास तौर पे, और बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट ने लगातार दूसरे तीसरे साल है इसको यहाँ पर किया है। और जो लोग हैं उसे देखने जरूर आते हैं। और आपको बता दें कि पुरुष हैं, उसके अलावा महिलाएं भी हैं। और आप ये देखिए मोटरसाइकिल आता हुआ, और आपको यहीं पे एक स्किल नजर आएगी, सल्यूट करते हुए। आप ये देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, आगे पाकिस्तान है, और आपको दिखा दें वहां पे गेट है। और ये देखिए एक बेहतरीन स्किल महिला सोल्जर की तरफ से। और आपको बता दें ये जो डिस्टेंस है, हमने जैसे आपको बताया 50 फीट के करीबन है, और यहाँ पे ही इनको ये कला दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए लगातार भारतीय झंडा हाथों में लिए हुए हैं। और आपको बता दें और पोल पे और लैडर पे तो आप मान सकते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त है कि लगातार वो इस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो दे सकते हैं। और आप ये देखिए एक साथ पिरामिड बनाते हुए महिलाएं अपना परचम लहराती हुई, तो आपको ये पिरामिड नजर आया। और उसके बाद आप ये देखिए लगातार एक और महिला सोल्जर, और यहाँ पे ये आपको बता दें कि महिला प्रहरी है और बहुत अहम। और ये देखिए और आप सुन सकते हैं कि जो ऑडियंस की एक दहाड़ है, काफी एक्साइटेड रहते हैं लोग इसे देखने के लिए। और आप ये देखिए हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुपरमैन, और यहाँ पर मोटरसाइकिल पे करतब दिखाते हुए। और लगातार आप देख सकते हैं नाले, ये चंद मिनट का होता है, लेकिन इससे मैं आपको पता चल जाता है कि ये एक और एक ह्यूमन पिरामिड मोटरसाइकिल पे बनाया गया है, और एक छोटा डिस्टेंस तय करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अब हो चुका है, और इसके बाद आपको और आपको बता दें
0: जी बेहद खूबसूरत तस्वीरें कमलजीत, और लगातार आप तस्वीरें में दिखाते रहिएगा। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देश भर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज।

0: नक्सल प्रभाव से बाहर आने के बाद बदली तस्वीर। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार। आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा, मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज का दिन उस आजादी का जश्न है जिसे पाने के लिए देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। आज फिजा में घुली ये आजादी की महक उस संघर्ष की गवाह है जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है, जब राष्ट्रगान की धुन पर 140 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं और जब अशोक स्तंभ का शेर देश के पराक्रम की कहानी बयां करता है, तब हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आज आजादी के इस पावन पर्व पर हम अपने इन राष्ट्र प्रतीकों के असली मोल और इनके पीछे छिपे लंबे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे।

0: जब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है तो संस्कृति, पहचान, परंपरा को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए जाते हैं। भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं और हर प्रतीक का अपना विशेष महत्व है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की, जो हमारी आन बान शान की पहचान है। तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के संघर्ष की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। आज जिस तिरंगे को हम गर्व के साथ सलाम करते हैं, वो कई बदलावों से गुजरने के बाद वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तिरंगे के डिजाइन में समय समय पर बदलाव हुए और आखिरकार 1947 में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शुरुआती स्वरूपों में से एक 1906 में सामने आया। इसमें तीन रंगों के साथ साथ कमल के फूल, वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी शामिल किए गए थे। 1907 में तिरंगे के डिजाइन में एक और बदलाव हुआ। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग शामिल किया गया। ध्वज पर कमल के फूलों के साथ सूर्य और चंद्र के प्रतीक भी मौजूद थे। 1917 में तिरंगे का एक अलग स्वरूप सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग के साथ सात सितारे और यूनियन जैक शामिल था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक नए ध्वज का प्रस्ताव रखा। इस डिजाइन के बीच में चरखे को जगह दी गई। 1931 में केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला ध्वज सामने आया। इसके बीच चरखा बनाया गया था। यही डिजाइन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का आधार बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसके बाद यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही यही तिरंगा भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि देश की आजादी, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा पूरे देश में सम्मान के साथ फहराया जाता है। सभी देशवासी इसे सलाम करते हैं। अशोक स्तंभ शीर्ष पर चार शेर, चारों शेर चार दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। हालांकि राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन शेर ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अबेकस की पट्टी पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल, शेर और धर्म चक्र बना है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को सरकारी दफ्तरों और अदालतों की मुहरों से ब्रिटिश राज का ठप्पा मिटा दिया गया। अशोक स्तंभ, सांची के स्तूप और ताजमहल में से किसी एक को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात हो रही थी, तो कुछ लोग धान, गेहूं की बालियां, हल के साथ बैलों की जोड़ी, हाथी, शेर और बरगद वृक्ष का भी प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अशोक स्तंभ प्राचीन सभ्यता, नैतिक शासन और कानून का प्रतीक था, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर लंबी बहस के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर समेत सभी नेता अशोक स्तंभ के नाम पर एकमत हो गए। इसके बाद डिजाइन पर काम शुरू हुआ। देश भर के कला स्कूलों से छात्रों और कला के विशेषज्ञों से डिजाइन बनवाए गए, लेकिन कोई डिजाइन रास नहीं आई। तब प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस और उनकी टीम को राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्होंने साल 1949 में कागज पर जो अशोक स्तंभ बनाकर दिया, वही आज मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दिखता है। जिस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। शासन बदला और स्तंभ भी मिट्टी में दबकर कहीं खो गया था। जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ओटेल की पुरातत्व में रुचि थी। उन्होंने साल 1904-5 में सरकार के साथ मिलकर खुदाई करवाई, जिसमें अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा यानी शेर वाला हिस्सा मिला, जो करीब 7 फुट ऊंचा था, जबकि पूरा स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा था। लेकिन खुदाई में पूरा स्तंभ खड़ा नहीं मिला, बल्कि टुकड़ों में मिला, जो आज सारनाथ में सुरक्षित रखा गया है। अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है, जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रगान जो हमारे दिलों में धड़कता है, हमें राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। वो राष्ट्रगान आज से करीब 115 साल पहले 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। जनगण मन को राष्ट्रगान बनने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। जब आजादी की रात संविधान सभा पहली बार बैठी तो उसका समापन जनगण मन से ही हुआ था। 1947 में ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से देश का राष्ट्रगान बताने को कहा गया, तो UNGA को जनगण मन की रिकॉर्डिंग दी गई थी। एक चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया था कि दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने ऑर्केस्ट्रा पर जब जनगण मन गुंजा तो सबने इसकी धुन को सराहा। हालांकि औपचारिक रूप से तब तक इसे राष्ट्रगान घोषित नहीं किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए सभा बैठी, तब इसी दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। राष्ट्रगान को लेकर भी कुछ नियम हैं, जिनके पालन करने की अपेक्षा हर भारतवासी से की जाती है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो, वो अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। अब बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। देश की आजादी का अलग जगाने वाला वंदे मातरम गीत महज एक साहित्यिक रचना या किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और ये गीत संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। 1982 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में ये पहली बार छपा। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। 2026 संशोधन विधेयक में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान वैधानिक संरक्षण दिया गया है। वंदे मातरम के गायन को रोकने या गायन से जुड़ी सभा में बाधा पहुंचाने पर धारा 3 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
1: आज स्वतंत्रता दिवस के इस महाजश्न के बीच सर झुकाकर हर कोई नमन कर रहा है। अपनी पहचान को हम आप तक अपने राष्ट्र प्रतीकों की वो गौरव गाथा पहुंचा रहे हैं जो हर भारतीय का सर फक्र से ऊंचा कर देती है।

गंगा देश की जीवन रेखा, मोक्षदायिनी, पवित्रता की पर्याय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार, देशवासियों के रग रग में गंगा नदी के प्रति सम्मान है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये नदी भारतीय सभ्यता और पहचान का प्रतीक है। इसे सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। देश भर के करोड़ों लोग गंगा नदी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भारत में सैकड़ों नदियां हैं जो यहाँ के इतिहास, संस्कृति, खेती और सभ्यता को आकार देती आई हैं। इनमें से कुछ नदियों की कहानी बहुत अलग है तो कुछ का इतिहास बहुत रोचक। गंगा एक ऐसी ही नदी है जिसे देश की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब बात राष्ट्रीय मुद्रा रुपया की, जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है और राष्ट्रीय धन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। रुपया का भारत में इतिहास शेरशाह से शुरू होती है, जब हुमायूं को हराकर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत पर राज करना शुरू किया तो शेरशाह सूरी ने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग मुद्राओं का चलन देखा तो उन्हें इसमें एक रूपता लाने की जरूरत महसूस हुई और उसने पहली बार अपने द्वारा चलाई गई मुद्रा को रुपया नाम दिया। माना जाता है कि रुपया शब्द का जन्म रौप्य शब्द से हुआ है जिसका अर्थ चांदी होता है। क्योंकि उस समय ये सिक्के चांदी के होते थे इसलिए इन्हें रुपया कहा जाने लगा। मुगलों ने भी रुपए को ही अपने साम्राज्य की औपचारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, लेकिन जैसे जैसे शासक बदलते गए वैसे वैसे उनके रुपयों में भी परिवर्तन आता गया। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो हाथ से ढाले गए सिक्कों की जगह अच्छी तरह से गढ़े और मशीन से ढाले गए सिक्के चलन में आ गए। समय के साथ साथ रुपए ने भारत से बाहर का सफर भी तय किया। व्यापारियों के जरिए रुपया पूर्वी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व एशिया और आज के पापुआ न्यू गिनी तक जा पहुंचा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई और पड़ोसी देशों में आज भी मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। कागजी रुपए की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक एक निजी बैंक द्वारा की गई थी। वचन पत्र के रूप में पहला एक रुपए का नोट 1917 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय फूल कमल भारतीय परंपरा में पवित्रता, ज्ञानोदय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। कमल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में इसकी गहरी जड़ों के कारण राष्ट्रीय फूल चुना गया। कमल का फूल सनातन में धन की देवी लक्ष्मी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, कमल का फूल जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों के बीच भी पवित्र और अछूते रहने का संदेश देता है। ये देश की समृद्ध विरासत और प्रकृति के प्रति जुड़ाव का प्रतिनिधित्व भी करता है।

0: राष्ट्रीय फल आम प्रचुरता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक है, जो भारत की भरपूर फसल का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है। भारत में आम की खेती 4 से 5 हजार साल पुरानी है। वैदिक साहित्य, पुराणों और उपनिषदों में इसे अम्र फल कहा गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर भारत के हर कोने में आम की पैदावार होती है। ये उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति और परंपरा में पूजा पाठ से लेकर शादियों और त्योहारों तक में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। बरगद के पेड़ को इसके विशाल संरचना, लंबी उम्र और गहरी जड़ों के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया, जो देश की अखंडता, एकता और अमरता का प्रतीक है। जिस तरह से इसकी शाखाएं और जड़ें दूर दूर तक फैलकर नया विस्तार लेती हैं, उसी तरह से ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र, अमर और ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
1: आज जब देश आजादी की सालगिरह मना रहा है, जब पूरा देश जश्न के रंग में रंगा हुआ है, तब हम आपके सामने लाए हैं हमारे उन राष्ट्र प्रतीकों के बनने और चुने जाने की वो अनकही दास्तां जो हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित कर देगी।

0: शक्तिशाली, फुर्तीला और देखने में आकर्षक, यही है बंगाल टाइगर की पहचान। बंगाल टाइगर भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। 8 नवंबर 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का बंगाल टाइगर से संबंध 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर पर उकेरा गया था। उस पूर्व आर्यन समाज में बाघ के साथ साथ मोर और गाय जैसे कई और जानवरों की भी पूजा की जाती थी। आर्य पूर्व सभ्यता के प्राचीन देवता शिव के साथ हमेशा एक बाघ रहता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की मुहरों में मिलता है। उत्तरी भारत में बघेल राजपूत नाम का समुदाय आज बाघ उपासकों का वंशज है, इसलिए वे कभी बाघों का शिकार नहीं करते। बाघ चोल साम्राज्य का भी प्रतीक था। सनातन में मां दुर्गा बाघ को अपने वाहन के रूप में उपयोग करती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। ये प्रजाति पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती हैं। 2023 में जारी नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार देश में अनुमानित 3682 बंगाल टाइगर हैं। भारतीय मोर सुंदरता, गरिमा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मोर की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। मोर हिंदू और बौद्ध मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख पहनना पसंद करते थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय मोर को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए मोर को आनंद, खुशहाली, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मस्तमौला विशाल शरीर का मालिक, भारतीय विरासत की पहचान हाथी, राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भारत में पहचान मिली है। हाथी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी को एक बुद्धिमान और स्थिर स्वभाव वाला पशु माना गया है और इसके कई प्रतीकात्मक महत्व भी हैं। हाथी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है और इसे ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को हाथी के सिर वाला देवता माना जाता है, जो बुद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक हैं। हाथी की सूंड को ऊपर उठी हुई अवस्था में दिखाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। रामायण में हाथी शत्रुंजय का उल्लेख है, जो श्री राम का प्रिय हाथी था, उन्हें वनवास के लिए दान किया गया था। माता लक्ष्मी के एक रूप गजलक्ष्मी का वाहन भी सफेद हाथी ही है। इसके अलावा एरावत जैसे हाथी का वर्णन भी ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। एरावत, जो एक दिव्य सफेद हाथी है, भगवान इंद्र का वाहन है। एरावत को वर्षा, उर्वरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। किंग कोबरा को राष्ट्रीय सरीसृप का दर्जा हासिल है। खास बात यह है कि यह एकमात्र सर्प है जो अपने अंडे देने के लिए पेड़ों पर घोंसले बनाता है। किंग कोबरा को भारत के कई हिस्सों में भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग माना जाता है। यह एशिया के सबसे अधिक खतरनाक सांपों में से एक है। ये घने वन के अलावा खुले जंगल, बांस के घने जंगल और नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। गंगा डॉल्फिन हमारी पवित्र नदियों में जलीय जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हासिल है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे और स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। ये नदी के इकोसिस्टम और पानी की स्वच्छता के सूचक भी मानी जाती हैं। डॉल्फिन के इस प्रजाति को स्थानीय रूप से सून्स कहा जाता है।
1: फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

भारत जब स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मना रहा है तब पूरे देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कहीं देखा हो। जहां BSF के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, भारत माता की जय के नारों से पूरा अटारी वाघा बॉर्डर इस वक्त गूंज रहा है। वैसे तो यहाँ हर दिन शाम को ध्वज उतारने के दौरान ये समारोह होता है, लेकिन जब मौका खास हो, मौका जश्न आजादी का हो, तो BSF के जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसलिए तो BSF के जवानों का उत्साह चरम पर है और दर्शकों की देशभक्ति और उसकी अभिव्यक्ति भी अद्भुत नजर आ रही है। तो देखिए नजारा है अटारी बॉर्डर का और किस तरह से BSF के जवान जो है तमाम कर्तव्य नजारा करते आपको दिख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से एक एक करके BSF के जवान यहाँ पिरामिड बनाते हुए, बाइक्स पर स्टंट्स मारते हुए आपको दिखेंगे कि बिल्कुल अलग नज़ारा इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर का है और BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ हो रही है और देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह इसी के साथ मना रहा है। जोश और जज्बे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद अद्भुत नजारा इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर का हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ देखे, हमने देखा कि अलग अलग तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो पेश किए गए। कहीं पंजाब का गिद्धा दिखाया गया तो कहीं महाराष्ट्र से जो हमने देखा नवारी साड़ी पहने हुए महिलाओं ने गणेश स्तुति की।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देशभर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मना 80वां स्वतंत्रता दिवस, बस्तर के 92 गांवों में पहली बार लहराया गया तिरंगा, नक्सल प्रभाव से बाहर आने के बाद बदली तस्वीर। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही है हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला करेंगे झूला विहार, आज निकलेगी भव्य पालकी यात्रा, मंदिर परिसर के करीब 70 एकड़ क्षेत्र में करेंगे भ्रमण।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति के रंग, आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ के जवानों की हाई वोल्टेज, कदम ताल ऊंचे, कदमों ने दर्शकों में भरा जोश, बीटिंग द रिट्रीट में देखा अनुशासन। बीएसएफ की महिला प्रहरियों का दमदार प्रदर्शन, जोशीली कदमताल बनी आकर्षण का केंद्र, रोबीली वर्दी में दिखे सीमा प्रहरी। देशभक्ति गीतों पर जमकर झूमे कलाकार, लोक नृत्यों ने बांधा समा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन।

सितारों की रंगारंग प्रस्तुति ने जीता दर्शकों का दिल। ढोल की थाप पर झूमे दर्शक, पूरे स्टेडियम में दिखा जोश। बीएसएफ के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, महिला प्रहरियों ने करतब से किया मंत्रमुग्ध। मलखंब की भी शानदार प्रस्तुति। निहांगों ने तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी, तिरंगों से पटा अटारी स्टेडियम। भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज। बीएसएफ डॉग स्क्वाड ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, कमांड पर करतब दिखे करते दिखे प्रशिक्षित डॉग्स। बाधाएं पार कर दिखाई शानदार फुर्ती। बुलेट पर बीएसएफ के जवानों का रोमांचक प्रदर्शन, चलती बाइक पर दिखाया अद्भुत संतुलन। जवानों ने दिखाया साहस और अनुशासन। डीआईजी एसएस चंदेल ने फहराया तिरंगा, अटारी बॉर्डर पर गूंजा राष्ट्रगान। हर तरफ उत्सव के रंग, हजारों दर्शकों ने लहराया तिरंगा। आज पूरा देश मना रहा है आजादी का जश्न, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि शामिल हुए, 100 एनसीसी और 100 माई भारत वॉलंटियर्स ने भी लिया हिस्सा। लाल किले पर प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा परिसर। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। लाल रंग की बंधेज की पगड़ी बांधे लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल किला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उनका स्वागत। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आजादी के जश्न में दी गई 21 तोपों की सलामी, भारत माता की जय से गूंज उठा इलाका। लाल किले की प्राचीर से उड़ा गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे, देशभक्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है आसमान में ऊंचाई छूते ही गुब्बारे। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे बच्चे। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित, दोहराया 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, युवाओं को साथ जोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के गान पर भी बोले प्रधानमंत्री, देश के लिए बेहद गर्व का पल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए बड़ी योजना की तैयारी, सरकार 1 करोड़ युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान, बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर भी दिया जोर, बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दिया गया जिसका फायदा सीधे लोगों को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्र ध्वज फहराया, बोले 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाना गर्व का पल। लखनऊ में विधान भवन में हुआ भव्य स्वतंत्रता दिवस आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी आजादी के जश्न की मुबारकबाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी, देशवासियों को बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को याद किया। हैदराबाद में ओवैसी ने भी स्थानीय नागरिकों और बच्चों के साथ मिलकर फहराया तिरंगा, राष्ट्रगान और अन्य देशभक्ति तरानों में भाग लिया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, परेड पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का जश्न, छत्तीसगढ़ के सीएम ने फहराया ध्वज, ली परेड की सलामी। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भोजलाल शर्मा, ली परेड की सलामी, फहराया तिरंगा। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल, फहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगा वातावरण।
तमिलनाडु के सीएम विजय ने स्वतंत्रता दिवस पर फहरा तिरंगा। भाषण में बोले, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी उन सभी को मेरा नमन। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया राष्ट्र ध्वज। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुआ ध्वजारोहण समारोह। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में रहे मौजूद। नागपुर आरएसएस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह। मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण। पुलिस जवानों ने दी सलामी। देश को विश्वगुरु बनाने का संकल्प दोहराया। स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई, किया ध्वजारोहण। आजादी के जश्न के बीच देशवासियों को दिया एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश। देश में पहली बार ड्रोन से हुई तिरंगे की डिलीवरी। डाक विभाग ने मंडी से रेहड़धार तक ड्रोन के माध्यम से आर्मी वेटरन तक पहुंचाया तिरंगा। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया ने भी मनाया आजादी का जश्न। गोल टेस्ट से पहले टीम में फहराया तिरंगा। बीसीसीआई ने साझा किया वीडियो। विदेशों में भी मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न। मेलबर्न में लेजेंडरी अभिनेत्री रेखा ने किया ध्वजारोहण। मौके पर कई भारतीय अभिनेता रहे मौजूद। पुरी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखा शानदार नजारा। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर रेत कलाकृति बनाई। मुंबई के शिशुवन स्कूल में बच्चों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। देशभर की परंपराओं से सजे रूबरू बच्चे, देशभक्ति की भावना जगाने पर जोर उन्होंने दिया। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में हाई अलर्ट। 25,000 से ज्यादा जवान संभाल रहे हैं सुरक्षा। एआई कैमरे से की जा रही है निगरानी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईटी और डीएनडी इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। श्रीनगर के लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ी सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। 15 अगस्त को लेकर बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट पर। रेलवे स्टेशन और होटल समेत प्रमुख जगहों पर

0: ग्राउंड में मना स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति गीतों पर थिरके बच्चे। भरतराम ग्लोबल स्कूल में फहराया गया तिरंगा, तिरंगे को दी गई सलामी, तिरंगे के रंग में रंगा स्कूल परिसर। स्केटिंग में छात्रों ने दिखा अदम, प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मथुरा में हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोले में विराजे बांके बिहारी, दर्शन के लिए वृंदावन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्वर्ण हिंडोले में ठाकुर जी के अनुपम दर्शन, स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोला बना आकर्षण का केंद्र। बांके बिहारी के झूलन उत्सव में उमड़ा जन सैलाब, हरियाली तीज पर सजा बांके बिहारी मंदिर। हरे रंग की पोशाक में नजर आए ठाकुर जी, भक्तों ने किए मनमोहक दर्शन, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। ठाकुर जी को लगाया गया घेवर का भोग, हरियाली तीज पर निभाई गई विशेष परंपरा। दीव के गंगेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत नजारा, अरब सागर करता है भगवान शिव का जलाभिषेक। समुद्र की लहरें पहुंचती है शिवलिंग तक, ज्वार के दौरान होता है प्राकृतिक अभिषेक। गंगेश्वर महादेव में विराजमान है पांच शिवलिंग, पांडवों से जुड़ी जाती है स्थापना की परंपरा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है तट, श्रद्धालुओं को मिलता है आध्यात्मिक अनुभव। महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं भक्त, दिव्य का अनोखा धार्मिक पर्यटन स्थल। श्रावण महीने में श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, अब तक करीब 35 लाख भक्तों ने अयोध्या धाम के मंदिर में किए दर्शन पूजन। पिछले साल की तुलना में अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी, सावन के सोमवार से ही करीब 6 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासन अलर्ट। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थ नगरी में ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद, कई मार्ग पर किए गए डायवर्जन और बैरिगेटिंग। रामनगरी अयोध्या में भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए किए स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहित तमाम व्यवस्थाएं। राम मंदिर में चढ़ावे और दान की गिनती की प्रक्रिया को बनाया जा रहा है अधिक पारदर्शी। मंदिर प्रशासन की सख्ती और नई व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आए श्रद्धालु, रामलला के सुगम दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले को लेकर लोगों में गजब का उत्साह, भोले बाबा के भक्तों के लिए चलाई गई 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। वासुकीनाथ से पटना और गोरखपुर जाना हुआ आसान, आसनसोल से गोरखपुर, मधुपुर से नरकटियागंज के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का जन समंदर, बाबा के जलाभिषेक के लिए देश दुनिया से पहुंच रहे हैं भक्त। इंदौर में अब मुंह की लार से होगी ओरल कैंसर की पहचान, IIT इंदौर के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक पहचान के लिए नॉन इन्वेसिव सलाइवा तकनीक विकसित। शुरुआती दिनों में ही ओरल कैंसर की पहचान से मरीजों का इलाज होगा आसान, नई तकनीक के पेटेंट के लिए फाइल किया गया आवेदन। गुजरात के आणंद को मिली 67,52,00,000 की हाईटेक जिला जेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने किया लोकार्पण। आणंद के जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, बैडमिंटन कोर्ट पर आजमाए हाथ। करीब 22.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रतिभावान खिलाड़ियों के हुनर को मिलेगा इससे मंच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: इस वक्त की शानदार खबर, एक तरफ देश में जश्न आजादी मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम इंडिया के धुरंधरों ने अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया, 7वें मिनट में संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के गोल का खाता खोला। फिर भारतीय कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने 11वें और 43वें मिनट में पेनल्टी पर गोल दागे। इस वक्त की शानदार खबर, हॉकी वर्ल्ड कप भारत की जीत से इसकी शुरुआत हुई और एक तरफ देश में जश्न आजादी आज मनाया जा रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोगों ने आजादी का उत्सव रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किस तरह से मनाया, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारी संवाददाता श्वेता झा दिखा रही हैं पूरे कार्यक्रम की झलक।
1: हमारा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमारा देश अमृत काल से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की तरफ, जब विकसित भारत एट 2047 का संकल्प लिए हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा पीढ़ी। आज उसी को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए हम आज नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां कमान आज उन्हीं युवाओं ने संभाला है। तो हर दिल में किस तरह से तिरंगे को लेकर मान सम्मान और खुशी है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुशी है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
2: आगे बढ़ेगा।
3: So, आप लोगों को बोलना, जब मैं हाथ खड़ा करूंगा कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई थी जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी को, लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। एक बार जोर से बोलेंगे, कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघुद्वीप हमारे, तूफानों में किनारे, बुझ बुझा गए किसी दिन, मांगे बिना स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज

0: कमाई है वीरों का तुम कर लो स्मरण उन सबको है शत शत नमन
1: महान मानवों का शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपना जीवन दान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई फिर नमन करते हैं उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने अपने बलिदान से हमारी आजादी को कायम रखा।
2: इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस का थीम है विकसित भारत एट 2047 युवा पीढ़ी यानी कि युवा शक्ति और उसी युवा शक्ति को जानने उसी ऊर्जा को समझने के लिए इस वक्त हम नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद है। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और इनमें ऊर्जा कितनी है उत्साह कितना है और जोश कितना है आइए सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम है आपका बेटा?
3: मेरा नाम अर्थ है।
2: अर्थ आप क्या सुनाने वाले हो?
3: मैं सुनाने वाला हूँ आरंभ है प्रचंड।
2: सुनाओ।
3: आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड आज जन्न की घड़ी पे तुम महार दो आन बान शाने आके जान का उतार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड आज जन्न की घड़ी पे तुम महार दो आन बान शाने आके जान का उतार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण रे जो मन करे सो प्राण रे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण रे जो मन करे सो प्राण रे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है ये युद्ध ही तभी मिता प्रमाण है। कौरों की भीड़ हो पांडवों का नीड़ हो जो डर सका वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी पे ठोकरों पे मार दो। मौत तो है नहीं तो मौत से भी क्यों डरी ये जाके आसमान पे दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड आज जन्न की घड़ी पे तुम महार दो आने बान शाने आके जान का उतारे इस धनुष के बार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड।
2: वेरी नाइस। क्या बात है क्या बात है। आरंभ अगर ऐसा है तो आप सोचिए आगे फिर क्या होगा। कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा?
4: क्यान।
2: क्यान अच्छा आप ये बताइए कि आपके लिए इंडिपेंडेंस या फिर आजादी का क्या मतलब है?
4: इंडिपेंडेंस टू मी मींस मेकिंग माय ओन चॉइसेस एंड लिविंग विदाउट फियर।
2: ऐसा आपको लगता है?
4: हाँ।
2: यू आर फीलिंग दैट?
4: या
2: आर यू प्राउड टू बी एन इंडियन?
4: यस।
2: जय हिंद
4: जय हिंद
2: जय हिंद
4: जय हिंद।
2: भारत माता की
5: जय।
2: भारत माता की
5: जय।
2: जोश पूरा हाई है माहौल पूरा बना हुआ है बहुत प्रोग्राम्स यहाँ पर होने हैं। एक और बच्ची इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका?
6: मिश्का।
2: मिश्का आपको सुना रही है हमें?
6: हाँ जी एक कुछ पंक्तियाँ हैं मनोज मुंतशिर जी द्वारा लिखित जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रणाम। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होंठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुश्मन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद।
2: जोरदार तालियां हो जावे मिश्का के लिए। बहुत कमाल का मिश्का आपने बोला। एक और छोटी सी और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा आपका?
7: वेदा चौधरी।
2: वेदा आप हमें कुछ सुना रही हो?
7: यस।
2: सुनाइए।
7: भारत प्यारा देश हमारा तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा तन मन इस पर वारेंगे, गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों जिस लदी है धरती, गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों से लदी है धरती, जिस धरती पर जन्म लिया है।

0: है जिसके बासी छाए उस पर क्यों उदासी। कोटि कोटि है जिसके बासी छाए उस पर क्यों उदासी। कांप उठेंगे शत्रु सारे मिलकर जब ललकारेंगे, मिलकर जब ललकारेंगे।
1: बोलो भारत माता की
0: जय,
1: वंदे
0: मातरम,
1: वंदे
0: मातरम।
1: तो ये है युवाओं का जोश और युवा शक्ति, लगातार इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। और भी बहुत कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, तो चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देशभर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता की गूंज के जयकारे। छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मना 80वां स्वतंत्रता दिवस, बस्तर के 92 गांवों में पहली बार लहराया गया तिरंगा, नक्सल प्रभाव से बाहर आने के बाद बदली तस्वीर। लद्दाख में BRO का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट की ऊंचाई पर मेघला दर्रे पर बनाई रोड।
4: भारत माता की जय, भारत माता की जय, BRO की जय।
3: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा हरियाली तीज का पर्व, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में बिराजे बांके बिहारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं। 80वां आजादी दिवस है और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या? आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, जेंजी का बहुत बोलबाला है। हर तरफ जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियन को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई, हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की स्टोरी को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बार भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए, और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाई तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत। भाई जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत। अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड। यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोभित, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए, आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या? एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं। राजपाल, आप ही से शुरू करूंगी। आजाद हैं हम?
1: हाँ, आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों?
1: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
0: जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया।
2: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया, हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
3: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
0: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। हाँ, पल्लवी,
4: देखिए, अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
4: ये किसी एक स्वस्थ परिवार के, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
5: मैम, बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो, लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या
5: जेंजी की सबसे अच्छी बात।
0: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
6: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ। हाँ। मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
6: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजाद, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी, समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
7: देखिये, मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
1: स्वागत है।
7: कि आजादी है नहीं एक का शासन जी। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है, तो आप आजाद नहीं है, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भीज सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं, और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना।
0: क्या बात, क्या बात।
7: आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
0: क्या बात, क्या बात।
7: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
7: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मी बाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
0: क्या बात है,
7: बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
5: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।
0: क्या बात है।
5: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंत्र प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए, अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं विदेश से वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाबी हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार, माता के शेरों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है लेकिन एक सवाल भी आता है, आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
4: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
0: जी।
4: आज सड़क से लेके संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
0: बिल्कुल,
4: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
0: बिल्कुल,
4: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैनजी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, जीरो डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
0: बिल्कुल,
4: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
1: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है तो संभालने वाला कौन होता? भारत होता है।
0: क्या बात,
1: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धड़कती इबारत है हम, सीने में धड़कती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी इस बार, भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूँ,
0: स्वागत
1: कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है, माटी

रख लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एकजुट हो गए। तब कहता हूं कि भारत मां

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी। एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात
1: बिल्कुल
2: उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया।
3: क्या बात है,
2: अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
4: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे।
5: आए हैं,
4: हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या
4: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते कुकुरमुते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है, हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम ओ खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की, और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं, तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगी?
6: जी, सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को,
5: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
5: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेन ज़ी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है, तब ये पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा।

0: झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी। या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं।
1: क्या बात।
0: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। पढ़ती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की, इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है सुनिएगा। ये अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है।
1: क्या बात है।
0: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेंजी हूं तो मुझसे बेहतर जेंजीज को कौन समझ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं। सुनिएगा कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेंजी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मना सिवा स्वतंत्रता दिवस, बस्तर से 92 गांवों में पहली बार लहराया गया तिरंगा, नक्सल प्रभाव से बाहर आने के बाद बदली तस्वीर। लद्दाख में बीआरओ का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट की ऊंचाई पर मेघला दर्रे पर बनाई रूट। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। जयपुर में शाही अंदाज से मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शुभ सिद्धि योग में आज मनाया जा रहा हरियाली तीज का पर्व, मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बाके बिहारी।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी दिवस हम मना रहे हैं और मेरे ख्याल से इस मंच से बेहतर और कोई मंच हो नहीं सकता जब देश का जेंजी हमारे साथ मौजूद है और हम सुन रहे हैं उसको। जेंजी क्या चाहता है, किस तरीके से, उसका लक्ष्य क्या है, भारत किस तरीके से आगे बढ़े, उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को लेकर किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। चलिए यहीं से हम अपने इस कवि सम्मेलन को भी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत क्यों खास है बताइए।
1: अपने काम के सिलसिले में अलग अलग देशों में रहना हुआ, जाना हुआ, तो पूरी जिम्मेदारी से कई देशों में रहने के बाद एक कविता लिखी, एक कविता उतरी, वो आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि भारत में ही अवतार क्यों हुए, ऐसा क्या है। तो चलिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से जुड़ते हैं। मानचित्र के अंबर पर मान

0: सागर भाल हिमालय सजता है, छह ऋतुएं इसकी बेटी और दिल्ली दिल में बसता है। छह ऋतुएं इसकी बेटी और दिल्ली दिल में बसता है। ओली के बर्फीले पर्वत गोवा सागर घेरा है, मध्य प्रदेश घने जंगल तो कच्छ रेतीला डेरा है। चारों धाम यहाँ स्थित है, रामायण गुरबानी है, आल्हा उदल की कविताएं तानसेन की वाणी है। आल्हा उदल की कविताएं तानसेन की वाणी है। पृथ्वीराज महाराणा के बलिदानों की थाती है। सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं। सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं। प्रेमचंद्र के किस्से पढ़ते मीरा के दीवाने हैं। इस मंच के नाम कर रही हूँ, प्रेमचंद्र के किस्से पढ़ते मीरा के दीवाने हैं। दिनकर और निराला जैसों की गर्वित संताने हैं। दिनकर और निराला जैसों की गर्वित संताने हैं। निज गौरव और आन बान पर बात कोई जब आती है, यहाँ चूड़ियाँ और तलवारें एक हाथ सज जाती
1: हैं। क्या बात है,
0: यहाँ चूड़ियाँ और तलवारें एक हाथ सज जाती है। अपनों को छोड़ो, हमने गैरों को अपना माना है। शांति सूत्र में विश्व बंधा हो, एक लक्ष्य ये ठाना है। आज यहाँ पावन बेला में ये संकल्प उठाना है। विश्व गुरु सोने की चिड़िया फिर से इसे बनाना है। विश्व गुरु सोने की चिड़िया फिर से इसे बनाना है।
1: बिल्कुल, जब हम विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं भारत को, तो यकीन मानिए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो मोहित, क्या क्या जिम्मेदारी है हमारी जिसे निभाना है साथ ही साथ?
2: मैं एक जेंजी हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ सरकार को और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभावों में लिखी है जो उसी घर की कहानी है। समझ बैठे लहू जिसको मेरी आंखों का पानी है। मैं पायल और कंगन की खनक को भूल बैठा हूँ। तिरंगे के लिए कुर्बान अब करनी जवानी है। तिरंगे के लिए कुर्बान अब। और जेन जी की ताकत क्या है कि देश के लिए खड़े हैं। कोई ना समझे कि देश के खिलाफ है इस देश के जेन जी। देश के लिए खड़े हैं, देश के लिए लड़े हैं, देश पर ही अपने ये प्राण वारते हैं हम। प्यार में तो हमसे कोई भी जीत जाए पर छल और बल से कभी ना हारते हैं हम। बैठकर संसद में खुद को खुदा जो माने, उन सत्ताधीशों का नशा उतारते हैं हम। और जिस जगह लोग मुंह खोलने से डरते हैं, उस जगह शेर सी दहाड़ मारते हैं। मैं जेंजी हूँ, हो सकता है एक दो साल ऊपर नीचे हो, मैं सीनियर जेंजी हूँ।
1: अच्छा, जेंजी की भी कैटेगरी हो गई है।
2: मैं सुपर सीनियर
1: जेंजी या जूनियर जेंजी।
2: अब सीनियर का तो काम है जूनियर को समझाना, ये हर जगह होता है। तो एक सीनियर जेंजी अपने जूनियर जेंजी से कह रहा है कि तुम्हें बनना क्या है। ये वीरांगनाओं का देश है, रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना। This is the advice of a senior Gen Z to the junior Gen Z. बनना क्या?
1: दोबारा एडवाइस दे दो।
3: प्रोमो कटेगा।
1: दोबारा एडवाइस दे दो।
2: मैं फिर से एडवाइस ही दे रहा हूँ कि जो देश है ये वीरांगनाओं का, ऐसी वीरांगनाओं का देश है, इसको रीलांगनाओं का देश नहीं बनाना। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, मेरी सलाह है अपने छोटे भाइयों के लिए, जूनियर Gen Z के लिए, भाइयों बहनों के लिए, कि तुमको दुनिया से भिड़ना है। बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो। वक्ष फाड़ दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। वक्ष चीर दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। तुमको दुनिया से भिड़ना है। क्या करना है Gen Z को? तुमको दुनिया से भिड़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है, मेहनत का पर्वत चढ़ना है, इतिहास सुनहरा गढ़ना है, आलस पर थप्पड़ जड़ना है, फिर चट्टानों सा अड़ना है। जीवन में दिक्कत आएंगी, ये संघर्षों का झरना है, पर तय तुमको करना होगा, अब सड़ना है कि लड़ना है।
1: क्या बात है।
2: इन आंखों में तूफान लिए, कुछ करने का अरमान लिए, मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रण का गान लिए, तुमान बान और शान लिए, सम्मान मान और ज्ञान लिए, वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए, अब चलो समर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए।
1: क्या बात,
2: चलो समर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए जेंजीज को करना।
1: बिल्कुल, तो ये सीनियर जेंजी अलंकृत जूनियर जेंजीज को बहुत सारी एडवाइस दे रहा है, और इसी से मुझे लगता है कि भटके ना जेंजी, ऐसी एडवाइजेस की अक्सर हमें जरूरत होगी।
3: गीत है, वो गीत सुना रहा हूँ कि कैसे राम मिलते हैं। इनकी उनकी बात न सुनकर स्वयं खटो तो राम मिलेंगे। इनकी

0: बिल्कुल
1: राजपाल, दो लाइनें और, चलते चलते।
2: एक हमारा जनजातियों का एक इतिहास रहा है,
1: लेकिन हम उसको नहीं भूल सकते,
2: लेकिन दुर्भाग्य से बातें हम भूल जाते हैं। तब मैं कहता हूँ कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, एक तरफ तोप थी एक तरफ खाली छाती, फिर भी वो लड़ते रहे, राष्ट्रभक्ति उनको भाती और तीर धनुष लेके चले, ऐसे वो सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे।
1: बिल्कुल, और जब हम आजादी दिवस मना रहे हैं तो तिरंगे पर भी चंद पंक्तियां हमारे जेंजी की नजर से।
3: जी बहुत बहुत आभार, इस देश की आन बान शान उस तिरंगे के नाम पर एक बहुत छोटी कविता सुना रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस देश का व्यक्ति कभी नहीं सोचता मुझे स्वर्ग मिले, बस उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मेरा कफन तिरंगा हो, उसी तिरंगे के नाम पढ़ती हूँ। कि भारत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, भारत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था, सोच लिया अंग्रेजी शासन अपना सहन करेंगे, सोच लिया अंग्रेजी शासन अपना सहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे लंका दहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे लंका दहन करेंगे, कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी, अंग्रेजों के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी, अपना जीवन दिया और दुश्मन को भी ललकारा, उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा।
1: क्या बात है,
3: लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था, लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था और वहां पर अमर तिरंगा हमने गाड़ दिया था, जिसकी खातिर अपने सैनिक सदा अड़े रहते हैं, सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे, सोच लिया है हम दुश्मन की जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा, अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा, हर दिन।
1: क्या बात है,
3: आदरणीय तिरंगा झंडा है,

0: जय,
1: भारत माता की
0: जय,
1: भारत माता की
0: जय। चलिए, भारत माता की जय हर जगह हो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो, और इसीलिए चलते चलते शोभित वंदना,
2: क्योंकि जेनजी को रील से बातें समझ में आ जाती है। 15 सेकंड की एक रिक्वेस्ट मैं भी जेनजी से कर देता हूँ कि जिन्होंने झुकने दिया नहीं देश का मान, सर कटवाए लेकिन फिर भी बचा लिया सम्मान, तुम भी होना तो उनके जैसे ही बलिदानी होना, और जो भी बनना बन जाना पर पहले हिंदुस्तानी होना, पहले हिंदुस्तानी होना, क्योंकि तुम ही जनगण के मन हो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता, उठो उठो अब बुला रही है तुमको भारत माता।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर आए और आजादी दिवस को एक तरीके से आप, हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, और आज जाना कि वाकई और आज जाना कि एक्चुअली जेन जी की नजर में भारत क्या है, आजादी क्या है, जेन जी कैसा आजाद भारत चाहता है, और ये आज हमने जेन जी की नजर से जाना है। आप सभी को आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देखते रहिए गुड न्यूज।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोगों ने आजादी का उत्सव रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किस तरह से मनाया, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारी संवाददाता श्वेता झा दिखा रही हैं पूरे कार्यक्रम की झलक।
1: हमारा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमारा देश अमृत काल से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की तरफ, जब विकसित भारत एट 2047 का संकल्प लिए हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा पीढ़ी। आज उसी को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए हम आज नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां कमान आज उन्हीं युवाओं ने संभाला है। तो हर दिल में किस तरह से तिरंगे को लेकर मान सम्मान और खुशी है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुशी है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
2: आगे बढ़ेगा।
3: So, आप लोगों को बोला जब मैं हाथ खड़ा करूंगा, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई थी जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी को, लिए बिना गर्दन के मोल। कलम आज उनकी जय बोल। एक बार जोर से बोलेंगे, कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघुद्वीप हमारे, तूफानों में किनारे, बुझ बुझा गए किसी दिन, मांगे बिना स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आजा

0: वीरों का तुम कर लो स्मरण, उन सबको है शत शत नमन।
1: महान मानवों का शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपना जीवन दान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई। फिर नमन करते हैं उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने अपने बलिदान से हमारी आजादी को कायम रखा।
2: इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस का थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा पीढ़ी यानी कि युवा शक्ति। और उसी युवा शक्ति को जानने, उसी ऊर्जा को समझने के लिए इस वक्त हम नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और इनमें ऊर्जा कितनी है, उत्साह कितना है और जोश कितना है, आइए सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम है आपका बेटा?
3: मेरा नाम अर्थ है।
2: अर्थ, आप क्या सुनाने वाले हो?
3: मैं सुनाने वाला हूँ आरंभ है प्रचंड।
2: सुनाओ।
3: आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी पे तुम महार दो, आन बान शान आके जान का उतारे यार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी पे तुम महार दो, आन बान शान आके जान का उतार यार इस धनुष के पार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तभी मिता प्रमाण है। कौरों की भीड़ हो पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी पे ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरी, ये जाके आसमान पे दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले वस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी पे तुम महार दो, आने बान शान आके जान का उतारे यार इस धनुष के बार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
2: वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। आरंभ अगर ऐसा है तो आप सोचिए आगे फिर क्या होगा। कुछ और बच्चे, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा?
4: कियान।
2: कियान, अच्छा आप ये बताइए कि आपके लिए इंडिपेंडेंस या फिर आजादी का क्या मतलब है?
4: इंडिपेंडेंस टू मी मींस मेकिंग माय ओन चॉइसेस एंड लिविंग विदाउट फियर।
2: ऐसा आपको लगता है?
4: हाँ।
2: यू आर फीलिंग दैट?
4: Yeah.
2: Are you proud to be an Indian?
4: Yes.
2: Jai Hind.
4: Jai Hind.
2: Jai Hind.
4: Jai Hind.
2: Bharat Mata ki.
5: Jai.
2: Bharat Mata ki.
5: Jai.
2: जोश पूरा हाई है, माहौल पूरा बना हुआ है, बहुत प्रोग्राम्स यहाँ पर होने हैं। एक और बच्ची इस वक्त हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
6: मिश्का।
2: मिश्का, आपको सुना रही है हमें?
6: हाँ जी, एक कुछ पंक्तियाँ हैं मनोज मुंतशिर जी द्वारा लिखित, जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रणाम, आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुश्मन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूं जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा है, मैं उस भारत से आती हूं जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद।
2: जोरदार तालियां हो जावे मिश्का के लिए, बहुत कमाल का मिश्का आपने बोला। एक और छोटी सी और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका?
7: वेदा चौधरी।
2: वेदा, आप हमें कुछ सुना रही हो?
7: यस,
2: सुनाइए।
7: भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों जिस लदी है धरती, गंगा जिसका पानी भरती फल फूलों से लदी है धरती, जिस धरती पर जन्म लिया है।

0: जिसके बासी छाए उस पर क्यों उदासी, कोटि कोटि है जिसके बासी छाए उस पर क्यों उदासी, काप उठेंगे शत्रु सारे मिलकर जब ललकारेंगे, मिलकर जब ललकारेंगे।
1: बोलो भारत माता की
2: जय,
1: वंदे
2: मातरम,
1: वंदे
2: मातरम।
1: तो ये है युवाओं का जोश और युवा शक्ति, लगातार इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, और भी बहुत कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। तो चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं।

0: बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर कैसा असर डालता है? राहु आपके रोजगार में उतार चढ़ाव कैसे पैदा कर देता है? क्या है राहु का जीवन पर प्रभाव और क्या है इसके प्रभाव को दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: जश्ने आजादी की रौनक, अचारी बागा बॉर्डर पर BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। जश्ने आजादी पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत, कलाकार से लेकर विदेशी मेहमान भी शामिल। लद्दाख में BRO का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट पर पहली बार लहरा तिरंगा, मिगला बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में मनाई जा रही हरियाली तीज, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है इसके ऊपर।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अच्छी खबर में आप सभी का स्वागत है। अच्छी खबर सच्ची खबर में बात स्वतंत्रता दिवस की आज करेंगे। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में आयोजित मुख्य समारोह की अगुवाई की और 13वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित उन्होंने किया। आज के दिन एक और मायने में बेहद खास दिन है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ। इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर युवा शक्ति की ऊर्जा, सपनों और अहम भूमिका का भी उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का साफा इस साल भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही हैं। तो इस साल कई नई परंपराओं का शुभारंभ किया गया।

0: देश की आजादी का दिन, शहीदों के नमन का दिन। आज देश जिस मुकाम पर है उस तक पहुंचाने वालों को याद करने का दिन। हर साल का स्वतंत्रता दिवस खास तो होता ही है, लेकिन इस बार लाल किले के प्राचीर पर जब वंदे मातरम गूंजा तो पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। लाल किले पर हुए आजादी दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। वंदे मातरम का गायन आज ऐसे समय में हुआ जब देश वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत का जश्न मना रहा है। कैडेट और वॉलंटियर्स को लाल किले के प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया गया था और उन्होंने उत्सव के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम शब्द की आकृति बनाई थी। ज्ञान पथ पर विकसित भारत 2047 की थीम को दर्शाने वाले कटआउट भी लगाए गए थे। इससे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम के संबोधन की शुरुआत और समापन पर भी इसे बजाया गया था। यह पहली बार था जब स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का पूरा वर्जन शामिल किया गया। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश देखता है। इस बार समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे अनुशासित मुद्रा में खड़ी भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने सभी का ध्यान खींचा। ध्वजारोहण की आधिकारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता कर रही कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। आज भारतीय महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर देश के बड़े राष्ट्रीय समारोहों तक हर जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही थी। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी का साफा भी इस बार चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी का पहनावा और विशेष रूप से उनकी राजस्थानी बंधेज पगड़ी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। उनके साफे में गहरे लाल रंग की पगड़ी पर सफेद रंग के छोटे छोटे बिंदुओं की कलाकारी थी। खास बात यह है कि ये साफा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवी सिंह की ओर से तैयार किया गया है, जो पिछले 13 साल से पीएम मोदी को राष्ट्रीय पर्वों पर साफा पहनाने और तैयार कर रहे हैं। वैसे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का साफा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया गया और ये भी दिखाया गया कि युवा पीढ़ी किस तरह से भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटेन टुडे।
1: स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है तो पूरे देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खास उन्होंने बनाई। भारत माता की जय के नारों के साथ जब अटारी वाघा बॉर्डर गूंजा तो मानो पाकिस्तान में जैसे खौफ पसर गया हो। वैसे तो यहां हर दिन शाम को समारोह होता है, लेकिन जब मौका जश्न आजादी का हो तो बीएसएफ के जवानों का ही नहीं समारोह देखने आए देशवासियों का उत्साह भी देखते ही बनता है और देशभक्ति और उसकी अभिव्यक्ति भी अद्भुत नजर आती है।

0: देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोगों ने आजादी का उत्सव रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किस तरह से मनाया, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने वरिष्ठ लोगों से बातचीत की।
1: स्वतंत्रता दिवस पर आज जब हम बात कर रहे हैं युवाओं की, युवा शक्ति की, तो मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारे बड़े रहे हैं, उनकी प्रेरणा के बिना ये स्वतंत्रता दिवस या फिर कोई भी स्वतंत्रता दिवस हम नहीं मना सकते हैं। तो कुछ लोग सीनियर सिटीजन इस वक्त हमारे साथ हैं और वो अपनी भावनाएं आज के दिन व्यक्त करना चाहते हैं। आप आंटी सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे आज?
2: मैं सबसे पहले ये सुनाना चाहूंगी कि सीमा पर जो प्रहरी होते हैं वो क्या कामना करते हैं वहाँ पर, ना दौलत की ना शौहरत की। वो केवल ये चाहते हैं कि जो तिरंगा उनके हाथ में है शहादत के समय, वो तिरंगा उनके हाथ में हो और उसका कभी अपमान ना हो। शम

0: गंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप कुछ बता रही थी, भले ही हमने वो पल वो समय नहीं देखा है, लेकिन आपने कहा कि आप बचपन में आपने आजादी के उस दर्द को, कितने मुश्किल से हमने आजादी पाई है, उसके किस्से आपके साथ हैं।
1: हाँ, मुझे पता है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं उस माँ की बेटी हूँ जो 11 मंथ्स बेलगाम के हिंडलगा जेल में उन्होंने काटे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को झंडे से मारा था, उसके वजह से वो 11 महीने जेल में रही है। तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आज़ादी क्या होती है,
0: और उसी आज़ादी को सहेज कर हमें रखना है। आंटी, आप कुछ बता रहे
2: हैं। आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम बहुत सारे शहीदों और बहुत सारे लोगों की वजह से ही आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ हमारे राइट्स नहीं है, उसकी हमारी ड्यूटीज़ भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा देश आज़ाद और एक विकसित देश बनेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख और अच्छी प्रेरणा यहाँ सुनने को मिल रही है। आप कुछ कह रहे हैं।
3: आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आज़ाद देश में स्वाभिमान से रह रहे हैं। हम उन स्वतंत्रता सेनानी के कुर्बानी को हम लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जय हिंद।
0: बिल्कुल,
4: आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि मेरे पिता और मेरे चाचा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनसे हम सुना करते थे कि कितनी मुश्किल से हमको आज़ादी मिली।
0: इसलिए जो युवा हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
4: वो युवा जो हैं उनको बहुत ही संयम में रहना चाहिए, और इसको सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से ये हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई है, इसको ऐसे स्वतंत्रता नहीं मानना चाहिए, ये हमारे लिए एहसास होना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप।
5: आज़ादी हमारे लिए एक ऐसा सौभाग्य है जो हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं वो किस गुलामी में रहते थे। हम आज़ादी के बाद 10 साल बाद आए हैं, हमारी उम्र इतनी है। हमने देश को आज़ादी से टाइम से लेके आज तक, पेजर से लेके मोबाइल तक, सुई से लेके हवाई जहाज तक, हमने अपने आप बनाना सीखा है, ये हमारे सौभाग्य का वर्ष है।
6: इसी कार्यक्रम में एक बच्ची ने मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर की कविता का पाठन कर समा बांध दिया। सुनिए आप भी।
7: मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है, और सात समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुश्मन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा है, मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है।
6: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवानगी किस कदर छाई हुई है।

देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेट कर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों, केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहाँ डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात बस्तर की कर लेते हैं, जहां कभी खौफ पसरा रहता था वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले के 92 गांवों के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि यहां पर आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां कभी नक्सलवाद का खौफ रहता था, राष्ट्रीय पर्व की खुशियों पर भारी पड़ता था, इस बार इन गांवों में आजादी का जश्न डर के साए में नहीं बल्कि तिरंगे की शान के साथ मनाया जा रहा है। बदलाव की बयार इन गांवों में बहने लगी है और सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की पहुंच भी गांव तक बढ़ी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक आज गांव में लहराता तिरंगा नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गांव के बच्चे और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। और अब आपको दिखाते हैं विदेशों में मनाए गए आजादी के महोत्सव की कुछ तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बार फिर भारतीय तिरंगे का गौरव दिखा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया। इस बार मेलबर्न के ऐतिहासिक फेडरेशन स्क्वायर पर दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मौजूद हजारों प्रवासी भारतीयों ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाया, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग से सराबोर हो गया। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी रेखा के साथ दिखे। इस दौरान विदेशी धरती पर भी भारत की धमक देखने को मिली। दूसरी तस्वीर जापान से आई है, जहां बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी गाया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा की तस्वीरें भी आकर्षित करने वाली हैं। यहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुर्ज खलीफा तीन रंगों में रंगा गया। तो देखिए तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां विदेश में भारत का झंडा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के साथ आज गुलाबी नगरी की रौनक देखते ही बन रही थी। यहां पर हरियाली तीज का उल्लास भी देखने को मिला। जयपुर की करीब 299 साल पुरानी तीज की शाही सवारी की परंपरा यहां निभाई गई। यहां के सिटी पैलेस से ये यात्रा निकाली गई। तीज माता 400 किलो चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकली। सिटी पैलेस से शुरू हुई ये शोभा यात्रा त्रिपोलिया और छोटी चौपड़ होते हुए तालकटोरा पहुंची। खास बात यह है कि तीज की इस पारंपरिक सवारी में 100 से ज्यादा लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देते हुए मां की शोभा यात्रा को देखने के लिए वो यहां उमड़े। बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक भी यहां मौजूद थे। इस खास तीज उत्सव को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं।
2: मां की सवारी आपके बीच में है, आप देख पा रहे हैं।
1: और चलिए बात वृंदावन की कर लेते हैं। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाली तीज के मौके पर भगवान बांके बिहारी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर विशाल स्वर्ण हिंडोले में झूला झुलाया जा रहा है। अपने आराध्य भगवान बांके बिहारी की इस अनुपम छवि के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाली तीज के त्योहार का मथुरा वृंदावन में विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हजारों वर्ष पहले पहली बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर वर्षा ऋतु में कृष्ण ने राधा संग झूला झूलने का आनंद लिया था। तब से मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में एक दिन एक विशाल स्वर्ण हिंडोला उनका सजाया जाता है। 32 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे सोने और चांदी से बने इस विशाल झूले में भगवान बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं और उनके दोनों तरफ खड़ी सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो राहु नामक ग्रह है वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से आपके ऊपर असर दिखाता है। राहु अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो व्यक्ति के स्वभाव पर कैसे असर डालता है। राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है ऐसे लोग आम तौर पर चालाक होते हैं, झूठ बोलने में तेज होते हैं और जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर जाते हैं। इनकी जो युवावस्था है, इनकी जो यंग एज है, वो संघर्ष में बीतती है। आम तौर पे राहु वाले नौजवानी में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव पर होगा तो आपके अंदर चालाकी होगी और आप जरा से फायदे के लिए गलत रास्ते पर, अशुभ मार्ग पर चलेंगे और इसके गंभीर परिणाम आपको आगे जीवन में मिल सकते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर और किसी व्यक्ति के रोजगार पर कैसा पड़ता है? देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर होगा तो आम तौर पर आप चमड़े, शराब, नशीले पदार्थ और कभी कभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे। राहु का प्रभाव अगर करियर पर हो तो व्यक्ति अचानक धन कमाना चाहता है और अचानक बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। राहु वाले लोग आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति के क्षेत्र में दिख जाते हैं। काम और रोजगार कितना भी अच्छा इनका क्यों ना हो, इनके करियर में, इनके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, बेटिंग इन सब मामलों में जाते हैं। कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। इनका रोजगार पूरी तरह से कभी स्थिर नहीं हो पाता। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।

बाद हो सकते हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपके रोजगार पर पड़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। क्या करता है राहु पारिवारिक जीवन में? अगर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। विवाह के बाद जिंदगी में तनाव बढ़ता है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है अगर राहु का प्रभाव हो, और विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह के बाद के संबंध भी डेवलप हो सकते हैं। राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती या बेवजह के मुकदमों में, बेवजह के झंझटों में फंस जाती है। राहु का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव होगा तो संतान उत्पत्ति में देरी होगी और एक संतान समस्या का कारण जीवन में बनेगी। यानी राहु अगर आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर कष्ट होगा, वैवाहिक जीवन भविष्य में तनाव का कारण बनेगा और कभी कभी दो शादियां होने की नौबत आ जाएगी। देखिए, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। राहु का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है और राहु किस तरह की बीमारियां देता है? राहु अगर रोग देगा, बीमारियां देगा, शरीर पर असर डालेगा तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। त्वचा और मुख के गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा आपकी बीमारियों पर तो ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोसिस ना हो और बीमारी पकड़ में ना आए। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा तो सबसे पहले बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी और दूसरे नंबर पर छोटी सी शुरुआत होगी, लेकिन ये बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ जाएगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
अनाज

कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में विवाद से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल राहु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालेगा, केवल निगेटिव असर ही डालेगा। राहु का कुछ लोगों के जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। तो अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो ये क्या करेगा? अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है और व्यक्ति घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है, घर से दूर जाकर तरक्की करता है। मध्य आयु के बाद, 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को राजनैतिक सफलता भी मिल जाती है। अगर राहु शुभ हो और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। और राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है और ऐसे लोग जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। राहु अगर कुंडली में शुभ है, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इनको सही रास्ता मिले तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। राहु की शुभता वाले लोग सामान्य रास्ते पर नहीं चलते, नए रास्ते पर चल करके दिशा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा लीजिए, एक अंगूठी बनवा लीजिए और इस अंगूठी को धारण करिएगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए, या अगर आपके गुरु ने ईष्ट मंत्र दिया है तो इसका नियमित जप आपको करना चाहिए। और अगर राहु का प्रभाव अशुभ है आपके ऊपर तो अपने मस्तक पर
सफेद चंदन जरूर लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद। अपने शरीर को और वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा। घर में खुशहाली लाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर कर रखिए और जब पूजा कर लें पूजा के बाद 5 मिनट के बाद उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। बचा हुआ पानी पौधे में डाल दीजिए। अगर ऐसा दोनों समय करें सुबह और शाम दोनों वेला अगर ऐसा करें तो आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद झूलनोत्सव के अवसर पर रामनगरी में ऐतिहासिक और भव्य नजारा देखने को मिला। करीब 500 सालों के बाद पहली बार श्री रामलला सरकार मंदिर परिसर से बाहर निकलकर कुबेर टीला पर झूला विहार के लिए पहुंचे। फूलों से सजी चांदी की पालकी में श्री रामलला को विराजमान कराया गया। इसके बाद पालकी यात्रा मंदिर परिसर से होते हुए कुबेर टीला पहुंची। यहां करीब 2 घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और झूलनोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: देशभर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। जश्न आजादी पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत, कलाकार से लेकर विदेशी मेहमान भी शामिल। नई टिहरी में 150 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा शहर।

0: सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार। अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में मनाई जा रही हरियाली तीज, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से, उसका बूस्ट होता है किस प्रकार से, चलती है किस प्रकार से, कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना, और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इसराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोड व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
2: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
2: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
0: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
1: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों ने निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
0: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर बेचे, इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करे। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं, इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
1: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए नहीं बना रहे, जहाँ जहाँ उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाते हैं। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए, इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुने इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में जश्न आजादी की रौनक, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज। जश्न आजादी पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत, कलाकार से लेकर विदेशी मेहमान भी शामिल। नई टिहरी में 150 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। लद्दाख में बीआरओ का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट पर पहली बार लहरा तिरंगा, मेगला बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई जा रही हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई खास शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शिव सिद्धि योग में मनाई जा रही हरियाली तीज, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रौनक, स्वर्ण झूले में विराजे बांके बिहारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: भारतीय नौसेना आज नए कीर्तिमान गढ़ रही है, हमारे पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर दुश्मन के परखचे उड़ाने वाली मिसाइलें हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास स्वर्णिम है, हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था।
4: ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, उस समय इस सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता के साथ सीधा व्यापार किया करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ सीधा व्यापार होता था और ये पूरा का पूरा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही हुआ करता था और उस समय जहाजों की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी।
3: 1960 के दशक में जब गुजरात के लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला था जिससे ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है, यानी ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा है और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेना बनाई।
4: चोल वंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और इनके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दोनों ने मिलकर नौसेना का खूब विकास किया था।
3: दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन हुआ करता था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार हुआ करता था और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजना पड़ते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्रीविजय राजवंश से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जीत हासिल की। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बड़ी भूमिका थी। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवी में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इनमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास एक ही एयरक्राफ्ट है। यानी इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं। और भारत की तटीय रेखा लगभग 11,098.81 किलोमीटर लंबी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। दरअसल अभी तक जितने भी प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे थे वो हिमालय क्षेत्रों में किए जा रहे थे, जहां चीन एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमेशा भारत के लिए खड़ा रहता है। लेकिन अब क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति से समंदर में भी अपना विस्तार कर रहा है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करे, उसमें आत्मनिर्भर बने और चीन को भी करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब तो INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की आर्टिलरी का इतिहास लगभग 196 साल पुराना है, जब 1827 में पहली बार बॉम्बे आर्टिलरी की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद इसका खूब विकास हुआ। इसके 3 डिविजन्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए तोप की तो वो मीडियम डिविजन का हिस्सा है। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई देता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मन पर हमला बोलना पड़ा, इसीलिए जरूरत महसूस हुई दूर से ही हमला करने वाली तोप की, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। जाता है कि आराम हराम है, कम से कम रक्षा के क्षेत्र में भारत इस नीति के साथ ही आगे बढ़ा और यही एक बड़ी वजह है कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ चुका है। आज हम रक्षा क्षेत्र में किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं है, बल्कि कई दूसरे मुल्क हम पर डिपेंड है। आज भारत में ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मुल्क भी उन्हें खरीदने के इच्छुक हैं। यानी भारत दूसरे देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। ऐसा ही एक हथियार है धनुष, जो कि लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है और ये भारत ने ही विकसित की है। धनुष एक होविट्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। DRDO 155 mm तोप को हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंट करके शूट एंड स्कूट प्रणाली विकसित कर चुका है। इसके साथ ही पूर्णतः स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट गाइडेड सिस्टम की रेंज और मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भविष्य के युद्धों को देखते हुए DRDO की प्रयोगशाला पारंपरिक बारूद के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हाइपरसोनिक स्पीड पर गोले दागने वाली रेलगन तकनीक की बुनियादी सब सिस्टम्स विकसित कर चुकी है। भारत
4: आत्मनिर्भर हो रहा है, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में। और इसी कड़ी में भारत ने अपने पहले स्वदेशी लाइट वेट टैंक जोरावर को भी रोल आउट कर दिया है। यहाँ ये भी आपको बताते चले कि डीआरडीओ और एलएनटी दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और लक्ष्य है साल 2027 यानी कि 2027 में से पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की योजना है।
3: स्वदेशी टैंक जोरावर को भारत चीन सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव और पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की ओर से तैनात टाइप 15 लाइट टैंकों को करारा जवाब देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। महज 19 महीनों के रिकॉर्ड समय में विकसित हुआ जोरावर 25 टन का टैंक है जो बेहद ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन बर्फीले रास्तों पर भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है।
4: भारत की आर्टिलरी यानी कि तोपखाना विभाग में पूरी तरह से स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर सीधे तौर पर चलते हुए भारत ने ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना लिए हैं कि भारत अब किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत के पास अपनी तोपें, अपने हथियार, अपनी गन्स, तमाम साजो सामान भारत के पास खुद का मौजूद है।
3: आर्टिलरी के साथ साथ भारत ने वायु शक्ति में भी इजाफा किया। मिराज और मिग के दौर से आगे निकलकर आज भारत खुद का फाइटर जेट तैयार कर रहा है। तेजस फाइटर जेट के साथ भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वहीं राफेल की शक्ति भी भारत के पास है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत के पास तीनों तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जिनमें S-400 सबसे ताकतवर है। और अब भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज या स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार करने में जुटा है। मौजूदा वक्त में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से सरहद पर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर रखा है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए दो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। टू लेयर का हवाई रक्षा कवच होने से ये फायदा होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने दो लेवल पर काम शुरू किया, पहला बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा अपनी तकनीक को विकसित करना।

डीआरडीए ने साल 2080 में इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत आकाश मिसाइल पर काम करना शुरू किया। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई और आज आकाश मिसाइल पूरी तरह से अपनी सेवाएं भारत को दे रही। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है।

0: भारत जानता है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सैनिकों के साथ नहीं बल्कि तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। यानी जिस देश के पास सबसे अच्छी तकनीक वो देश रण क्षेत्र में उतना ही भारी होगा। और इसीलिए भारत ने भी तकनीक पर ज्यादा जोर दिया और ऐसी ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे हमारे सैनिकों का कम से कम नुकसान हो, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, डेटा केंद्रित प्रणालियों और इंटीग्रेटेड कमांड पर आधारित तमाम तकनीकें विकसित की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणि के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल अब थल, नभ और जल के पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़कर मल्टी डोमेन ऑपरेशन जैसे कि साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। भारत अपनी आजादी के बाद का सबसे बड़ा सैन्य सुधार लागू करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत सेना की 17 अलग अलग कमानों को मिलाकर 3 प्रमुख एकीकृत थिएटर कमानों में बदला जा रहा है। एक ही कमांडर के नीचे काम करने से फैसला लेने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव हो पाएगा। चीन, पाकिस्तान और समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित 3 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे। पहला वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो प्रमुख रूप से पाकिस्तान पर फोकस करेगा। दूसरा है ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये मुख्य रूप से चीन पर फोकस करेगा। और तीसरा मैरीटाइम थिएटर कमांड, जिसके पास हिंद महासागर के बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली का जिम्मा होगा। अंडमान निकोबार का मौजूदा ट्राई सर्विस कमांड CDS के अधीन है और इसे ईस्टर्न या मैरीटाइम में शामिल करने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन मुख्य खतरा है। पाकिस्तान और चीन का सामना नॉर्दर्न कमांड को कैसे हैंडल करना है, ये भी एक चुनौती है।
1: आज के जमाने में कोई भी युद्ध मिलकर लड़ा जाता है, एयरफोर्स आर्मी ने भी मिलकर युद्ध लड़ते तभी जीत हासिल हो पड़ती है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि उनका कमांड स्ट्रक्चर भी इकट्ठे हो, मिलकर हो और

0: संचालित किए जाएंगे।
1: थिएटर कमांड का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की आए। इस मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद कारगर साबित होगा। थिएटर कमांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो और तीनों सेना एक मशीन की तरह काम कर सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सभी थिएटर कमांड्स के ऊपर होगा और सरकार को सैन्य सलाह देना मुख्य बिंदु होगा। वहीं हर थिएटर कमांड का नेतृत्व एक थिएटर कमांडर करेगा। ये कमांडर तीनों सेनाओं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में से किसी भी सेवा का 4 स्टार या फिर 3 स्टार जनरल हो सकता है। थिएटर कमांडर सीधे CDS को रिपोर्ट करेंगे। इससे तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका युद्ध लड़ने के बजाय अपनी अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने और संसाधन जुटाने तक सीमित हो जाएगी। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के मुताबिक दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है।
0: देखा जाए तो थिएटर कमांड CDS के अंडर काम करेंगी, जो प्रधानमंत्री से जो पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलेगी उसके द्वारा काम करेंगी। इनके नीचे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्ट्रक्चर रहेंगे, जहाँ जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उस प्रकार के ट्रुप्स का फोर्सेस का इस्तेमाल करके युद्ध में विजय हासिल की जा सकती है।
1: दुश्मन की साजिश हो या फिर हमले को नेस्तानाबूद करने में थिएटर कमांड की रणनीति बेहद कारगर साबित होती है। यही वजह है कि जल थल और नभ तीनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना निगरानी और साइबर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि भारत इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि आने वाला युग AI का है और आने वाले समय में किस तरीके से AI रण क्षेत्र में युद्ध की तकदीर बदल सकता है ये भारत को अच्छे से पता है। खास तौर पर ड्रोन्स पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ऐसे ऐसे AI ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं जो बड़े पैमाने पर निगरानी करके डेटा इकट्ठा करके हमारी सेना को तुरंत पहुंचाएंगे ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ड्रोन स्वॉर्म तकनीक कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन के साथ साथ भारत लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है। सेना का मेन फोकस अब सिर्फ भारत में ड्रोन असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वदेशी डिजाइन, घरेलू कंपोनेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक होना भी है। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के भीतर विशेष ड्रोन रेजिमेंट स्थापित करने की योजना बनाई है। ये रेजिमेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्वॉर्म ड्रोन्स और कामिकेज ड्रोन्स का संचालन करेगी। नागास्त्र 1 और अग्निवैग भारतीय सेना के आत्मघाती और लड़ाकू ड्रोन हैं, जो दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना को अपनी पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन फ्लीट नागास्त्र 1 की डिलीवरी मिल चुकी है, जिसे रणनीतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC के पास अग्रिम चौकी पर तैनात किया गया है। ये सैनिकों को 15 से 40 किलोमीटर के भीतर बिना अपनी जान जोखिम में डाले दुश्मन के बंकर को तुरंत उड़ाने की ताकत देता है।
0: देखा जाए तो भारत सरकार ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी महत्व दे रही है, क्योंकि आज का युद्ध ड्रोन का युद्ध है, रॉकेट का युद्ध है, मिसाइल का युद्ध। हमने देखा है यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ईरान के युद्ध में किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने एक तो बाहर से इम्पोर्ट में ड्रोन के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है। कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे उनका स्वदेशीकरण करने के लिए उनमें परमिशन दी गई ताकि देश में ही फिर बन सके। साथ साथ में भारत की जो कमी है प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें हमारे यंग और स्टार्टअप्स भी काफ़ी कर रहे हैं, और हर तरह के ड्रोन, चाहे वो सर्विलेंस ड्रोन हो, कामिकाजी ड्रोन हो, अटैक ड्रोन हो, हर तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए खुद को नेटवर्क केंद्रित, डेटा संचालित और नेटवर्क सेंट्रिक एंड टेक ड्रिवन फोर्स में बदल दिया है। अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और AI आधारित युद्ध प्रणालियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज भारत अपनी सीमाओं पर खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, डटकर खड़ा है। भारत दुनिया को ये बता रहा है कि अब भारत को रक्षा के क्षेत्र में किसी की जरूरत नहीं है और भारत

0: खुद की रक्षा खुद कर सकता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे के लिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है तो पूरे देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खास उन्होंने बनाई। भारत माता की जय के नारों के साथ जब अटारी वाघा बॉर्डर गूंजा तो मानो पाकिस्तान में जैसे खौफ पसर गया हो। वैसे तो यहां हर दिन शाम को समारोह होता है, लेकिन जब मौका जश्न आजादी का हो तो बीएसएफ के जवानों का ही नहीं, समारोह देखने आए देशवासियों का उत्साह भी देखते ही बनता है और देशभक्ति और उसकी अभिव्यक्ति भी अद्भुत नजर आती है।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: देश भर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक और दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस दमदार शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने 70 वाली ढलती उम्र में रुपहले पर्दे पर अपने थ्रिलिंग एक्शन और दमदार डायलॉग से सीने प्रेमियों के दिलों में बंटवारे की त्रासदी को करीने से उकेर दिया है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम की दमदार शख्सियत हैं, कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल। जी हाँ, 70 की दहलीज पर खड़े इस दमदार अभिनेता ने विभाजन की त्रासदी में इंसानियत और संवेदना का रंग भरकर पर्दे पर उसे जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर सीने प्रेमी कहने लगे हैं कि इंडस्ट्री के असली हीरो तो सनी पाजी ही हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल ने जो धमाल मचाया है उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 70 की दहलीज पर पहुंचा हुआ इंसान बॉलीवुड के इतिहास में सनी देओल को छोड़कर इस उम्र में इतना प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस देने वाला दूसरा कोई स्टार नजर नहीं आता।

0: पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एक शाहकार लेकर नमूदार हुई। बंटवारा 1947। विभाजन की त्रासदी पर बनी इस पीरियड ड्रामा के लिए निर्देशक राजकुमार संतोषी को शिद्दत से दरकार एक ऐसे दमदार अभिनेता की थी, जिसके भीतर थ्रिलिंग एक्शंस के साथ टचिंग इमोशंस को पर्दे पर परोसने की सलाहियत हो। कमाल देखे कि इस बेहद चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए राजकुमार संतोषी को भरोसा उस सनी देओल पर हुआ जो आज 70 की दहलीज पर खड़े हैं। राजकुमार संतोषी को पक्का भरोसा था कि सनी पाजी इस उम्र में भी घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों का करिश्माई इतिहास दोहरा सकते हैं, और हुआ भी यही है। एक्शन और इमोशंस के साथ सनी देओल की दमदार संवाद अदायगी ने बंटवारा 1947 को एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बना दिया है।
1: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
0: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की दमदार केमिस्ट्री से जेन जी बेशक नावाकिफ हो, लेकिन जेन एक्स यानी 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए लोग जानते हैं कि ये क्या ही जोड़ी है। निसंदेह बंटवारा 1947 जेन जी के लिए एक सुनहरा अवसर है घायल, दामनी और घातक जैसी फिल्मों के थ्रिल को इस युग में महसूस करने का।
2: देखिए राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल आवर फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं।
0: बंटवारा 1947 को ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है सनी देओल की फिल्में प्रमोशन से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के जरिए रफ्तार पकड़ती हैं। बंटवारा 1947 के दर्शक फिल्म देखने के बाद जिस तरह का एंथुजियास्टिक रिएक्शंस दे रहे हैं, तय है कि ये फिल्म भी घायल, दामनी और घातक वाली रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे सनी देओल ने बंटवारा 1947 के प्रमोशन में काफी मेहनत की है। फिल्म का ट्रेलर 28 जुलाई को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ था, जहां सनी देओल खुद अपने बेटे करण देओल के साथ पहुंचे थे। थिएटर में आए लोग अपने चहेते अभिनेता को अपने साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल जयपुर के अलावा मुंबई, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहरों में भी गए, और हर जगह सनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी।
2: हमारी जितनी फिल्में थी वो समाज को लेकर, फैमिली को लेकर उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की एक फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
0: सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद वाहिद एक्टर हैं जो 68, 69, 70 की उम्र में भी सुपर एक्शन फिल्मों में न सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं, बल्कि अपने थ्रिल और अपनी जोशीली आवाज से ब्लॉकबस्टर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। बंटवारा 1947 से पहले इसी साल 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी सनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट में भी सनी पाजी ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस और हाई जोश वाली डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जाट ने भी वर्ल्ड वाइड करीब 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई गदर 2 ने तो 691 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ये साबित कर दिया था कि ढलती उम्र का मतलब ये नहीं है कि करियर का भी अवसान हो जाए। अगर आपकी सोच जवां है तो 70 की उम्र में भी सिल्वर स्क्रीन पर सनी पाजी जैसा गदर मचाया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 44 साल पहले इसी सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग जब चल रही थी तो पिता धर्मेंद्र ने निर्देशक को ये निर्देश दिया था कि मेरे बेटे से एक्शन सीक्वेंस शूट मत कराना, क्योंकि धर्मेंद्र को इस बात का यकीन नहीं था कि नाजो से पला उनका बेटा एक्शन सीक्वेंस की दुश्वारियों को झेल पाएगा।
3: कहकर कहते कि लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था।
4: तो समझ गए थे उसी समय से।
3: हाँ नहीं, बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है और बेटा होते ही है कि जिस चीज पर रोका जाए वो ही करना है।
0: बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल की उम्र 25-26 की जवानी और रवानी वाली थी। ये वो उम्र होती है जब इंसान के भीतर पहाड़ का सीना चीर देने का हौसला होता है, पर सनी देओल तो बुजुर्गियत वाली उम्र में भी तूफान से टकराने का हौसला रखते हैं। हालांकि 70 की दहलीज पर खड़े होकर पर्दे पर तूफान मचा देने वाला ये इंसान निजी जिंदगी में बेहद सरल, सहज और साफगोई पसंद इंसान है। बॉलीवुड की रंगीन और मायावी दुनिया में 43 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद भी उनका नाम ना किसी विवाद से जुड़ा और ना ही साथी कलाकारों पर किसी तरह की बुलिंग या उन्हें इन्फ्लुएंस करने के ही आरोप इन पर लगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिस उम्र में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल को अपनी खुशनसीबी मानने लगते हैं, सनी देओल उस उम्र में ना सिर्फ लीड रोल में आ रहे हैं बल्कि अपने दमदार एक्शन से सिल्वर स्क्रीन पर समा बांध दे रहे हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि जो शख्स 25-26 की उम्र में एक चार्मिंग लवर वाय के किरदार में रुपहले पर्दे पर डेब्यू कर नौजवान आशिकों को बेताब कर देता है, वही शख्स 69-70 वाली उम्र में सुपर एक्शन हीरो के तौर पर वापसी कर गदर मचा देता है।
4: एक इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त को जब सनी देओल की बटवारा रिलीज हुई उसी दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हुई। इसे आप सनी देओल की खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती कुछ भी कह सकते हैं कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसी दिन बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े मेगा स्टार की भी फिल्म रिलीज होती है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन कमाल ये है कि अपनी हर चुनौतियों को पार कर सनी देओल हर बार बाजी मार ले जाते हैं।
0: निजी जिंदगी में बेहद सौम्य, शांत और मितभाषी रहने वाले सनी देओल रुपहले पर्दे पर गजब के अग्रेसिव, जोशीले और लाउड वोकल हो जाते हैं। जाती जिंदगी में चमक दमक, तड़क भड़क और पेज 3 विलासिता से कोसों दूर रहने वाला धर्मेंद्र का ये लाल सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले में न सिर्फ सीना तान के खड़ा हो जाता है बल्कि उन्हें चित्त भी कर देता है। चुनौतियों से इस इंसान का चोली दामन का रिश्ता रहा है। बॉलीवुड के इस हीमैन की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो इत्तेफाकन या फिर साजिशन किसी ना किसी दिग्गज स्टार के बड़े बजट वाली फिल्म से उसका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो जाता है। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। 14 अगस्त 2026 को जब सनी की बटवारा 1947 रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उसका इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से क्लैश हुआ। 10 अप्रैल 2025 को जब सनी देओल की जाट रिलीज हुई उसी दिन दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजीत कुमार की गुड बैड अगली भी रिलीज हुई। यार्ड से पहले सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी और इत्तेफाक देखिए कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन गदर 2 रिलीज हुई उसी दिन अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी रिलीज हुई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ही मैन का 2.5 किलो का हाथ अक्षय कुमार के महादेव अवतार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। सनी देओल की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। साल 2001 में जिस दिन गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उसी दिन आमिर खान की भारी भरकम बजट वाली लगान भी रिलीज हुई थी। तब खुद को सिल्वर स्क्रीन का मास्टर समझने वाले समीक्षकों ने लगान की धुआंधार तारीफ करते हुए गदर को गटर तक कह दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो लगान सुपर डुपर होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की रेस में गदर के मुकाबले काफी पीछे छूट गई। 19 करोड़ के बजट से बनी गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 24 करोड़ में बनी लगान गदर के मुकाबले करीब आधे का 58 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। गदर 1 को सिने प्रेमियों से मिले बेपनाह मोहब्बत का असर सनी देओल के दिलो दिमाग पर ऐसा है कि 22 साल बाद जब गदर 2 बनाने का मौका मिला तो वे डर रहे थे कि 66 साल की उम्र में गदर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएंगे या नहीं।
3: देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए।
0: सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस के रिंग में सिर्फ एक ही बार आमना सामना नहीं हुआ है। 22 जून 1990 को जब आमिर खान की दिल रिलीज हुई उसी दिन सनी देओल की घायल भी रुपहले पर्दे पर उतरी थी। आमिर खान के मशविरे के बाद भी सनी देओल घायल का रिलीज डेट आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। दिलचस्प ये है कि दिल और घायल दोनों उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्में साबित हुई। घायल में सनी देओल बॉलीवुड के नए एंग्री यंग मैन के अवतार के रूप में सामने आए और उनके हर एक एक्शन और दमदार डायलॉग पर दर्शक रोमांच से भर उठे। नवंबर 1996 में सनी देओल के मुकाबले एक बार फिर आमिर खान खड़े थे। 8 नवंबर 1996 को सनी देओल की घातक रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 नवंबर 1996 को आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीन फाड़ सफलता के बावजूद घातक उस साल की 4 सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 1995 से 1997 के बीच सनी देओल ने घातक, जीत, अजय, जिद्दी और बॉर्डर के रूप में एक के बाद एक लगातार 5 हिट फिल्में दी। 1997 में आई मल्टी स्टार और बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी उसका असर बरकरार है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बॉर्डर में मेजर कुलदीप के किरदार को सनी देओल ने जिस जिंदा दिली के साथ निभाया वो बॉलीवुड का कल्ट बन गया। 1993 में आई दामिनी में एक शराबी वकील के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अपने बेनजीर बेमिसाल अभिनय के दम पर सनी देओल ने फिल्म में ऐसी जान फूकी कि थिएटर्स में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इस फिल्म में सनी देओल सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर थे, लेकिन पर्दे पर फर्स्ट अपीयरेंस से ही ऐसे छा गए कि लीड एक्टर ऋषि कपूर का किरदार कहीं टिक ही नहीं पाया। आज 3 दशक बाद भी दामिनी के डायलॉग्स गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के चौक चौबारों तक बोले और सुने जा सकते हैं। सनी देओल का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अपने अभिनय और जिंदा दिली के दम पर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता निर्देशकों को बहुत ज्यादा मशक्कत या 3 तिकड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनी देओल की ज्यादातर फिल्में रिलीज के बाद खुद ही अपना प्रमोशन शुरू कर देती हैं। गदर एक प्रेम कथा सनी के इस स्पेशल फीचर का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि गदर भारत में ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अनिल शर्मा गदर की सफलता को ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं।
5: क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 800 चलते थे, रात को 3 बजे कभी, 6 बजे कभी, जैसे आपने बोला 5,000 आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था थिएटर में, अगर 1,000 आदमी की सीट है तो 1,000 आदमी खड़े रहते थे, ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है, मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि बेताब के लवर वॉयस से शुरू हुआ सन्नी का सफर सोहनी महिवाल के कल्ट लवर और राम अवतार के ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे दोस्त के रास्ते घायल के अग्रेसिव यंगरी यंग मैन के पड़ाव पर पहुंचा और वहां से जीत, जिद्दी, अजय, घातक और बॉर्डर के आयरन मैन से होकर आगे बढ़ते हुए गदर के तारा सिंह के रूप में शिखर पर पहुंचा। वही तारा सिंह 66 साल की उम्र में जब दोबारा पर्दे पर उतरा तो एक बार फिर गदर मचा दिया।
4: आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपनी दमदार आवाज से थिएटर की दरों दीवारों में वाइब्रेशन पैदा कर देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं। जाती जिंदगी में सनी को खटपट या फिर तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार किसी से खटपट या फिर खटका लग गया तो सनी पाजी अपनी राहें जुदा कर लेते हैं।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल अक्सर उफान मारते नजर आते हैं, तूफान मचाते नजर आते हैं, लेकिन जब आप सनी की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन के साहिल से निकलकर निजता की गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहद सरल, सौम्य, सादगी से भरा इंसान मिलेगा। इसकी बेमिसाल बानगी मार्च 2023 में तब देखने को मिली जब सनी देओल गदर 2 की शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। सनी ने गांव की सड़क पर बैलगाड़ी चलाते एक किसान को रोका तो देखिए क्या हुआ।
6: बहुत बढ़िया, क्या ले आए हैं?
7: ये भुस्सा है जवारी का।
6: ठीक है,
7: जानवर को खाने के लिए।
8: नमस्कार,
7: हेलो सर, मजे में।
8: हाँ बढ़िया,
6: ऊपर आ जाएं साहब।
7: अब आपको ऊपर आना है?
6: हाँ,
7: संभल के खाला लगे।
6: सर भेजो,
7: मैं 4 जा रहा हूँ। आप सनी देओल जैसे लगते हैं। अरे बाप रे, अरे सर
8: कैसे आप?
7: हाँ मजे में सर, आवाज भी वही, मैं तो बोल रहा हूँ वही दिखते हैं तो क्या बात है।
8: हमारी बहुत अच्छा लग रहा है,
7: अच्छी बात
8: है। तो मुझे अपना गांव और सब याद आ जाता है।
7: अच्छी बात है सर,
8: एकदम वैसे ही आपके, पंजाब आपके, ऐसा नहीं है।
7: आपका वीडियो हम देखते हैं, आपके पिताजी की वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, कितना होगा।
0: बॉलीवुड की विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया में सादगी का ऐसा सौंदर्य शायद ही देखने को मिले। सनी देओल ने खुद इस वीडियो को 5 मार्च 2023 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। दरअसल बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक पर्दाफाड़ हिट फिल्में देने वाले सनी देओल निजी जिंदगी में तड़क भड़क, चकाचौंध से दूर एक इंतहाई सुकून पसंद इंसान है। बॉलीवुड की माया नगरी की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने और वहाँ हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले पेज 3 चलन से सन्नी बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। जिस बॉलीवुड में शराब शबाब का कल्चर सर चढ़ कर बोलता है, उस बॉलीवुड से पैबंद होने के बाद भी सन्नी देओल अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते।
9: नहीं कि मतलब वो नहीं कि पार्टी नहीं करता, पार्टी मैंने जब जब छोटे थे उस वक्त ऑब्वियसली सर्कल उस वक्त था,
10: छोटे मतलब जब आप यंग
9: थे। हाँ मतलब
10: यंग का पहला वाला पार्ट,
9: पहले वाले पार्ट में मैं ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, तो कॉलेज में हम लोग बदमाशी भी करते थे, पार्टी भी करते, सब कुछ करते थे। हाँ लेकिन अल्कोहल सिगरेट वो मैं नहीं करता था। ये नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है, ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद जो सिर दुखता है उसका भी कोई मतलब नहीं, सो व्हाई डू इट।
0: शराब सिगरेट से दूर रहने वाले सन्नी को सादगी तो पसंद है, लेकिन खटपट या तकरार उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक बार जिसके साथ खटका लग गया, सन्नी ने दोबारा उस ओर देखना गवारा नहीं समझा। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को लेकर उनके मन में खटका मार गया। उसके बाद 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, सन्नी ने ना तो शाहरुख के साथ कभी काम किया और ना ही यशराज के बैनर तले कोई फिल्म की। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सन्नी का आवेश इतना बढ़ गया था कि अपनी पतलून की जेबें फाड़ ली थी।
3: एक बार हुआ था, वहाँ कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं शूटिंग कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर सीनियर थे तो मैं सोचा भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन सब बोल रहे नहीं आप जो कर रहे हैं गलत हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उस गुस्से में हाथ जेब में डाल दिए और वो गुस्सा मेरा जेब निकला तो पता चला मेरा ये सब फट गया।
0: लेट 80s में अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करने वाले सन्नी को कोई बात चुभ गई तो 35 साल बीत जाने के बाद भी अनिल कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीले फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनिल कपूर ने कुछ मनमानी कर दी जिससे धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। धर्मेंद्र की नाराजगी तब और बढ़ गई जब एक ट्रेड पेपर ने जोशीले के पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सन्नी देओल से ऊपर लिख दिया। पिता धर्मेंद्र की नाराजगी सन्नी के मन में अनिल कपूर के प्रति नफरत की वजह बनी और राम अवतार की शूटिंग के दौरान एक सीन में सन्नी ने मारे गुस्से के अनिल की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिश्तों की दुनिया में बेहद चूजी रहने वाले सनी देओल के मन में अपने मरहूम पिता धर्मेंद्र के प्रति बेपनाह सम्मान है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन सन्नी आज भी उन्हें अपना ऑल टाइम बेस्ट हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि पिता पर फिल्माया गया ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास सन्नी देओल का फेवरेट सॉन्ग है। दिलचस्प ये है कि अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी नहीं बल्कि तनुजा उनकी ऑल टाइम फेवरेट है।
4: बंदे मेरे दम में आज मैंने आपको सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

आज देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सी लिंक हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सी लिंक तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सी लिंक तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक हैं।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: 500 साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा। चांदी की भव्य पालकी में विराजे रामलला अपने भाइयों संग कुबेर टीला पर झूला विहार के लिए पहुंचे। फूलों से सजी पालकी में निकली यात्रा, विशेष अनुष्ठान के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अयोध्या के मंदिरों में झूलनोत्सव की धूम, पूजा अनुष्ठान और आरती हुई। भजन कीर्तन से भक्तिमय हुई रामनगरी, जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी अयोध्या। मथुरा में हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोले में विराजे बांके बिहारी, दर्शन के लिए वृंदावन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्वर्ण हिंडोले में ठाकुर जी के अनुपम दर्शन, स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोला बना आकर्षण का केंद्र, ठाकुर जी ने भक्तों को झूला झूलते हुए दर्शन दिए। बांके बिहारी के झूलन उत्सव में उमड़ा जन सैलाब, हरियाली तीज पर सजा बांके बिहारी मंदिर, सावन के रंगों से हुआ भव्य श्रृंगार। हरे रंग की पोशाक में नजर आए ठाकुर जी, भक्तों ने किए मनमोहक दर्शन। ठाकुर जी को लगाया गया घेवर का भोग, हरियाली तीज पर निभाई गई विशेष परंपरा, ठाकुर जी की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु। जयपुर में धूमधाम से निकली तीज माता की शाही सवारी, सिटी पैलेस से शुरू हुआ भव्य जुलूस। 400 किलो की चांदी की पालकी में तीज माता, रासी अंदाज में हुआ नगर भ्रमण, त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई सवारी। शाही जुलूस में देखा रासी नजारा, पारंपरिक वैभव ने मोहा लोगों का मन। 150 से ज्यादा कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां, तीज माता के दर्शन को उमड़ा हुजूम। लोक कलाकारों ने बिखेरी संस्कृति की छटा, राजस्थान की लोक परंपरा देखी जीवंत, छोटी चौपड़ पर हुई विशेष पूजा। देव के गंगेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत नजारा, अरब सागर करता है भगवान शिव का जलाभिषेक। समुद्र की लहरें पहुंचती हैं शिवलिंग तक, ज्वार के दौरान होता है प्राकृतिक अभिषेक। गंगेश्वर महादेव में विराजमान है 5 शिवलिंग, पांडवों से जुड़ी जाती है स्थापना की परंपरा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है तट, श्रद्धालुओं को मिलता है आध्यात्मिक अनुभव। महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं भक्त, द्वीप का अनोखा धार्मिक पर्यटन स्थल। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति का रंग, आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ के जवानों की हाई वोल्टेज कदम थाल, ऊंचे कदमों ने दर्शकों में भरा जोश, बीटिंग द रिट्रीट में देखा अनुशासन। बीएसएफ की महिला प्रहरियों का दमदार प्रदर्शन, जोशीले कदम ताल बना आकर्षण का केंद्र। देशभक्ति गीतों पर जमकर झूमे कलाकार, लोक नृत्यों ने बांधा समा। कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति ने जीता दर्शकों का दिल, ढोल की थाप पर झूमे दर्शक। बीएसएफ के जवानों ने हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाए, महिला प्रहरियों ने कर्तव्य से किया मंत्रमुग्ध। निहंगों ने तलवारबाजी की भव्य प्रस्तुति दी, तिरंगों से पटा अटारी स्टेडियम। बीएसएफ डॉग स्क्वाड ने दिखा हैरतअंगेज कर्तव्य, कमांड पर कर्तव्य करते दिखे प्रशिक्षित डॉग्स। बुलेट पर बीएसएफ के जवानों का रोमांचक प्रदर्शन, चलती बाइक पर दिखाया अद्भुत संतुलन। डीआईजी एसएस चंदेल ने फहराया तिरंगा, अटारी बॉर्डर पर गूंजा राष्ट्रगान, हर तरफ उत्सव का रंग। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नारी शक्ति की दिखी झलक, लड़कियों ने टाइकोंडो का किया अद्भुत प्रदर्शन। लड़कियों ने मार्शल आर्ट से सबको चौंकाया, लट को तेजी से घुमाती और वार करने का प्रदर्शन करती दिखी। बीएसएफ के जवानों ने किया शक्ति का प्रदर्शन, हाई किक मार्च ने बढ़ाया रोमांच। बीएसएफ के जवानों ने दिखाया दमदार अंदाज, मूंछों पर ताव देते दिखे जवान। सूर्यास्त के साथ झंडा उतारने की रस्म, सम्मान के साथ उतरे दोनों देशों के ध्वज। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मेजबानी। स्वतंत्रता दिवस पर देखा खास जमावड़ा, प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज नेता पहुंचे राष्ट्रपति भवन, पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी संग एट होम रिसेप्शन में शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हुए शामिल। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन बने खास मेहमान, राष्ट्रपति भवन में मिला विशेष निमंत्रण। राष्ट्रगान के साथ एट होम रिसेप्शन की शुरुआत, राष्ट्रपति भवन में गूंजा वंदे मातरम। आज पूरे देश में मनाया गया आजादी का जश्न, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले पर नारी शक्ति की भी दिखी झलक, ध्वजारोहण सैन्य प्रोटोकॉल में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान रही मौजूद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि हुए शामिल, 100 एनसीसी और 100 माय भारत वॉलंटियर्स ने भी लिया हिस्सा। लाल किले पर प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा परिसर। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। लाल रंग की बंधेज पगड़ी बांधे लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उनका स्वागत। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आजादी के जश्न में दी गई 21 सोपों की सलामी, भारत माता की जय से गूंज उठा इलाका। लाल किले की प्राचीर से उड़ाए गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे देशभक्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। आसमान में ऊंचाई छूते ये गुब्बारे। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे बच्चे। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित। दोहराया 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के गान पर भी बोले प्रधानमंत्री। देश के लिए बेहद गर्व का पल बताया। पीएम मोदी ने कहा युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए बड़ी योजना की तैयारी। सरकार का करोड़ों युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर दिया जोर। बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराया। लखनऊ में विधान भवन में हुआ भव्य स्वतंत्रता दिवस आयोजन। सीएम योगी ने फहराया राष्ट्रध्वज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी आजादी की मुबारकबाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी फहराया तिरंगा। ली परेड की सलामी। देशवासियों को दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को किया याद। हैदराबाद में ओवैसी ने भी स्थानीय नागरिकों और बच्चों के साथ मिलकर फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान में भी भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परेड पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम ने फहराया ध्वज। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ली परेड की सलामी। फहराया तिरंगा। आजादी के जश्न के मौके पर छत्तीसगढ़ से आई अनूठी तस्वीर। बस्तर के 92 गांवों में पहली बार शान से फहराया गया तिरंगा। जहां कभी नक्सलवाद का खौफ था वहां लहराया तिरंगा। राष्ट्रीय पर्व पर दिखा नया उत्साह। गाजियाबाद के भरत राम ग्लोबल स्कूल में मना स्वतंत्रता दिवस। देशभक्ति गीतों पर थिरके बच्चे। भरत राम ग्लोबल स्कूल में फहराया गया तिरंगा। तिरंगे को दी गई सलामी। स्केटिंग में छात्रों ने दिखाया दम। प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बच्चों के जोश ने बढ़ाई रौनक। लद्दाख में बीआरओ का नया रिकॉर्ड। 19,400 फीट पर पहली बार लहरा तिरंगा। मेगला बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। मेगला दर्रे पर गूंजा देशभक्ति का जज्बा। बीआरओ की माउंटेन टेमर्स ने किया कमाल। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 35,000 वर्ग फुट का तिरंगा। 15,000 से ज्यादा छात्र और लोग हुए इसमें शामिल। भव्य तिरंगा रैली ने रचा नया रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया एशिया बुक और इंडिया बुक में दर्ज करवा अपना नाम। मुजफ्फरपुर में 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत। वेल्स को 3-1 से हराया। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागे। संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खोला खाता। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें। बादलों के बीच दिखा मनमोहक दृश्य। पहाड़ों पर छाई धुंध ने बढ़ाई खूबसूरती। यूपी में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन। पनीर घी खोया पर प्रतिबंध। जर्मनी की जिमनास्ट ने जीता तीसरा वर्ल्ड टाइटल। डारिया बनी वर्ल्ड चैंपियन। घरेलू दर्शकों के सामने वॉरफोमी जीव का जलवा दिखा। 119.500 स्कोर के साथ जीता गोल्ड। फ्रैंकफर्ट में गूंजा जर्मनी का जश्न। जिमनास्ट डारिया ने तीसरी बार जीता ऑल अराउंड खिताब। बुल्गारिया की निकोलोवा कोसलवा, इटली की सोफिया रैफली ने जीता ब्रॉन्ज, पोडियम पर दिखी तीन बड़ी चैंपियंस। डारिया के गोल्ड पर झूमे फैंस, तालियों से गूंज उठा स्टेडियम, तीनों जिमनास्ट ने हासिल किया 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का कोटा। कैलिफोर्निया में अगली डॉग्स का अनोखा मुकाबला, सेंटा रोजा में जुटे डॉग लवर्स, 85वीं सालगिरह पर

0: अगलीएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट ने जीता खास संदेश, सुंदरता हर रूप में होती है, रेस्क्यू डॉग्स को गोद लेने की भी अपील। चीन के हांगकांग में धूमधाम से मना पांडा ट्विंस का दूसरा बर्थडे, पांडा जिया जी और डेजे ने मनाया जन्मदिन। खास अंदाज में सजाया गया पांडा का ठिकाना, बांस से लिखा गया हैप्पी बर्थडे। आइस बर्थडे केक बना आकर्षण का केंद्र, पांडा को देखने उमड़े बड़ी संख्या में फैंस। पांडा ट्विंस के एक झलक को बेताब फैंस, लोगों ने खींची तस्वीरें और बनाए कई वीडियोस। हाथों से बनाए गिफ्ट्स लेकर पहुंचे प्रशंसक, पांडा ट्विंस के लिए देखा खासा उत्साह। पोलैंड में वर्जिन मैरी की विशाल प्रतिमा यूरोप की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल। पोलैंड के कोनोटोपियो में तैयार हुआ विशाल स्मारक, मूर्ति देखने लोगों की बड़ी उत्सुकता। मजबूत कंक्रीट से बनी है प्रतिमा, मूर्ति में वर्जिन मैरी की आकृति और मुकुट शामिल। ड्रोन कैमरे से वर्जिन मैरी की विशाल प्रतिमा की भव्य तस्वीर आई सामने, ऊंचाई से दिखेगा आसपास का शानदार नजारा। अरबपति दंपति ने दिया निर्माण में योगदान, स्थानीय लोगों ने भी की आर्थिक मदद।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही हैं। तो इस साल कई नई परंपराओं का शुभारंभ किया गया।

देश की आजादी का दिन, शहीदों के नमन का दिन। आज देश जिस मुकाम पर है उस तक पहुंचाने वालों को याद करने का दिन। हर साल का स्वतंत्रता दिवस खास तो होता ही है, लेकिन इस बार लाल किले के प्राचीर पर जब वंदे मातरम गूंजा तो पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। लाल किले पर हुए आजादी दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। वंदे मातरम का गायन आज ऐसे समय में हुआ जब देश वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत का जश्न मना रहा है। कैडेट और वॉलंटियर्स को लाल किले के प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया गया था और उन्होंने उत्सव के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम शब्द की आकृति बनाई थी। ज्ञान पथ पर विकसित भारत 2047 की थीम को दर्शाने वाले कटआउट भी लगाए गए थे। इससे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम के संबोधन की शुरुआत और समापन पर भी इसे बजाया गया था। ये पहली बार था जब स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का पूरा वर्जन शामिल किया गया। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश देखता है। इस बार समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे अनुशासित मुद्रा में खड़ी भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने सभी का ध्यान खींचा। ध्वजारोहण के आधिकारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता कर रही कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। आज भारतीय महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर देश के बड़े राष्ट्रीय समारोहों तक हर जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही थी। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी का साफा भी इस बार चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी का पहनावा और विशेष रूप से उनकी राजस्थानी बंधेज पगड़ी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। उनके साफे में गहरे लाल रंग की पगड़ी पर सफेद रंग के छोटे छोटे बिंदुओं की कलाकारी थी। खास बात यह है कि ये साफा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवी सिंह की ओर से तैयार किया गया है, जो पिछले 13 साल से पीएम मोदी को राष्ट्रीय पर्वों पर साफा पहनाने और तैयार कर रहे हैं। वैसे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का साफा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया गया और ये भी दिखाया गया कि युवा पीढ़ी किस तरह से भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: देश भर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम जानेंगे कि राहु आपके जीवन पर किस किस तरह से, किस किस प्रकार से असर डालता है, वो शुभ होते हैं या फिर अशुभ, और इन दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या कुछ हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अपने शरीर को और वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं तो राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा।
0: चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि 16 अगस्त 2026 यानी रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो राहु नामक ग्रह है वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस प्रकार से आपके ऊपर असर दिखाता है। राहु अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो व्यक्ति के स्वभाव पर कैसे असर डालता है। राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है ऐसे लोग आम तौर पर चालाक होते हैं, झूठ बोलने में तेज होते हैं और जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर जाते हैं। इनकी जो युवावस्था है, इनकी जो यंग एज है वो संघर्ष में बीतती है। आम तौर पे राहु वाले नौजवानी में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव पर होगा तो आपके अंदर चालाकी होगी और आप जरा से फायदे के लिए गलत रास्ते पर, अशुभ मार्ग पर चलेंगे और इसके गंभीर परिणाम आपको आगे जीवन में मिल सकते हैं।
0: तो चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए, अब वक्त हो चला है अपना अगला सवाल पंडित जी से पूछने का। राहु का प्रभाव व्यक्ति के काम और रोजगार पर कैसे पड़ता है?
1: राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर और किसी व्यक्ति के रोजगार पर कैसा पड़ता है? देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर होगा तो आम तौर पर आप चमड़े, शराब, नशीले पदार्थ और कभी कभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे। राहु का प्रभाव अगर करियर पर हो तो व्यक्ति अचानक धन कमाना चाहता है और अचानक बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। राहु वाले लोग आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति के क्षेत्र में दिख जाते हैं। काम और रोजगार कितना भी अच्छा इनका क्यों ना हो, इनके करियर में, इनके रोजगार में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, बेटिंग इन सब मामलों में जाते हैं। कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। इनका रोजगार पूरी तरह से कभी स्थिर नहीं हो पाता।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन डीजी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल।
1: कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1983। जन्म का समय दोपहर में 1:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि 1 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई है, आगे नौकरी मिलने की क्या संभावना है और भविष्य मेरा कैसा रहेगा? नीरज, आपकी कुंडली में नई नौकरी मिलने का समय फिलहाल चल रहा है। संभावना ज्यादातर बनती है कि अक्टूबर नवंबर में आपको नई नौकरी मिलेगी, लेकिन गुड़गांव छोड़ना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। आने वाला समय आपके करियर के लिए बेहतर है और नौकरी में आप तरक्की करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए, आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहने वाला है।
1: जी, अगला प्रश्न अमित जी ने हमें लिखा है और अमित जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1991। जन्म का समय सुबह के 7:35, जन्म स्थान है इंदौर। अमित कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अमित, आपकी कुंडली में विवाह होने में अभी भी थोड़ा विलंब है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2027 के बाद वर्ष 2027 में ही आपकी शादी होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और विवाह आपका इंदौर या इंदौर के आसपास ही होगा, ये संभावना बन रही है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु का प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
1: देखिए, राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर, आपके रोजगार पर पड़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। क्या करता है राहु पारिवारिक जीवन में? अगर राहु का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता और अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। विवाह के बाद जिंदगी में तनाव बढ़ता है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है अगर राहु का प्रभाव हो, और विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह के बाद के संबंध भी डेवलप हो सकते हैं। राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती या बेवजह के मुकदमों में, बेवजह के झंझटों में फंस जाती है। राहु का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव होगा तो संतान उत्पत्ति में देरी होगी और एक संतान समस्या का कारण जीवन में बनेगी। यानी राहु अगर आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर कष्ट होगा, वैवाहिक जीवन भविष्य में तनाव का कारण बनेगा और कभी कभी दो शादियां होने की नौबत आ जाएगी।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि राहु का असर हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता है और इससे किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
1: देखिए, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। राहु का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है और राहु किस तरह की बीमारियां देता है? राहु अगर रोग देगा, बीमारियां देगा, शरीर पर असर डालेगा तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। त्वचा और मुख के गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा आपकी बीमारियों पर तो ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोसिस ना हो और बीमारी पकड़ में ना आए। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। राहु का अगर प्रभाव होगा तो सबसे पहले बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी और दूसरे नंबर पर छोटी सी शुरुआत होगी, लेकिन ये बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ जाएगी।
0: और आगे बढ़ें उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आप पंडित जी से जानते हैं कि राहु का शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है।
1: देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल राहु आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही डालेगा, केवल निगेटिव असर ही डालेगा। राहु का कुछ लोगों के जीवन पर शुभ प्रभाव भी होता है। तो अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो ये क्या करेगा? अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है और व्यक्ति घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है, घर से दूर जाकर तरक्की करता है। मध्य आयु के बाद 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को राजनैतिक सफलता भी मिल जाती है। अगर राहु शुभ हो और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। और राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है और ऐसे लोग जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। राहु अगर कुंडली में शुभ है, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इनको सही रास्ता मिले तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। राहु की शुभता वाले लोग सामान्य रास्ते पर नहीं चलते, नए रास्ते पर चल करके दिशा बनाने का प्रयास करते हैं।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय क्या कुछ हैं।
1: अगर आपकी कुंडली में आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवा लीजिए। एक अंगूठी बनवा लीजिए और इस अंगूठी को धारण करिएगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए, या अगर आपके गुरु ने ईष्ट मंत्र दिया है तो इसका नियमित जप आपको करना चाहिए। और अगर राहु का प्रभाव अशुभ है आपके ऊपर तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद।
0: और आगे बढ़ने से पहले जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में विवाद से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न सुगंधा सिंह ने हमें लिखा है और सुगंधा जी वाराणसी से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1980। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। सुगंधा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भविष्य में बेहतर बना रहे? सुगंधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने डाइजेशन का और अपनी हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, और स्वास्थ्य के मामले में जून

0: स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी हमें मेल लिखती हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 8:45। जन्म का स्थान है छपरा बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ है लेकिन संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, तो संतान की प्राप्ति कब तक हो सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? श्वेता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संतान प्राप्ति का समय चल रहा है और अगर आप प्रयत्न करें तो फरवरी 2027 के पहले आप कंसीव कर जाएंगी और आने वाला समय आपका बेहतर है, तो संतान को लेकर के चिंता की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक पीला पुखराज, लगभग 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे अगर धारण कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 16 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, हालांकि विवाह के मामले में अभी विलंब होगा। इस साल में स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याओं से बचना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य को जल देते समय उसमें अक्षत और गुड़ ये खाने पीने की चीजें डाल सकते हैं? देखिए, सूर्य को जल देना प्रकाश और रंगों के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें अलग अलग रंग जब डाले जाते हैं जैसे हल्दी, रोली, सिंदूर, तो इससे जल का प्रभाव अलग हो जाता है, जल का प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन इसमें गुड़ डालना या चावल डालना तार्किक नहीं है और ये किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता।
1: और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में बढ़ते हुए जान लेते हैं 16 अगस्त 2026 यानी रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 16 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की आपकी गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है तुला। आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका मन हमेशा बेहतर बना रहेगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: बताते हैं घर में खुशहाली लाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है। रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर कर रखिए और जब पूजा कर लें पूजा के बाद 5 मिनट के बाद उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। बचा हुआ पानी पौधे में डाल दीजिए। अगर ऐसा दोनों समय करें सुबह और शाम दोनों वेला अगर ऐसा करें तो आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

आज देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सीलिंग हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सीलिंग तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सीलिंग तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही हैं। तो इस साल कई नई परंपराओं का शुभारंभ किया गया।

0: देश की आजादी का दिन, शहीदों के नमन का दिन। आज देश जिस मुकाम पर है उस तक पहुंचाने वालों को याद करने का दिन। हर साल का स्वतंत्रता दिवस खास तो होता ही है, लेकिन इस बार लाल किले के प्राचीर पर जब वंदे मातरम गूंजा तो पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। लाल किले पर हुए आजादी दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। वंदे मातरम का गायन आज ऐसे समय में हुआ जब देश वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत का जश्न मना रहा है। कैडेट और वॉलंटियर्स को लाल किले के प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया गया था और उन्होंने उत्सव के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम शब्द की आकृति बनाई थी। ज्ञान पथ पर विकसित भारत 2047 की थीम को दर्शाने वाले कटआउट भी लगाए गए थे। इससे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम के संबोधन की शुरुआत और समापन पर भी इसे बजाया गया था। ये पहली बार था जब स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का पूरा वर्जन शामिल किया गया। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश देखता है। इस बार समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे अनुशासित मुद्रा में खड़ी भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने सभी का ध्यान खींचा। ध्वजारोहण की आधिकारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता कर रही कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। आज भारतीय महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर देश के बड़े राष्ट्रीय समारोहों तक हर जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण किया तो इस अवसर पर 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी हुई। ये तोपे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बेहद कारगर रही थी। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी का साफा भी इस बार चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी का पहनावा और विशेष रूप से उनकी राजस्थानी बंधेज पगड़ी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। उनके साफे में गहरे लाल रंग की पगड़ी पर सफेद रंग के छोटे छोटे बिंदुओं की कलाकारी थी। खास बात यह है कि ये साफा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाली देवी सिंह की ओर से तैयार किया गया है, जो पिछले 13 साल से पीएम मोदी को राष्ट्रीय पर्वों पर साफा पहनाने और तैयार कर रहे हैं। वैसे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का साफा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया गया और ये भी दिखाया गया कि युवा पीढ़ी किस तरह से भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: स्वतंत्रता की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है तो पूरे देश के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर संस्कृति, देशभक्ति और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां बीएसएफ के जवान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खास उन्होंने बनाई। भारत माता की जय के नारों के साथ जब अटारी वाघा बॉर्डर गूंजा तो मानो पाकिस्तान में जैसे खौफ पसर गया हो। वैसे तो यहां हर दिन शाम को

देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवान की किस कदर छाई हुई है।

देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेटकर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजा

ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों, केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहां डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात बस्तर की कर लेते हैं। जहां कभी खौफ पसरा रहता था, वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले के 92 गांवों के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि यहां पर आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां कभी नक्सलवाद का खौफ रहता था, राष्ट्रीय पर्व की खुशियों पर भारी पड़ता था। इस बार इन गांवों में आजादी का जश्न डर के साए में नहीं बल्कि तिरंगे की शान के साथ मनाया जा रहा है। बदलाव की बयार इन गांवों में बहने लगी है और सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की पहुंच भी गांव तक बढ़ी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक आज गांव में लहराता तिरंगा नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गांव के बच्चे और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के साथ आज गुलाबी नगरी की रौनक देखते ही बन रही थी। यहां पर हरियाली तीज का उल्लास भी देखने को मिला। जयपुर की करीब 299 साल पुरानी तीज की शाही सवारी की परंपरा यहां निभाई गई। यहां के सिटी पैलेस से ये यात्रा निकाली गई। तीज माता 400 किलो चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकली। सिटी पैलेस से शुरू हुई यह शोभा यात्रा त्रिपोलिया और छोटी चौपड़ होते हुए तालकटोरा पहुंची। खास बात यह है कि तीज की इस पारंपरिक सवारी में 100 से ज्यादा लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देते हुए मां की शोभा यात्रा को देखने के लिए वो यहां उमड़े। बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक भी यहां मौजूद थे। इस खास तीज उत्सव को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। मां की सवारी आपके बीच में है, आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब बात वृंदावन की कर लेते हैं। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाली तीज के मौके पर भगवान बांके बिहारी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर विशाल स्वर्ण हिंडोले में झूला झुलाया जा रहा है। अपने आराध्य भगवान बांके बिहारी की इस अनुपम छवि के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाली तीज के त्योहार का मथुरा वृंदावन में विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हजारों वर्ष पहले पहली बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर वर्षा ऋतु में कृष्ण ने राधा संग झूला झूलने का आनंद लिया था। तब से मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में एक दिन एक विशाल स्वर्ण हिंडोला उनका सजाया जाता है। 32 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे सोने और चांदी से बने इस विशाल झूले में भगवान बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं और उनके दोनों तरफ खड़ी सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन ऑपरेशंस का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ 70 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
1: मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
0: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
1: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर ली।
0: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
2: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों ने निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
0: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर बेचें। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
0: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
2: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और खास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जहाँ उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाते हैं। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवानगी किस कदर छाई हुई है।

देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेटकर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहां डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांचों साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं। 80वां आजादी दिवस है और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या? आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, जेंजी का बहुत बोलबाला है। हर तरफ जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियन को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई, हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की इस टोली को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बार भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए, और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाईं तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई। जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत। अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड। यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोभित, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या? एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं। राजपाल, आप ही से शुरू करूंगी। आजाद हैं हम?
1: हाँ, आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों?
1: जेंजी सड़कों पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
0: जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया।
1: जेंजी हैप्पी भी है ही है इंडिया के साथ।
0: जेंजी हैप्पी है, शोभित।
2: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
0: अलंकृत,
3: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी हाँ। पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया, हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
4: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे। हमें
0: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी,
5: देखिए, अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
5: ये किसी एक स्वस्थ परिवार के, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
6: मैम, बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो, लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या
6: जेंजी की सबसे अच्छी बात है।
0: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
7: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ। हाँ। मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
7: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज आजादी? जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजादी, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली। आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी, समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
2: देखिये, मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि, जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
3: स्वागत है।
2: कि आजादी है नहीं एक का शासन जी। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है, तो आप आजाद नहीं, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भीज सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं, और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना। आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
5: क्या बात है, बहुत खूब।
2: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मी बाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
5: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
5: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है। इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
6: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे।
5: क्या बात है।
6: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंत्र प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए, अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। अच्छा। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं, विदेश से, वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाबी हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार।
5: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है
0: लेकिन एक सवाल भी आता है, आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
5: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
0: जी।
5: आज सड़क से लेकर संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं? बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
0: बिल्कुल।
5: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैनजी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, जीरो डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
0: बिल्कुल,
5: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
1: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है तो संभालने वाला कौन होता? भारत होता है।
0: क्या बात,
1: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धधकती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत

रख लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एकजुट हो गए। तब कहता हूं कि भारत माँ का

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी, एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है।
1: क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
3: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे। और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते

0: कुकुरमुत्ते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है। हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हमो खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं। तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगे?
2: जी सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
2: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेंजी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है। तभी पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन

0: ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगे, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगे। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं।
1: क्या बात।
0: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। पढ़ती हूँ कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की, इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है सुनिएगा। ये अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है।
1: क्या बात है।
0: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेंजी हूं तो मुझसे बेहतर जेंजी को कौन समझ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं। सुनिएगा कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेंजी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सीलिंग हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सीलिंग तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सीलिंग, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देश भर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीचिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार। अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आयो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: '62 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। '70 का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। '70 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी, और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है।
1: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
0: मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है।
1: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
0: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
1: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
0: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
1: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
2: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
1: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर देंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
1: फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
2: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाते हैं। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवानगी किस कदर छाई हुई है।

देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेटकर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहाँ डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश भर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने दो गोल दागे।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं। 80वां आजादी दिवस है और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या? आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, जेंजी का बहुत बोलबाला है। हर तरफ जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियन को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई, हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की इस टोली को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बार भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए, और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाईं तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई। जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत। अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड। यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोभित, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या? एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं। राजपाल आप ही से शुरू करूंगी, आजाद हैं हम?
1: हाँ आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों है?
1: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
0: मतलब जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया।
1: जेंजी हैप्पी भी है ही है इंडिया के साथ।
0: जेंजी हैप्पी है, शोभित
2: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
0: अलंकृत,
3: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी हाँ। पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया, हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
4: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
0: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी,
5: देखिए अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
5: ये किसी एक स्वस्थ परिवार के, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
6: मैम, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो परेशानियां कुछ भी हो लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या
6: जेंजी की सबसे अच्छी बात।
0: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
7: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ।
0: हाँ।
7: मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
7: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजादी, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
2: देखिये मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
3: स्वागत है।
2: कि आजादी है नहीं एक का शासन जी। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है, तो आप आजाद नहीं, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भीज सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना। आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
5: क्या बात है, बहुत खूब।
2: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मी बाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
5: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
5: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है। इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
6: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।
5: क्या बात है।
6: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया। और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंत्र प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए। मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए। अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, खैर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। अच्छा। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं, विदेश से, वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार।
5: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है
0: लेकिन एक सवाल भी आता है, आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
5: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
0: जी।
5: आज सड़क से लेकर संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
0: बिल्कुल।
5: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैनजी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, जीरो डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
0: बिल्कुल,
5: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
1: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है तो संभालने वाला कौन होता? भारत होता है।
0: क्या बात,
1: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धधकती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूँ,
0: स्वागत
1: कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है, माटी

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी, एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात
1: बिल्कुल
2: उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
3: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या बात,
3: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते कुकुरमुते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है। हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम वो खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं

0: आजादी की जिम्मेदारी की, और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं। तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगे
1: जी? सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
1: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेंजी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है, तभी पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं,
0: क्या बात।
1: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, पढ़ती हूँ। कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सुनिएगा। कि अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है,
0: क्या बात है?
1: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेंजी हूं तो मुझसे बेहतर जेंजीज को कौन समझ सकता है?
0: बिल्कुल।
1: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेंजी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: आज देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सीलिंग हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सीलिंग तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सीलिंग तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आए नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो तम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक जीडीपी के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और कई यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी, और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है, और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी। आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
1: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
0: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर देंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
1: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवानगी किस कदर छाई हुई है।

0: देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेट कर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया।
1: जवान यक्षमा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहां डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार। अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा। विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज। सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा। कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन। पनीर घी खोया पर प्रतिबंध। लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं। 80वां आजादी दिवस है और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या है? आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, जेंजी का बहुत बोलबाला है। हर तरफ जेंजी जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियम को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई, हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की स्टोरी को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बार भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए, और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाईं तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई। जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत। अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड। यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोभित, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या? एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं। राजपाल आप ही से शुरू करूंगी, आजाद हैं हम?
1: हाँ, आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
0: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों?
1: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
0: मतलब जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया।
1: जेंजी हैप्पी है ही है इंडिया के साथ।
0: जेंजी हैप्पी है, शोभित
2: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
0: अलंकृत,
3: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया, हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
0: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
4: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे। हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
0: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी,
5: देखिए अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
0: क्या बात है,
5: ये किसी एक स्वस्थ परिवार की, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी।
0: मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
6: मैम, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
0: क्या
6: जेंजी की सबसे अच्छी बात।
0: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
7: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ।
0: हाँ।
7: मुझे जेंजी की पीड़ा पता है।
0: हाँ।
7: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजादी, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
2: देखिए मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
3: स्वागत है।
2: कि आजादी है नहीं एक का शासन जी। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है, तो आप आजाद नहीं है, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भीज सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं, और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
5: क्या बात है, क्या बात है।
2: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
5: क्या बात है, बहुत खूब।
2: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मीबाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
5: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
5: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए आज जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
6: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे।
5: क्या बात है।
6: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जंजी मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए, अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं विदेश से वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली, हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार।
5: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यही से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है
0: लेकिन एक सवाल भी आता है, आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
5: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता मिली है
0: जी।
5: आज सड़क से लेकर संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्यौहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
0: बिल्कुल,
5: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
0: बिल्कुल,
5: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैन जी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को ना लांघ लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, 0 डिग्री पे लड़े 50 डिग्री ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बांकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बांकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
0: बिल्कुल,
5: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाएं, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
1: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है तो संभालने वाला कौन होता? भारत होता है।
0: क्या बात,
1: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धधकती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूं
0: स्वागत
1: कि भारत

रख लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एक

0: जरूरी होता है, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत, आपके पास आना चाहूंगी। एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर, 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम है, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा, पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
3: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे।
4: आए है,
3: हाँ। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या बात है।
3: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते कुकुरमुते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है, हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम वो खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की, और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं, तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगे
5: जी? सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को

0: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि जेन ज़ी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है, तभी पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं,
1: क्या बात।
0: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, पढ़ती हूँ। कि इंद्र धनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सुनिएगा। कि अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है,
1: क्या बात।
0: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेन ज़ी हूं तो मुझसे बेहतर जेन ज़ी को कौन समझ सकता है,
1: बिल्कुल।
0: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात, क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेन ज़ी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सीलिंग हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सीलिंग तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सीलिंग तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ गई।
3: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल, बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच सौ साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज वो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली, किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना, और डिफेंस बजट को बढ़ाना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। सत्तर का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ सत्तर के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की, और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्नीस सौ चौहत्तर और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी, और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने यह महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इसराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम भी तय कर दिए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
2: बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए श्रीहरिकोटा में 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये वो समय था जब भारत की अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भारत को मिल गई।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती थी।
2: आज भारत के पास अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। इसके अलावा पृथ्वी, धनुष, शौर्य, K-16 जैसी तमाम मिसाइलें हैं जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। साल 2009 में आकाश मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ और भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर।
0: 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
1: भारत आज हथियार के क्षेत्र में काफी देशों में निर्यात कर रहा है। 85 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया, 38,000 करोड़ जो कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का प्रदर्शन है, वो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया गया। और देखा जाए तो इसके पीछे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबका हाथ है। और आज भारत खाली एक गोले नहीं भेज रहा है, आधुनिक हथियार, ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी गन्स और नेवी का सामान, सर्विलियंस, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
0: निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर बेचें। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात करें। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां आज दुनिया के कई देशों के लिए अलग अलग उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस भी शामिल है। अब फ्यूजलेस क्या है और निर्यात में इसका कितना बड़ा रोल है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर या कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसको जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर के कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो सब भारत के ही बने हुए हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है। इस औजार का निर्माण बोइंग और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की दो कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं। इससे भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है।
1: फ्यूजलेस को कहते क्या है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है। और ख़ास तौर से जब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उन्होंने टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बनाएं। अब यहाँ ये खाली उस कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए बना रहे, जहाँ जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर सप्लाई हैं अमेरिका के मित्र देश की सेनाओं को, वहाँ भी जरूरत पड़ती है तो ये बनाती है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि इसकी मेटलर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की करके ये दिखाता है कि भारत की जो आज इंजीनियरिंग की क्षमता है वो कितनी आगे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोड़ इसके ऊपर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवानगी किस कदर छाई हुई है।

0: देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेटकर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया।
1: विद्वान यक्षमा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहां डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देशभर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांचों साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा, विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज, सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, पनीर घी खोया पर प्रतिबंध, लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।

0: के हिलते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आज हम सभी मिलकर आजादी दिवस मना रहे हैं, 80वां आजादी दिवस है। और आज हमने सोचा कि देखिए, देश अब बस 20 साल और फिर उसके बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और हमने खुद ने रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे जब देश हमारा 100 साल का हो जाएगा। युवाओं की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, रादर मैं कहूं कि युवा कवियों की एक टोली मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इनकी नजर में आजादी क्या, आज तक हम आजादी के मायने अपनी अपनी नजर से देखते आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए जेंजी का बहुत बोलबाला है, हर तरफ जेंजी बातचीत हो रही है, हर जगह पर जेंजी जेन मिलेनियन को रिप्लेस कर रहा है। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना गुड न्यूज टुडे पर युवाओं की स्टोरी को बुलाया जाए, जेंजी की नजर से देखा जाए कि पहली बात भारत क्या है, भारत की आजादी क्या है, जेंजी के लिए आजादी क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां कहां विकास होना चाहिए। और जेंजी की नजर से आज आजादी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं, हमारे साथ तमाम युवा कवि इस वक्त मौजूद हैं और मेरी दाई तरफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। राजपाल हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत भाई, जेंजी स्टूडियो में है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके साथ बैठे हैं ऑरेंज जैकेट में शोभित, फिर उसके साथ बैठे हैं अलंकृत, अलंकृत के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, गलत बात है, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। मेरे साथ बैठी हैं पावनी, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड, यहां पर हमारे साथ इस वक्त हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उनके साथ बैठे हैं मोहित, मोहित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित को आपने कई बार हमारे मंचों से कविताएं बोलते सुनते देखा भी होगा, लेकिन आज एक्चुअल मायने में आजादी का मतलब क्या है समझाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ सबसे यंगेस्ट कवि अपराजिता भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शोभित अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये बताइए आपको आजादी का, आपके लिए आजादी का मतलब क्या, एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। आज हम लोग 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं। राजपाल आप ही से शुरू करूंगी, आजाद हैं हम?
2: हाँ आजाद हैं हम, हर तरीके से आजाद है, पक्का आजाद है।
1: फिर जेंजी सड़कों पर क्यों?
2: जेंजी सड़कों पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो समस्याएं तो ऐसी रहेंगी देश में, तो उन समस्याओं के लिए जेंजी को आना भी चाहिए।
1: जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया,
2: जेंजी हैप्पी भी है ही है इंडिया के साथ,
1: जेंजी हैप्पी है। शोभित
3: जैसा राजपाल भाई ने बोला, जेंजी इज हैप्पी विद इंडिया, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आपने देखा है कि करा लिया जाता है, काम हो जाता है।
1: अलंकृत,
4: समस्याएं हर पीढ़ी को रही है, हमारी हाँ। पीढ़ी को भी है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी को भी थी, और जैसे उनकी समस्याओं का निदान हो गया हमारी भी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
1: और उन्होंने कह ही दिया कि नहीं तो करा लेंगे। पावनी,
5: हम आजाद हैं, आजाद थे और आजाद रहेंगे हाँ। और जेंजी उसके लिए संघर्षरत है, हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम ले लेंगे, हमें
1: और किस चीज की जरूरत है ये आप इनकी कविताओं में जरूर सुनिएगा। पल्लवी
6: देखिए, अगर हम अपनी शिकायतें खुल के रख पा रहे हैं तो ये पहला साइन है इस बात का कि हम आजाद हैं।
1: क्या बात है,
6: ये किसी एक स्वस्थ परिवार की, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जहाँ पे अगर समस्याएं हैं तभी निदान है, बदलाव है तो उनके लिए रास्ते भी हैं।
1: मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोलने की, सवाल पूछने की आजादी,
6: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम जब सवाल पूछ सकते हैं इसका मतलब हमारा लोकतंत्र वाकई बहुत मजबूत है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मोहित
7: मैम, बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास बैठ करके जंतर मंतर पर देश के इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि वो परेशानियां कुछ भी हो लेकिन वतन से परेशानी किसी को नहीं।
1: क्या बात
7: है, सबसे अच्छी बात।
1: हाँ जी, हमारी यंग कवि अपराजिता
8: जी, मैं खुद एक जेंजी हूँ, मुझे जेंजी की पीड़ा पता है
1: हाँ।
8: वो लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी हक की आवाज के लिए खड़े हैं, तो उनका समर्थन मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी ये देश आजाद है, ये देश जेंजी की आवाज सुनता है और सुनता रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आजादी, जेंजी की भाषा में आज मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलनी पड़े, व्हाट इज आजादी, वो लिंगो नहीं आती है मुझे जेंजी वाली, आपको आती हो तो आप बोलिएगा भी समझाइएगा भी हमको। तो चलिए शोभित आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, आजादी क्या है जेंजी की नजर में?
3: देखिये, मेरे जैसे युवा जो सोच सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना कि आजादी आजादी आजादी के नारे भी हमने लगते देखे, पर जब मैंने सोचा कि आजादी क्या है, सही मायने में क्या आजादी है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी।
4: स्वागत है,
3: कि आजादी है नहीं एक का शासन जी। आप अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर से दबाया जा रहा है, तो आप आजाद नहीं है, वहां आप अपने हाथ उठा सकते हैं, मुट्ठी भींच सकते हैं, लेकिन अगर आप उस संस्था को सब कुछ दे रहे हैं, और वो आप उस संस्था का भला कर रहे हैं, संस्था आपका भला कर रही है जो कि देश में भी हो रहा है, तो वो आप आजाद हैं। तो आजादी है नहीं एक का शासन, आजादी है नहीं भ्रष्ट अनुशासन, आजादी है नहीं तिमिर में कुड़ना, आजादी है आसमान भर उड़ना।
6: क्या बात, क्या बात।
3: आजादी है आसमान भर उड़ना, आजादी है राष्ट्र एक बन जाना, मुट्ठी बनकर एक साथ तन जाना।
6: क्या बात, क्या बात।
3: और जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके नामों के साथ मैं इस कविता को और आगे बढ़ाता हूँ कि आजादी है हवा का आंधी होना, आजादी है मोहन गांधी होना, आजादी है हंसकर फांसी चढ़ जाना, आजादी है भगत सिंह बन जाना।
6: क्या बात, बहुत खूब।
3: आजादी है भगत सिंह बन जाना, आजादी है उन्मादो हर्ष भर जाना, लक्ष्मीबाई के जैसा संघर्ष कर जाना, आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। आजादी है आजादी का आदि होना, मंगल पांडे के जैसा बागी होना। और आजादी कोई धर्म जात थोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है, आजादी बिस्मिल अशफाक की जोड़ी है। और आजादी बस नहीं आजाद है कहना, आजादी है आजाद बने ही रहना।
6: क्या बात है,
3: बहुत शुक्रिया।
6: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पिरोया है इन शब्दों को अपनी कविता में। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आज देखिए जेंजी बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ बैठ के, आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात का मुझे गर्व हो रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है। हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब हमें मिलेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम है, इस बात को आप मानते हैं, समझते हैं, कहते हुए आप आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें विकसित भारत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मोहित, युवाओं की नजर से जरा समझाइए भारत को कैसे देखता है।
7: मैम देखिए, एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, सौभाग्य से मेरे गुरु भी हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। उनकी दो पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे।
6: क्या बात है।
7: तो जीवन का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के जीवन में भी था, शिवाजी के जीवन में था, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में भी था, और आज के जो जेंजीज हैं उनके जीवन में भी है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो काम जेंजीज आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। ये देश अगर गुलाम हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा तो भी हमारी वजह से बनेगा। जनजी इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी बात चली कि जंतर मंत्र प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज गए, मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने कहा मेरी एक छोटी सी शिकायत थी जिस कारण मैं नहीं गया। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मैं युवाओं के साथ हूं, जेंजीज के साथ हूं, लेकिन एक छोटी सी मन में मलाल था, एक शिकायत थी जो नहीं गया, वो ये था। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, तुम्हारे हाथों से मिलाकर हाथ खड़े होते, दिन तो छोड़ो पूरी रात खड़े होते। उसने कॉकरोच कहा और तुम बनने चल दिए, अरे शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते, शेर बनते तो हम भी साथ खड़े होते। और मैं इसलिए हमेशा युवाओं से कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। दिक्कत क्या है मैम, आज का जो हिंदुस्तान के युवा वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति भूल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बाहर से हम देख रहे हैं, विदेश से, वो सब कुछ ठीक है, फॉरेन से जो सब कुछ आइडियाज आते हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं कहता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली, हे राम दूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली, हे पंकज हे बजरंग बली, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार, माता के शेरों।
6: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जब क्या है युवा, युवाओं के सपने, युवाओं के लिए आजादी की बात होती है,
1: लेकिन एक सवाल भी आता है, आप सभी से पूछूंगी कि युवा का मेंटोर कौन है? आप लोगों का भी तो कोई ना कोई मेंटोर होगा। पल्लवी, मैं चाहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए, जरा बताइए कि आप लोगों का मेंटोर कौन है, किसे आप अपना गुरु मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं?
0: क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, याद करनी है उन वीरों की गाथाएं जिनके दम पर हमें ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिली है
1: जी।
0: आज सड़क से लेके संसद तक अगर हम बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का ये त्योहार मना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बलिदानों की लंबी गाथाएं हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी आज की समस्याएं हैं, लेकिन जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि अगर गौरव हमसे था तो पतन की अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अधिकार या हक की बात करना, तब अच्छा लगता है। हमारे मेंटोर कैसे होने चाहिए, हमारे मेंटोर कौन हैं, बस ये याद कर लेना है कि भगवान बुद्ध भी अगर हमारे आदर्श हैं, हमारे मेंटोर आपने बोला, तो विक्रम बत्रा भी हमारे मेंटोर हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे सही बात है अपने उन वर्दी के भाइयों को जो जल थल नभ तीनों जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी जो पहली पंक्ति है मैं उनके नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ जो मुझे लगता है सही मायने में मेंटोर हैं। हमने एक वो भी चेहरा देखा अभी जंतर मंतर पर, जहां पे वर्दी मुझे लगता है कि अपमानित एक जगह उनको किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे हम झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे भी हमारे जैन जी भाई बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे चल रहा है। तो मैं अपने सभी वर्दी वाले भाइयों को प्रणाम भेजती हूँ इस बड़े मंच से। सुनिएगा कि शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, शांति भंग हेतु पर मारे नहीं पाए रिपु, वायु वीरों को प्रणाम शत शत कीजिए, जलधि को नालांग लेवे निज शूरता से, ऐसे जल वीरों का आभार नित प्रति कीजिए, जीरो डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, उनकी सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए, और जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए, जल थल नभ चहुं ओर देश रक्षित है, वीर रण बाकुरों को शीश नत कीजिए। एक चार पंक्तियां और याद दिला देती हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ रखने हैं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी शक्तियों को याद रखना है। बस चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं, प्रेम वश होके संग नाचते जो गोपियों के, वे ही कृष्ण चक्र पानी युद्ध जितवाते हैं, और शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाए, और शरणागतों को निज ही से लगाते हैं, किंतु दम्भियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं, किंतु किंतु दम्भियों के सर चढ़ता धर्म तब, राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। मेंटोर कौन है, कैसा होना चाहिए, उस पर तो पल्लवी ने हमें बता दिया, लेकिन राजपाल अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या है भारत आपकी नजर?
2: भारत एक ऐसा भारत है जो विश्व जब लड़खड़ाता है, हाँ, तो संभालने वाला कौन होता है? भारत होता है।
1: क्या बात,
2: कोरोना का काल हो, किसने संभाला? भारत ने संभाला। तो मार्ग दिखाने का काम भारत ने सदा किया है, और जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का भी है, और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह जिन्होंने देखा था, तो उनका भी सपना था कि भारत विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंचे। तो कहता हूं कि सीने में धड़कती इबारत है हम, सीने में धधकती इबारत है हम, विश्व शांति के सदा सारथ है हम, और चहुं ओर जयकारे हो हमारे, और आओ एक स्वर में कहें भारत है हम, आओ एक स्वर में कहें भारत है हम। और एक बात जो हमेशा जंतर मंतर से उठी, इस बार भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कई जगहों से उठी, तब कहता हूं कि भारत का युवा क्या सोचता है कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंती धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, चीन अमेरिका पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे, नेपाल लंका और बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, नेपाल बांग्लादेश भारत को तो मत समझो, ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
2: तो भारत ऐसा है, और चार पंक्तियां और रखता हूं
1: स्वागत
2: कि भारत

और आए संकट मातृभूमि पर, बात ध्यान में रख लेना। एक उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ का। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चंडीगढ़ में रक्त की आवश्यकता पड़ी, ब्लड की आवश्यकता पड़ी सेना के जवानों को, तो हजारों लोग एकजुट हो गए। तब कहता हूं कि भारत मा

0: तू से पहले बलिदान जरूरी होता है, तो बलिदान मांगता है ये देश।
1: बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। देखिए आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, ये आजादी हमें मिली क्योंकि बलिदान दिया गया। और इस आजादी को समझना, इस आजादी को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलंकृत आपके पास आना चाहूंगी, एक जिम्मेदारी है आजादी हमारे लिए, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब आप सभी लोगों को ट्रांसफर हो। जब हम वापस उसी बात पर 2047 विकसित भारत, जब हम सब लोग उस विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, जब हम उस पर कदम रखेंगे 2047 में, तो वो आजादी उस वक्त बहुत अहम होगी। हमें इस आजादी को संभाल कर सहेज कर रखना है। कैसे कैसे इसको देखते हैं आप?
2: मुझे ऐसा लगता है कि आजादी भोग की वस्तु नहीं है। हमें अगर कोई कठिनाई बड़ी लग रही है तो शायद हमने उससे बड़ी कठिनाई नहीं देखी, इसलिए वो छोटी कठिनाई हमें बड़ी लग रही है। तो आज के लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि हम अभी गुलाम हैं, शायद इन्होंने असल गुलामी नहीं देखी है, इसलिए ये बात उन्हें ऐसी लग रही है कि गुलामी। जबकि आजादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो हमें पुरखों ने दिया है वो विरासत है हमारी, जिसे संभाल के रखना हमारा काम है। ये वतन इसलिए भी ये है खास अपना, वतन इसलिए भी ये है खास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, मिटाना सका कोई इतिहास अपना, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, अनोखी अटल सी विरासत है यारो, संभालो संभालो संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। लहू से ता सींचा पसीना बहाया, बहुत बहुत मुश्किलों से वतन को बचाया, अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया। अगर हम बटेंगे तो हम सब मिटेंगे, बहुत जान देकर के ये जान पाया, तुम्हें जो मुफ्त में मिली है आजादी, तुम्हें जो ये मुफ्त में मिली है आजादी, बुजुर्गों की बरसों की मेहनत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो, संभालो इसे, ये ही ताकत है यारो। एक बात बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आज से बहुत साल पहले 1997 में डीडी पर एक सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें जो राम जी का किरदार निभाते थे उनका नाम सिराज मुस्तफा खान था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है,
1: क्या बात है,
2: रामलीला के में राम का किरदार मुस्तफा खान जी निभा रहे हैं।
1: हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल देते हैं उसे इसी तरीके से कायम रखने की जरूरत है।
2: हमारे निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे अक्सर कन्हैया जी के भजन गाए जाते हैं, मीरा जी को गुनगुनाया जाता है। मैंने अगला बंद उसी पे लिखा है कि कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, कभी कभी खुसरो के दर पे मीरा को गाना, उधर सबको प्यार से लंगर खिलाना, उधर प्यार से सबको लंगर खिलाना, और कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, कहीं रामलीला में मजहब भुलाकर, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, किसी मुस्तफा जी को राघव बनाना, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, जो सदियों से इन धमनियों में बही है, यही प्रेम असली अमानत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत है यारो, संभालो इसे, यही ताकत।
1: क्या क्या बात है, बहुत खूब। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर से। पावनी, जेंजी की नजर से एक बार फिर से जरा दिखाइए कैसा है भारत।
3: चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे। हमें स्वीकार है प्रस्ताव, हम ये खेल खेलेंगे, नतीजा जो भी आए, हार या फिर जीत देखेंगे, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, मगर पासे तुम्हारी ओर से फेंकेंगे शकुनीगर, हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण फेंकेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
3: और आंखें नम नहीं है पर अभी भी कम नहीं है गम, माना दीप्ति से पूर्णतः अभी हारा नहीं है तम, मगर लड़ते रहेंगे पाप से हम क्योंकि तुलसी हैं, किसी की छांव में पलते कुकुरमुते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर रफ्तार कम रखती किसी यात्री की गाड़ी है तो इसका अर्थ ये हरगिज नहीं, इसका अर्थ ये हरगिज नहीं चालक अनाड़ी है। हमारी हार देखकर शत्रु ज्यादा खुश न हो जाना, पलट दे मैच आखिरी बॉल पर हम ओ खिलाड़ी।
1: अब जब हम बात करते हैं आजादी की जिम्मेदारी की और साथ ही साथ जेंजी की नजर से जब हम आजादी देखते हैं, हर किसी के अपने अपने स्वर हैं, अपनी अपनी कविताएं हैं, तो हमारे बीच जो इस वक्त यंगेस्ट कवि मौजूद हैं, प्राजिता क्या सुनाएंगे?
4: जी सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
4: ये चार पंक्तियां पढ़ती हूं।

0: कि जेंजी अपने देश के हित के लिए किस हद तक गुजरना जानती है, तभी पहली चार पंक्तियां आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। कि लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे उड़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। इसी लहजे की चार पंक्तियां और सुनाती हूँ, इस देश के तिरंगे के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं,
1: क्या बात।
0: इस देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, पढ़ती हूँ। कि इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती मैं ही गंगा कहते हैं, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, हरा श्वेत के सरिया मिलकर देते हैं संदेश यही, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं, जिस पर हंसकर जान लुटा दें उसे तिरंगा कहते हैं। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाले हर युवा की, इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सुनिएगा। ये अपनी इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है,
1: क्या बात है?
0: इस मिट्टी के बेटों से दुश्मन की टोली हारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, केवल देश नहीं है भारत हम सब की महतारी है, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, आजादी के सुधा पर्व पर फिर ये कसम उठा लेना, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, इस मिट्टी का मान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मैं खुद जेंजी हूं तो मुझसे बेहतर जेंजी को कौन समझ सकता है,
1: बिल्कुल।
0: इस देश का युवा चाहता क्या है, इस देश का अंगला लक्ष्य क्या है, तब ये चार पंक्तियां प्रगति रूपी संकल्प को समर्पित करते हुए पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अपनी जननी जन्म भूमि का सबको मान बढ़ाना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, अंतरिक्ष पर अमर तिरंगा हम सबको लहराना है, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चंद्रयान को मिली सफलता तो मन में ये भाव उठा, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है, चांद तलक तो पहुंच गए हैं अब सूरज तक जाना है।
1: क्या बात है। तो सपने बहुत हैं जेंजी के, लेकिन इस बात को देखकर, इस बात को आप सबकी कविताएं सुनकर ये महसूस हो रहा है कि वाकई सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारे सपने भी पूरे हों, हमारे देश के सपने भी पूरे हों और भारत एक बार विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिन में जश्न जितना जोरदार था, शाम होते होते नजारा भी कुछ मनमोहक दिखाई दिया। मुंबई का वर्ली सी लिंक हो या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और कुतुब मीनार, जश्न आजादी के मौके पर देश की कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आई। आजादी के जश्न में डूबे देश में इन इमारतों का नजारा बेहद खास रहा। मुंबई में समुद्र के ऊपर बना वर्ली सी लिंक तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनी। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। देश की ऐतिहासिक विरासत की पहचान कुतुब मीनार भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नजर आया। रात के अंधेरे में तिरंगे की रोशनी से जगमगाती इन ऐतिहासिक इमारतों ने आजादी के पर्व की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की झलक भी दिखाई दी। एक तरफ आधुनिक भारत की पहचान बन चुका वर्ली सी लिंक तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन और इतिहास की गवाही देता हुआ कुतुब मीनार। तिरंगे की रोशनी में नहाए ये नजारे हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सिल्वर स्क्रीन पर पीरियड ड्रामे का कमबैक। 70 की उम्र में सनी देओल का कमाल। बेताब से बंटवारा तक का शानदार सफर। रुपहले पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: देश भर में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे की रोशनी में रंगी इमारतें। पांच साल बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार। अयोध्या में निकली भव्य पालकी यात्रा। विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जयपुर में शाही अंदाज में मनाई गई हरियाली तीज। सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा। कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन। पनीर, घी, खोया पर प्रतिबंध। लोगों की सेहत के मद्देनजर फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

साल 1947 गुलामी की बेड़ियों से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक बड़ी चुनौती। वो चुनौती थी देश की सुरक्षा की। तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, रक्षा उत्पादन की क्षमता सीमित थी और आधुनिक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता बड़ी थी। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं चाहता था, भारत अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाना चाहता था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने अगले 8 दशकों में भारत की सैन्य ताकत की तस्वीर बदल दी।

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। वो समय ऐसा था जब भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। आजादी के ठीक बाद कश्मीर युद्ध के दौरान भारत इस बात का एहसास कर चुका था कि भारत के लिए अपनी सेना और उसकी ताकत कितनी अहम है, और इसीलिए इसी समय ऐसी रणनीति पर काम हुआ जिसने आने वाले समय में भारत को एक मजबूत और सशक्त सेना उपलब्ध करवाई।

0: साल 1958 ये वो दौर था जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रक्षा क्षेत्र में सशक्त भारत की नींव रखी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साल 1958 भारत को सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम शुरू हुआ। दरअसल अभी तक भारत रक्षा के क्षेत्र में केवल दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी भारत में हथियार भी बाहर से आते थे और यहां तक कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक भी नहीं थी जिससे वो खुद के हथियार बना सके। और यहीं से भारत के आत्मनिर्भर होने की सोच भी डेवलप हुई और इसी सोच ने डीआरडीओ जैसी संस्था को विकसित किया। डीआरडीओ का जब गठन हुआ तब सिर्फ 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज 50 से ज्यादा मॉडर्न लैब्स के नेटवर्क के साथ ही देश की सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। डीआरडीओ ने कई अहम चरणों और कार्यक्रमों के जरिए भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की मजबूत नींव रखी। मिसाइल तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर ट्रायड, एरोस्पेस और लड़ाकू विमानों का विकास, थल सेना के लिए भारी हथियार और रडार सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक युग, ये वो कार्यक्रम है जो भारत को महाशक्ति बनाने की योजना के साथ ही आगे बढ़ रहा है।
1: डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। शुरू में इसको रक्षा के तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग से मिलाकर बनाया गया था। शुरू में 10 प्रयोगशालाएं थी जो आज बढ़कर तकरीबन 50 हो गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, था भी और अभी भी है, कि विदेश से आयात पर निर्भरता को कम करना। और आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज वो नए नए हथियार बनाकर दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
0: डीआरडीओ के गठन के बाद से भारत ने सेना की चुनौतियों और जरूरतों को समझते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में साझा किया जा सकता है। डीआरडीओ के विकास की यात्रा को 5 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दिनों में डीआरडीओ का काम सिर्फ भारतीय सेना के आयातित हथियारों का निरीक्षण करना, मामूली बदलाव करना या छोटे हथियारों और गोला बारूद की डिजाइनिंग तक सीमित था। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने अपनी पहली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में काफी शोध और कोशिशों के बाद भी भारत और स्विट्जरलैंड की टीमें मिसाइल के सटीक निरीक्षण और प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत को भविष्य की मिसाइल प्रणालियों जैसे कि पृथ्वी और अग्नि बनाने की बुनियाद, समझ और वैज्ञानिक आधार दिया।
1: प्रोजेक्ट इंडिगो भारत और स्विट्जरलैंड के द्वारा एक मिसाइल के लिए शुरू किया गया था, जो कि हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत के वैज्ञानिकों को मिसाइल के प्रणाली किस प्रकार से उसका बूस्ट होता है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिली। इसको हालांकि बीच में तकनीकी कारण और कुछ और कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन जब बाद में दोबारा शुरू किया तो उससे हमारी जैसे पृथ्वी मिसाइल बनी या आज मिसाइल कार्यक्रम में जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके पीछे जो भूमिका है वो इस इंडिगो प्रोग्राम की रही थी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। साल था 1962। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया और यह एहसास कराया कि जंग में सैनिकों का साहस काफी नहीं, युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, मजबूत सैन्य उद्योग और स्वदेशी तकनीक। और फिर भारत ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। 1962 युद्ध के बाद भारत ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। भारत ने रक्षा बजट को अचानक GDP के 2.7% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सेना में विशेष माउंटेन डिविजन्स का गठन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आधुनिक हथियार देने से मना करने पर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। वहीं पहली बार देश में एडहॉक फैसले की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले तक रक्षा बजट साल दर साल के आधार पर बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के तय होता था। पहले रक्षा प्लान ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: उन्नीस की लड़ाई के बाद से भारत की सरकार को समझ में आ गया कि रक्षा में अचानक ही एकदम से हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसके लिए समय से ही प्रोक्योरमेंट, उनको सामान को लेना, सेना को बढ़ाना, ये सब किया जाता है, जिसके तहत 1962 के बाद पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाए गए, जहां पर भारतीय सेना का विस्तार, एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, साथ साथ पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी ध्यान देना, सोच देना और डिफेंस बजट को बढ़ना, डीआरडीओ का बढ़ावा, बहुत से कदम उठाए गए, जिसका असर ये पड़ा कि 1965 और 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को भारी मात दी।
0: 1971 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरनाक है। इसके बाद डीआरडीओ को बड़े बजट और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। का दशक क्षमता निर्माण और विस्तार का साल रहा। तब डीआरडीओ की ओर से प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डेविल और वेरिएंट के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रायोजेनिक तकनीकों पर रिसर्च तेज हुई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य अनुभव मिला। इसी दशक में लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम के स्वदेशी विकास की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में भारत ने विकास शुरू किया रक्षा के क्षेत्र में। ये वो दौर था जब रूस भारत का एक सबसे भरोसेमंद साथी बनकर भारत के साथ खड़ा हुआ, जिसने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीक भी साझा की। और इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई, जिसके बाद डीआरडीओ बीएल ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की।
1: इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पहले सेना, एयरफोर्स और नेवी में अलग अलग तरह की मिसाइल होती थी। तब उन्होंने कहा कि इकट्ठी एक जगह मिसाइल का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि एक तकनीक का दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सके, और इसके तहत पृथ्वी, आकाश, नाग और कई किस्म के मिसाइल्स का सोच विचार किया गया, जो डेवलपमेंट की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें ना केवल डीआरडीओ बल्कि डीआरडीएल, बीडीएल और के यूनिवर्सिटीज को भी इसमें लिया गया, जिनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया।
0: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और 1998 में परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु संपन्न तकनीक मौजूद थी। और यहीं से भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की यात्रा। और इसी कड़ी के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों का निर्माण भी किया, जिसमें भारत आज की तारीख में काफी आगे पहुंच चुका है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इसराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत को लेकर 70 के दशक में भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई। दरअसल 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खत लिखकर यह बताया कि चीन 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर रहा है और अगर भारत ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है, साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी में है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDB यानी
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश में 80वीं आजादी के दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन आज आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में देशभक्ति को लेकर दीवान की किस कदर छाई हुई है।

0: देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो अलग अलग तरीके से आजादी के उत्सव की तस्वीरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपने खास प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखनूर सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों में मिठाई का वितरण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नासिक के जिला अस्पताल में तो अनोखा नजारा ही देखने को मिला। यहां पर न्यू बॉर्न बेबीज केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नवजात बच्चों को तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक शिशु केसरिया रंग के कपड़े में, दूसरा सफेद और तीसरा हरे रंग के कपड़े में लपेट कर तिरंगा का रूप दिया गया। यही नहीं, नर्सों ने अपनी वर्दी के नेम प्लेट को कुछ इस तरीके से सजाया था जो अशोक चक्र का प्रतीक नजर आ रहा था। नासिक के अस्पताल में मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम में मुख्य पुजारी रावल जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बद्रीनाथ धाम का वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। तिरंगे के सम्मान में सभी ने देश की एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश भर के साथ ही भगवान विष्णु के विशिष्ट धाम बद्रीनाथ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही और मंदिर परिसर में बारिश के बीच भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया।
1: विद्वान यक्षमा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म का मिलन देखने को मिला। तड़के सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग में भव्य श्रृंगार किया गया। तिरंगे के तीनों रंगों के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया था। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। देशभक्ति और भोले की भक्ति का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, मानो महाकाल भी भारतीय आजादी और परंपरा के रंग में रंगे हों।

0: आजादी के महोत्सव के मौके पर देश में कुछ ऐसे आयाम भी स्थापित किए गए जो इतिहास बन गए। ऐसा ही एक कारनामा हुआ हिमाचल के छोटी काशी मंडी में। यहां डाक विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिए तिरंगे की डिलीवरी की। ये देश में पहली बार हुआ जब डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे को आर्मी वेटरन के घर तक पहुंचाया। 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई। डाक विभाग ने ये डिलीवरी मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की। रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस पर तैनात डाक विभाग की टीम ने तिरंगे के पार्सल को रिसीव किया और इसे सेना के एक वेटरन को डिलीवर किया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक ट्रांसमिशन की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कठिन रास्तों और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मेल डिलीवरी को कुशल बनाना है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, वाराणसी से रोशन कुमार, मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।